मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6 बजने को है, हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का।

0: मंत्री सनाई तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं

गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, मगर दोनों की गहराई में बहुत अंतर है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। दुनिया झूठी, सपने झूठे, झूठा सब संसार, एक ही सच्चा गुरु का नाता, कर उस पर एतबार।

भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा ही निराला है। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, वो इस सांसारिक मोह माया से छूट जाते हैं। जो भक्त सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें हर जगह ईश्वर के होने का आभास होता है। चाहे वो मूर्ति में हो, जल में हो, हवा में हो या भजनों के बोलों में हो।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे सुधा रंजित, सुमन कल्याणपुर और मुकेश के। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार।
1: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे युग के संभ्रांततम व्यक्तित्वों में से थे। वे ज्ञानवान, विद्वान, चिंतक, विचारक और ऊंचे आदर्शों से अनुप्रेरित धार्मिक व्यक्ति थे। वे एक ऐसे निर्भय, देशभक्त और राष्ट्रीय नेता थे जो हमेशा स्व की अपेक्षा सेवा को महत्व देते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी समय के महत्व पर विशेष बल देते थे और समय को देश सेवा में अधिक

0: भक्त और राष्ट्रीय नेता थे जो हमेशा स्व की अपेक्षा सेवा को महत्व देते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी समय के महत्व पर विशेष बल देते थे और समय को देश सेवा में अधिक से अधिक लगाने की बात करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था, यदि स्वास्थ्य मेरा साथ देता रहेगा तो मैं अपना सारा जीवन देश की सेवा में लगाऊंगा। राजेंद्र प्रसाद जी में देश प्रेम की उत्कट अभिलाषा थी, इसीलिए देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा, यह हमारा परम कर्तव्य है कि देश की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु हमारे हृदयों में जो ज्वाला धधक रही है उसे हम जलाए रखें। देश इस दिशा में आपके निर्भय विचारों की प्रतीक्षा कर रहा है। देश को एक नई राह दिखाने के लिए उन्होंने लेखकों को अच्छा लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके शब्दों में, लेखक केवल दृष्टा ही नहीं सृष्टा भी है। इतिहास की ऊंच नीच के बावजूद देश की सांस्कृतिक एकता को अविच्छिन्न करने का श्रेय बहुत हद तक लेखकों के रचनात्मक प्रयत्नों को है। कवियों और कलाकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को आज भी पथ प्रदर्शन करना है, जैसा कि पहले वालों ने पुराने समय में किया है। बहरहाल हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी अनेक भाषाओं के स्वतंत्र विकास के लिए धर्म और दर्शन को खुली छूट देनी हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषाई एकता को मजबूत बनाने के लिए लोगों से विभिन्न भाषाएं सीखने को कहा। उन्होंने हिंदी भाषी लोगों से दक्षिण की भाषाएं सीखने को कहा और सुझाव दिया कि दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के अनुवादों का मूल्य कम रखना चाहिए। उन्होंने आशा की कि इस तरह राष्ट्रीय एकता बढ़ सकती है और उत्तर तथा दक्षिण के बीच एकात्म की भावना पनप सकती है। ज्ञान के लिए अपने सच्चे प्रेम और जीवन भर अनेक शिक्षण संस्थाओं से घनिष्ठ संबंध रखने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शिक्षा में गहरी दिलचस्पी थी। शिक्षा के बारे में उनका कहना था कि कम से कम वर्तमान समय के लिए हमारा आदर्श ये होना चाहिए कि हम इसकी सतह को फैला दें, क्योंकि इसके द्वारा हम धनी और निर्धन के दरवाजों तक एक जैसी रोशनी फैला सकते हैं। उन्होंने शिक्षा के तीन उद्देश्य बताए, जिनमें से दो का संबंध व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से है और तीसरे का सामूहिक जीवन से। उनका मत था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में अन्य सुधारों के साथ शिक्षा के माध्यम में भी परिवर्तन होना चाहिए, यानी वो शिक्षा जनता की भाषा में देनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसीलिए त्रिभाषा सूत्र की परिकल्पना दी। लड़कियों की शिक्षा के बारे में तर्कसंगत विचारों के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मान्यता थी, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है नारियों में शिक्षा का विस्तार। उनके अनुसार हमारी राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति में नारियों को महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। इसको भली भांति जानते हुए उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा को बहुत महत्व दिया। उनके अनुसार स्त्रियों को चाहिए कि वो पुरुषों के मस्तिष्क और उनकी भावनाओं को स्वयं में ढालते हुए अपनी जिम्मेदारी संभाले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अतीत को वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा का एक महान स्रोत मानते थे। उनके अनुसार भारत के लोगों को अपने अतीत के इतिहास को याद रखना चाहिए। उनके इन्हीं विचारों के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने के पहले तथा बाद में भारत तथा भारत से बाहर के महान पुरुषों ने उनके मस्तिष्क और हृदय के विभिन्न सद्गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 96.1 मीटर पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

बाकी 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं रविंद्र साठी। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर ओपी राजपूत की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है कृषि लागत कम कैसे करें। और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर जानकारी दी जाएगी आंखों के लिए पोषण के महत्व पर। विशेषज्ञ है डॉक्टर वाणी अग्रवाल।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा। अशोक कुमार मथुरिया के सुर में लोक गीतों का। समय सुबह 9:45। गायक मोहम्मद अजीज पर केंद्रित है हमारा आज का कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसे आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। दिन में 11:30 का समय है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। घर संचार कार्यक्रम में 1:15 पर चर्चा होगी महिला खेल और खेल पत्रकारिता पर। ज्ञान विज्ञान में बात होगी वर्चुअल रियलिटी और खेलों के भविष्य पर। होम जेको रिश्ते नाते के साथ शशि शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है कामकाजी महिलाएं और परिवार का सहयोग। सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजलें नश्र की जाएंगी 1:45 पर। साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज सुनिएगा भेंट वार्ता। शीर्षक है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान। समय 3:30 और शाम 4 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स का।

सायकालीन सभा में शाम 5:30 पर चर्चा होगी शिमला समझौते पर। क्वेस्ट वर्ल्ड हेल्थ प्लस टिप ऑफ द डे के साथ सुनिएगा वंदना जोशी की वार्ता। शीर्षक है वृक्षारोपण में युवा भागीदारी। ग्रामीण कार्यक्रम में शाम 6 चर्चा का विषय है फार्मर रजिस्ट्री। मंडी भाव, मौसम की जानकारी व लोकगीतों के साथ सुनेगा सलीम अली खान की वार्ता। शीर्षक है कृषक फसल बोने से पहले बीजों का उपचार कैसे करें। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर चर्चा होगी वन महोत्सव सप्ताह और मेरा देश मेरी शान पर। देश दुनिया की खबरों के साथ जानिएगा सेहत टिप्स, ज्ञान सागर, आज के प्रश्न व लोक प्रिय फिल्म संगीत को। शाम 7:10 का समय है कार्यक्रम विविधा का, साथ ही मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:31 पर। और रात्रि 10 सुनेगा प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

रात्रि 10:45 पर आईसीसी महिला टीटी विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य किंगटन ओवल तंदर खेली जा रही है। टी20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। उक्त मैच का प्रसारण

न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं, माफ कीजिएगा, सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार है रविंद्र साठे।

कपटी मुनि के षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु 100,000 ब्राह्मणों को अनजाने ऐसा भोजन परोसने का पाप कर बैठा जिसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। निमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने ही वाले थे कि आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ। ब्राह्मण तो मानव मांस खाने से बच गए, किंतु राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के शाप से नहीं बच सका। कालांतर में यही प्रताप भानु रावण के रूप में पैदा हुआ। उसका वीर और पराक्रमी भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण होकर जन्मा तथा मंत्री धर्मरुचि रावण का सौतेला भाई विभीषण हुआ। सागर के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक अत्यंत विशाल दुर्ग था, जो इंद्र की नगरी अमरावती से भी अधिक सुंदर और आकर्षक था। रावण ने उस नगर पर अधिकार कर लिया। उसे अत्यंत दुर्गम जानकर रावण ने वहीं अपनी राजधानी बनाई और कुबेर को परास्त करके उनसे पुष्पक विमान जीत लिया। एक बार खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं में उठा लिया। नित्य प्रति उसका वैभव, संपत्ति, सेना, पुत्र, सहायक, जय, प्रताप बल ऐसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ के साथ लोभ बढ़ता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे रविंद्र साठी, संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ओपी राजपूत की वार्ता। शीर्षक है कृषि लागत कम कैसे करें।
1: अपने देश में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति वर्ष 1966-67 से आई और हरित क्रांति युग में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। फलस्वरूप खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई। आज हम 212 मिलियन टन से ऊपर खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। हरित क्रांति की सफल कहानी के पीछे जो राज है वह है अधिक उपज देने वाली किस्में, सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग, रसायन उर्वरकों एवं कृषि रसायनों का अत्यधिक प्रयोग जिनसे उत्पादन बढ़ा। निश्चय ही अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग ने खेती को उर्वरक आधारित बना दिया है। भूमि जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। कृषि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ आदि ने भूमि की दशा बिगाड़ी है। उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग हुआ, मानव पर रसायन के कुप्रभाव पड़ने लगे, पर्यावरण बिगड़ा आदि दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं। साथ ही कृषि लागत मद जैसे उर्वरक, सिंचाई जल, बीज आदि महंगे होते चले जा रहे हैं। जहां कृषकों को खेती में अधिक लागत लगानी पड़ती है वहीं तुलनात्मक खर्च एवं मुनाफा अनुपात घटता जा रहा है, जो निश्चय ही एक चिंतनीय विषय है। अतः इन विषम परिस्थितियों में हमें चाहिए कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई कृषि तकनीकों एवं स्वदेशी अनुभवों को अपनाकर भविष्य में खेती की जाए, ताकि उनके प्रयोग से बगैर उत्पादन में कटौती के कृषि लागत में कमी की जा सके। कुछ प्रमुख नई विकसित कृषि तकनीकें इस प्रकार हैं। समय से बुवाई एवं उचित पौध संख्या से अधिक उपज ली जा सकती है। ये बगैर खर्च के मद हैं। कहावत है आगिल खेती भागे जाए, पाछिल खेती पाछे जाए। अतः किसी भी फसल की समय से बुवाई कर दी जाए तो उस फसल से 50% सफलता मिलना सुनिश्चित है। फसलों में विशेषकर गेहूं में क्रिस क्रॉस दोनों तरफ से धन के निशान पर बुवाई विधि से खरपतवारों की संख्या में काफ़ी कमी आ जाती है। अतः खरपतवारों द्वारा फसल से ली जाने वाली चुंगी जैसे खाद, पानी एवं निकाई गुड़ाई में लगी मजदूरी में काफ़ी बचत की जा सकती है। दीर्घकालीन फसल चक्र में बदलाव से मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता बनी रहती है और फसलों में कीट रोग भी कम लगते हैं। अर्थात 100 रोगों का एक इलाज फसल चक्र में फेर बदलाव। प्रायः कृषक बगैर उचित फसल चक्र अपनाए खेती करते रहते हैं, जो गलत है। अतः कृषकों को ऐसे फसल चक्र अपनाना चाहिए कि जिनमें दलहनी फसल अवश्य हो। इससे भूमि मजबूत होती है और उर्वरक की बचत भी होती है। फफूंदनाशी, कीटनाशी एवं राइजोबियम कल्चर से हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। अर्थात FRI का सिद्धांत अपनाया जाए। ऐसा करने से फसलों की लागत में काफ़ी कमी की जा सकती है। जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम कल्चर, दलहनों जैसे अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर आदि में, एजोटोवैक्टर गेहूं, सरसों, आलू आदि में, एजो स्पाइरिलम बाजरा, ज्वार, मक्का में आदि द्वारा 2 से 2.5 ग्राम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज द्वारा बीज उपचार से 20 से 25 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर अर्थात 1 कट्टा यूरिया लगभग की सीधी बचत की जा सकती है और उपज में 10 से 15% की वृद्धि भी होती है। PSV यानी फास्फेट कल्चर के इतनी ही मात्रा में प्रयोग से फास्फोरस तत्व की 50%

0: बचत संभव है। ये जैव उर्वरक मात्र 7 से 8 रुपये प्रति पैकेट यानी 250 ग्राम वजन के की दर से उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग इफको नेफेड द्वारा उपलब्ध हैं। ट्राइकोडर्मा फफूंदी कल्चर द्वारा फसलों में लगने वाली फफूंद पर नियंत्रण से कम लागत में अधिक मुनाफा लिया जा सकता है, जिसे बीजोपचार 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा कल्चर प्रति किलोग्राम बीज के साथ, मृदा उपचार में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति 100 से 150 किलोग्राम सड़ी कंपोस्ट, पर्णीय छिड़काव में 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर तथा सब्जियों धान आदि की पौध की जड़ों को 250 ग्राम 1 पैकेट कल्चर प्रति 10 से 15 लीटर पानी में घोलकर 5 से 10 मिनट तक डुबोकर करना चाहिए। ऐसा करने से फफूंद रोग नहीं लगेंगे। 0.5% जिंक सल्फेट 21% जस्ता के पत्तियों पर घोल छिड़काव से मात्र 10% खर्च में तुलनात्मक 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर भूमि में प्रयोग के प्रायः सभी फसलों में, विशेषकर तिलहनों में जैसे राई, सरसों, सूरजमुखी, तिल आदि में 10 से 15% उपज आसानी से बढ़ाई जा सकती है। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं क्रिटिकल स्टेजेस पर सिंचाई देने से कम सिंचाई जल से अधिक उपज ली जा सकती है। वर्तमान में सिंचाई जल उपलब्धता की एक समस्या है। ऐसा करने से जल की काफ़ी बचत कर खेती को सस्ता बनाया जा सकेगा। फुब्बारी या स्प्रिंकलर सिंचाई एवं ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद कर टपक सिंचाई अपनानी चाहिए ताकि जल की काफ़ी बचत की जा सके। सरकार द्वारा ऐसी सिंचाई हेतु अनुदान भी दिया जाता है। उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाए। धान यानी अन्न वाली फसलों में 4:2:1, दलहनों में 1:2:1, नत्रजन, फास्फोरस, पोटास तत्व दिए जाएं। उर्वरकों के सही प्रयोग हेतु मिट्टी की जांच के आधार पर ही दें। उर्वरक क्षमता बढ़ाने हेतु हल्की भूमि में नत्रजन 2 से 3 बार में, फास्फोरस व पोटास तत्वों की पूरी मात्रा 1 ही बार में, बीज बुवाई से पूर्व कूड़ों में बीज के 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे दें। प्रायः कृषक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, अतः इस विधि से उर्वरक दें तो उर्वरकों की मात्रा में काफ़ी बचत की जा सकती है। एकीकृत पोषण प्रबंधन, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, एकीकृत सिंचाई प्रबंधन एवं एकीकृत कीट व्याधि प्रबंधन से खाद, सिंचाई जल, खरपतवार नियंत्रण पर बगैर उपज के कटौती के कृषि लागत को काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। जैव कीटनाशी, बायोपेस्टिसाइड जैसे नीम का तेल, तंबाकू, रीठा, गेंदा, तुलसी, मेंथा के अर्क के प्रयोग से कम खर्च में सफल कीट नियंत्रण कर रसायनों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। नीम का तेल 5 से 6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर कीट नियंत्रण हेतु फसलों पर छिड़कें। गौमूत्र एवं नीम की पत्तियों का अनुपात 4:1 में बने कीटनाशी द्वारा कीट नियंत्रण उपयोगी है, जिस पर न के बराबर खर्च आता है। इसे आसानी से बनाया जा सकता है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ओपी राजपूत की वार्ता। शीर्षक था कृषि लागत कम कैसे करें। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला अन्य प्रसारण दिल्ली की आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का।
2: वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीय समकक्षया सानेताकाई चेत्यनया सह वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिक सहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिक हिताय क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां आदान प्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य 3-दिवसीय यात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्

0: प्राप्ता। प्रधानमंत्री तागाईची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। विदेश मंत्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धन दिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्री मोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 एई राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते षट्मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रीय राजधान्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् उत्तर प्रदेशे राष्ट्रीय राजमार्गस्य 34 इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खंडस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः षड् मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मंत्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे 25.1 दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदात्री सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कंदुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरंट कप इत्यस्य 35.1 संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 770।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
4: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत

0: जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: खाना हो सके तो लोहे की कढ़ाई में पकाएं। जन्म के बाद 4 माह तक नवजात शिशु के लिए स्तनपान सबसे संतुलित आहार है। यदि किसी वजह से माँ स्तनपान कराने में असमर्थ है तो बच्चे को डिब्बे का दूध दे सकते हैं या ताजा दूध बिना पानी मिलाए देना चाहिए। स्तनपान के दिनों में माँ को भी अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे को दस्त लग जाए तो उसे अतिरिक्त विटामिन ए की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लें। विटामिन ए की कमी से आंखों के आगे का पर्दा यानी कॉर्निया सूख जाता है और इसमें जख्म होने से आंखों की रोशनी जा सकती है। 4 महीने के पश्चात स्तनपान के साथ साथ शिशु को दाल सब्जी, केला, सूजी की खीर इत्यादि भी देना शुरू कर दें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए तो उसे घर में बना हुआ सभी खाना देना शुरू कर दें। बच्चे को फल, हरी साग सब्जियां, गाजर, अंडा, दूध अवश्य दें। जहां तक हो सके आज के युग के फास्ट फूड आदि खाने से बच्चे को रोकें। अगर बच्चा इसी से पेट भर लेगा तो आवश्यक तत्व उसके शरीर में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंखों में कई बदलाव आते हैं, मोतियाबिंद, पर्दे की बीमारियां इत्यादि होने लगती हैं। इन सब से बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान है। यह चीजें हरी साग सब्जियों एवं ताजे फलों में पाई जाती हैं। इसलिए वयस्क लोगों को भी दिन में 2-3 बार इसका सेवन करना चाहिए। तंबाकू एवं शराब के सेवन से विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिससे आंखों की नसें तथा पिछले पर्दे पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए इनके सेवन से परहेज करें। कई भाई बहन आजकल डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं। यह बीमारियां आंखों के भीतरी पर्दे को क्षति पहुंचाती हैं। डायबिटीज होने के 15-20 वर्ष बाद 80% लोगों की नजर में फर्क पड़ने लगता है। आधुनिक इलाज एवं इंसुलिन के प्रयोग से मधुमेह के मरीजों की उम्र काफी बढ़ गई है। आंखों की नियमित जांच, मधुमेह का सही इलाज एवं उपचार तथा खान पान में परहेज बहुत जरूरी है। मधुमेह में मीठे खाद्य पदार्थ, शक्कर, मिठाई तथा मीठे फलों का पूरी तरह परहेज करना चाहिए। वजन को नियमित करने के लिए चिकनाई कम से कम लें तथा उचित व्यायाम जरूर करना चाहिए। उच्च रक्तचाप होने पर शरीर का वजन कम करना चाहिए तथा उचित इलाज के साथ साथ नमक का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। संतुलित आहार ना लेने से मोतियाबिंद कम उम्र में ही आ जाता है। खून की कमी जो महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, इसमें भी मोतियाबिंद कम उम्र में देखा जाता है। खून की कमी से पर्दे पर भी असर पड़ता है और नजर कम हो जाती है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी खुराक पर नियमित ध्यान दें ताकि हमारी आंखें आजीवन स्वस्थ रहें।
1: स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वाणी अग्रवाल की वार्ता। शीर्षक था आंखों के लिए पोषण का महत्व।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश से

0: शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहां के विकास को और गति देगा।
2: मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था, घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर से प्रदेश व्यापी डीजी रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
4: अभियान के दौरान सभी तहसीलों में सीमांकन एवं पैमाइश से जुड़े लंबित मामलों का निस्तारण अत्याधुनिक डीजी रोवर GNSS तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भूमि से संबंधित सभी सेवाएं सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भूमि की पैमाइश पारंपरिक जरीब जैसी विधियों से होती रही, लेकिन बदलते समय और बढ़ते भूमि विवाद को देखते हुए अब आधुनिक तकनीक को अपनाना आवश्यक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजी रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी। इससे सीमांकन संबंधी त्रुटियों में कमी आएगी, भूमि विवादों और अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 से 31 जुलाई तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ ही जन भागीदारी भी जरूरी है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित लगभग सभी जिलों में कल जन जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों के बीच संचारी रोगों से बचाव का संदेश दिया गया।

0: गोरखपुर में अभियान का उद्घाटन करने के बाद महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने मीडिया से बात की।
1: पूरे महीने में जो है इस तरह का कार्यक्रम संचालित रहेगा, विभिन्न मलिन बस्तियों में कार्यक्रम होने हैं, वार्ड वाइज भी कार्यक्रम होने हैं, तो इस महीने हम एक सघन अभियान चलाकर इस संचारी रोगों के प्रति जागरूक बनाने का और साथ ही साथ उनको शिक्षित करना है कि इससे क्या क्या हमें फायदे हैं।
0: गोरखपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह के दौरान हॉस्टल्स और मलिन बस्तियों में डेंगू से बचाव के लिए विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोप

0: और एक्स हैंडल AIRNews_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 जून को गठित SIT को 7 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसकी समयावधि 30 जून को समाप्त हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कल मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक जोड़ी अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है। इस गाड़ी में 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा यह प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ाई गई। और आज से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास।

आसपास कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। यूपीटेट आज से कई कड़ी सुरक्षा में शुरू होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2026 टेट 2, 3 व 4 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में अलग अलग केंद्रों पर होगी। गुरुवार से शुरू हो रही परीक्षा में लखनऊ के 46 केंद्रों पर 76,720 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्वक व सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए कई मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है।

यूपी टेट परीक्षा के लिए रेल मंडल ने विशेष भीड़ प्रबंधन व्यवस्था की है। 2 से 4 जुलाई तक होने वाली परीक्षा के लिए यात्रियों और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए यूपी ने रेलवे के द्वारा कई इंतजाम किए गए हैं। आगरा रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि आगरा कैंट एवं मथुरा जंक्शन स्टेशनों पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये 24 घंटे स्टेशन प्रबंधन, यात्री सुविधाओं और भीड़ नियंत्रण की निगरानी करेंगे। दोनों स्टेशनों पर रेलवे चिकित्सकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं एमजी रोड पर नया ट्रैफिक प्लान डायवर्जन लागू किया गया है। हम आपको इसकी व्यवस्था बता देते हैं। भगवान टॉकेट से कलेक्ट्रेट होकर जाने वाले वाहन, कार आदि वाटर बॉक्स चौराहे, यमुना किनारा, पिछली घर, छिपी टोला, बालूगंज, विक्टोरिया, तिराहा होकर जाएंगे। वहीं सूरसदन से कलेक्ट्रेट होकर जाने वाले वाहन, कार इत्यादि पालीवाल पार्क, जीवनी मंडी, यमुना किनारा, बालूगंज, विक्टोरिया, तिराहा एवं करियप्पा रोड होकर जाएंगे। हरिपर्वत से कलेक्ट्रेट होकर जाने वाले वाहन, कार इत्यादि घटिया, आजम खान रोड, पालीवाल पार्क, जीवनी मंडी, यमुना किनारा, बालूगंज, करियप्पा होकर जाएंगे। वहीं दोपहिया वाहन चालक ढाकरन, तिराहा से सदरभट्टी, मंटोला, मदीना होटल, आरओबी, बिजली घर, छिपी टोला, बालूगंज, ओलिया रोड, फोर्ट होते हुए विक्टोरिया, तिराहा एवं करियप्पा रोड होकर जाएंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलिट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उन्हें केवल 10 जुलाई तक का समय दिया गया है। नगर निगम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अब पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। सामान्य आवेदन शुल्क 2 रूपये से बढ़कर 20 रूपये, विलंब या विशेष आवेदन शुल्क 5 रूपये से बढ़कर 50 रूपये और 1 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड का शुल्क 10 रूपये से बढ़कर 100 रूपये कर दिया गया है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1454 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है। पात्र व्यक्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुछ सूचनाएं रेलवे की तरफ से। रीमॉडलिंग कार्य के चलते 2 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। रेलवे के झांसी मंडल में ललितपुर स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते 2 ट्रेनें निरस्त कर दी रहेंगी। आगरा रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि हुबली योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 13

जुलाई और योग नगरी ऋषिकेश हुबली एक्सप्रेस 16 जुलाई को नहीं चलेगी। वहीं यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने 64073 64074 नई दिल्ली कोसीकला दैनिक EMU का धौलपुर तक विस्तार किया है। PRO ने बताया कि ट्रेन अब प्रतिदिन धौलपुर तक जाएगी और वहीं से लौटेगी।

आगरा में 6 रेलवे स्टेशनों पर 14 एटीएम लगे। यात्रियों की सुविधाओं के लिए आगरा रेल मंडल के 6 रेलवे स्टेशनों पर परिसरों में 14 एटीएम स्थापित किए गए हैं। पीआरओ ने बताया कि आगरा कैंट पर 3 एटीएम, मथुरा जंक्शन पर 4, अछनेरा बिशपुरी और राजा की मंडी पर 1 तथा आगरा कैंट पर 4 एटीएम लगाए गए हैं।

0: कुछ अन्य सूचनाएं रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने गाड़ी संख्या 125471 25548 आगरा कैंट साबरमती एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 22547 225548 ग्वालियर साबरमती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव की घोषणा की है। वहीं रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए गाड़ी संख्या 09601 09602 मदार जंक्शन पटना जंक्शन मदार जंक्शन समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। वहीं उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन बीना सेक्शन के ललितपुर स्टेशन पर यार्ड मॉडिंग का काम का जारी है, जिससे ट्रेनें निरस्त की गई हैं। कार्यक्रम आसपास श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा। आइए सुनते हैं ये मधुर भक्ति गीत।
1: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। उत्तर प्रदेश में 13,116 पंचायत सचिवों की होगी भर्ती। पंचायती राज विभाग 3 चरणों में ये भर्ती पूरी करेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश की हर पंचायत को स्वतंत्र सचिव मिल जाएंगे और पंचायतों के कार्यों को गति मिल सकेगी। पहले चरण में 4,372 पंचायत सचिवों की भर्तियां की जाएंगी। उसके बाद के 2 अन्य चरणों में बराबर संख्या में सचिवों की भर्ती की जाएगी।

इंडिगो एयरलाइंस ने इकोनॉमिक क्लास के यात्रियों के लिए इंडिगो लाइट नाम के एक नया किफायती किराया विकल्प शुरू किया है। इसके तहत सिर्फ केबिन बैराज बैगेज के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को सस्ता टिकट मिलेगा। केबिन बैगेज वे छोटा पैक होता है जिसे आप हवाई जहाज या ट्रेन के डिब्बे में अपने साथ ले जा सकते हैं। इंडिगो लाइट के तहत टिकट का दाम एयरलाइन की अलग अलग श्रेणियों में दिए गए विकल्पों से सबसे कम रहेगा।

और अगली खबर मौसम विभाग से जो लेकर के आई है खुशियां। जी हां, चिलचिलाती गर्मी से अब राहत मिलने को है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, ललितपुर समेत 25 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। कानपुर, मथुरा समेत कई जिलों में बादल छाए रहे और ठंडी हवा ने भीषण गर्मी और लू के असर को पूरी तरह खत्म कर दिया। लखनऊ में भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई और दोपहर से शाम तक बाद घने बादल छाए रहे। अगले 3 दिनों में मानसून के यूपी में तेजी से आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बताई गई हैं। अब पूर्वी और पश्चिमी यूपी में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 192 रुपए सस्ता हो गया है। अब 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर 3006 रुपए का मिलेगा। इससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। 1 जुलाई से सिलेंडरों की कीमत प्रभावी हो गई है। 1 जुलाई से 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल एलपीजी

सिलेंडर 3,198 रुपए का था, जो अब घटकर 3,006 रुपए का हो गया है। इस कटौती से छोटे बड़े कारोबारियों को गैस लागत में कुछ कमी आएगी और उन्हें सहूलियत मिलेगी। लगभग 40,000 कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को इसका लाभ प्राप्त होगा। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है।

होम्योपैथिक निदेशालय विभाग के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 265 पदों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 24 अक्टूबर को स्क्रीनिंग परीक्षा कराएगा। वर्ष 2025 के विज्ञापन की इस भर्ती परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना 8 अप्रैल को आयोग ने जारी की थी, लेकिन अब संशोधित पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना जारी की गई है। इसे आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों को जांच के लिए अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही जगह पर एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी ब्लॉक के भूतल में रेडियो डायग्नोस्टिक विभाग संचालित किया जाएगा।

अब कुछ सूचनाएं हमारे विद्यार्थियों के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने बीएड प्रथम वर्ष की प्रयोगात्मक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बैच वर्ष 2025-27 की प्रयोगात्मक परीक्षा 9 से 16 जुलाई तक कराई जाएंगी। प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आगरा कॉलेज की बीए और बीएससी में प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी कर दी गई है। प्रवेश के लिए 8 और 9 जुलाई को काउंसलिंग होगी।

2/221 नामनेर दुर्गा देवी मंदिर के पास थाना सदर बाजार आगरा। ये दिनांक 8 जून 2026 से लापता हैं। इनका कद 5 फुट 6 इंच, आंखें सामान्य व चेहरा सामान्य है। गुमशुदगी के दौरान ये गुलाबी रंग की चेकदार शर्ट पहने हुए थे। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना सदर बाजार आगरा पर सूचित करें।

अगली सूचना के अनुसार दीपांशु पुत्र श्री साधुराम निवासी उमनगर नगला बूढ़ी दयालबाग थाना न्यू आगरा जनपद आगरा, इनकी उम्र करीब 19 वर्ष है और ये दिनांक 18 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। कद 5 फुट 3 इंच, आंख नाक कान औसत, रंग गेहुआ। गुमशुदगी के दौरान ये नीली वाइट टी शर्ट, जीन्स पैंट और हरे कलर की चप्पल तथा काले रंग की टोपी पहने हुए थे। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना न्यू आगरा जनपद आगरा पर सूचित करें।

अगली सूचना के अनुसार प्रियंका रावत पुत्री रॉकी रावत उम्र 21 वर्ष निवासी साहपुर नदीम थाना सैया आगरा ये दिनांक 29 मई सन 2026 से लापता हैं। इनका कद 5 फुट 4 इंच रंग गोरा बाल काले आंखें सामान्य व चेहरा सामान्य है। गुमशुदगी के दौरान ये सामान्य सलवार सूट पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर नदीम थाना सैया आगरा पर सूचित करें और इसी के साथ ही गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं और आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 8 बजने को हैं। हमारा अगला अन्न प्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचार प्रभात का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से

0: मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय।
1: प्रधानमंत्री तकाई जी भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण

0: पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल डीजल सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और

0: हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस, एटीएफ में राहत, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की पीएम, रणनीतिक संबंधों पर जोर, पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, पत्र लिखता है गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं, लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए, जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाया तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanaya Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanaya Takaichi in New Delhi today. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between Prime Minister Modi and Prime Minister Takaichi. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The External Affairs Ministry said that the visit marks an important step in taking forward the special strategic and global partnership between India and Japan. Our correspondent reports that economic security has emerged as a key pillar of the

0: The Economic Times. India's economy ended the first quarter of financial year 2027 on a strong footing, with various high-frequency indicators showing robust growth in June, reflecting resilience despite the West Asia war and other external headwinds. The Hindustan Times opens with the headline, ATF commercial LPG rates cut as crude prices ease, while the Hindu writes, commercial LPG prices reduced by 183 rupees per refill. The Times of India, under a picture of new Indian Army Chief General Dhirat Seth saluting his father, Lieutenant General Krishna Mohan Seth, retired, informs, General Seth said his aim would be to build a tech-enabled, future-ready army capable of operating effectively across multiple domains, while the statesman informs, new army chief outlines Vijay vision, stresses modernization of army. And finally, the Times of India informs that University of Minnesota scientists, under a project called Spud Cell, built from scratch synthetic cells that can grow, feed and reproduce like a natural cell, claiming the work could in time lead to made-to-order living machines. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold annual summit with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi today. EPFO notifies 8.25% interest rate on EPF deposits for financial year 2025-26. Centre issues notice to Meta over new username feature on WhatsApp in India, seeks detailed explanation in 3 days. Delhi government notifies permanent winter pollution master plan to curb seasonal air pollution in the national capital. Belgium stuns Senegal 3-2 in extra-time thriller at FIFA World Cup. And in men's cricket, first T20 international between India and England abandoned due to rain. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने माली साल 2025-26 के लिए ईपीएफ डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 बैन अलाक्वामी मैच बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुज़ाकरात करेंगे। सरबरा सतह के मुज़ाकरात दोनों फरीकों को इस बात का मौका फराहम करेंगे कि वो अपने तमाम बाहमी तआवुन का जायजा लें और उन्हें मुस्तहकम करें। साथ ही साथ आपसी मफादात के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची के दरमियान बातचीत के बाद कई मफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जापान की वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची का भारत का ये पहला दौरा है। वज़ारत-ए-खारजा ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकत दारी को आगे ले जाने में अहम कदम है। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि इक्तसादी सलामती के ताल्लुकात का एक कलीदी सुतून समझा जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: नवंबर 2024 में टोक्यो में हुए पहले इक्तिसादी सलामती मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने कलीदी इश्तराक के लिए तरजीह शोबों के तौर पर 5 शोबों की निशानदेही की थी। इन शोबों में सेमीकंडक्टर्स, अहम मादनियात, दवासाजी, साफ तवानाई और इत्तलात व मवासलाती

0: टेक्नोलॉजी शामिल हैं। इन आला सतही सियासी मुसफियात से भारत जापान ताल्लुकात की अक्कासी होती है। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 समिट के दौरान जापानी वजीर आजम के साथ गुफ्तगू की थी। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने गुज़श्ता साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G7 समिट के मौके पर मुलाकात की थी। बाहमी सतह की सालाना सरबरा मीटिंग शराकतदारी के कलीदी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है। 2025 में सालाना समिट के दौरान जापान भारत के दरमियान इंसानी वसाइल के तबादले और तवाउन के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया था, जिसमें दोनों मुल्कों की तरफ से भारत से जापान के लिए 50,000 हुनरमंद और नीम हुनरमंद अमले समेत 5 साल में 5,00,000 अमले का तबादला का मंसूबा है। सालाना समिट के अलावा वजीर खारजा, वजीर दिफा, NSA, खारजा सेक्रेटरी और दीगर सतहों पर भी आला सतह के तबादले और मीटिंगें बाकायदा तौर पर होती रहती हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: इस दौरान वजीराजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो जापान की वजीराजम सानाए ताकाइची के साथ आज वसीतर उमूर पर तबादले ख्याल के मुंतजिर हैं, जिससे भारत और जापान के दरमियान खसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी को मजीद वसत मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जापान की वजीराजम के भारत दौरे पर उनकी मेजबानी करना उनके लिए बायस मसरत होगा। वजीराजम मोदी ने कहा कि मोहतरमा ताकाइची की मुश्तरक कोशिशों के जरिए भारत और जापान भारत बहरुल काहल और उससे आगे भी अमनो इस्तेकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर शरह सूद 8.25% रखने से मुतालिक सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। EPF स्कीम 1952 पर मेहनत और रोजगार की वजारत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद इस शरह सूद का ऐलान किया गया है। EPFO ने अपने इलाकाई और जोनल दफातर को हिदायत दी है कि वो अराकीन के EPF खातों में मंजूर शुदा शरह के मुताबिक सूद की रकम मुंतकिल करे। हुकूमत ने भारत में व्हाट्सएप के जरिए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है। जराए ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत पेश करने की मेटा को हिदायत दी है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: जराए ने बताया कि वजारत ने व्हाट्सएप की जानिब से किए गए अवामी ऐलान को नोट किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप ने भारत समेत आलमी सतह पर यूजर नेम फीचर का मरहलेवार तरीके से आगाज किया है। व्हाट्सएप ने बताया कि यूजर नेम फीचर के फाल हो जाने के बाद पैगाम भेजने वाले का मोबाइल नंबर पहली मरतबा राबता करने वाले शख्स को नजर नहीं आएगा और इख्तियारी यूजर नेम की इजाफी कंट्रोल के लिए सेट की जा सकती है। जराए ने बताया कि इस बारे में तश्वीश है कि यूजर नेम फीचर के जरिए ऑनलाइन धोखाधही, जालसाजी, डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों और जाली शनाख्त जाहिर करने जैसे जराइम में इजाफा हो सकता है। इस बारे में भी तश्वीश है कि यूजर नेम फीचर जाली शनाख्त जाहिर करने और खुद को कोई और जाहिर करने जैसे मामलों को बढ़ावा देगा। जराए ने मजीद बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने मेटा को यह भी हिदायत दी है कि वो इस मामले पर मुशावरत खत्म होने से पहले यूजर नेम फीचर की शुरुआत ना करे। नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा में फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है, जो कौमी राजधानी में हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
0: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि नया फ्रेमवर्क आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मौजूदा इकदामात को जवाबित के वाहिद सेट के तहत यकजा करेगा और हर मौसम सरमा में अलग अलग अहकाम जारी किए बगैर इन जवाबित के बरवक्त निफाज को यकीनी बनाएगा। ये नोटिफिकेशन हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQR के नजरसानीशुदा GRAP रहनुमा खतूत और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को भी यकजा करता है। नए जब्तों के मुताबिक मजाज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को पूरी दिल्ली में साल भर पेट्रोल पंप, CNG और LPG स्टेशनों पर ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली से बाहर रजिस्टर BS6 इखराज से कम दर्जे की गाड़ियों का दिल्ली में दाखला ममनू रहेगा। न्यूज डेस्क से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।

हुकूमत ने खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री को अगले साल 14 जुलाई तक एक साल की तौसी दे दी है। जनाब मिस्री ने 15 जुलाई 2024 को खारजा सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदा संभाला था। वो जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक चीन में भारत के सफीर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। 57 रोजा सालाना यात्रा सरकारी सतह पर कल से कश्मीर के दो रास्तों से शुरू हो गई है, जो 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। यात्रियों का पहला जत्था सख्त सिक्योरिटी के दौरान आज सुबह सवेरे जम्मू से रवाना हुआ। यात्रा अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर, रिवायती नुनवन पहलगाम और गंदरबल जिले में 14 किलोमीटर बालतल रास्ते से शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरे और आरएफआईडी ट्रैकिंग रास्तों पर कसीर सती सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। यात्री जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा NH 44 पर सफर करेंगे। यात्रा ट्रैफिक के लिए मुगल रोड और धार रोड जैसे मुतबादिल रास्तों पर सख्त ममानियत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों पूरी तरह से सरगर्मी से जारी हैं। तकरीबन 4 लाख यात्रियों ने यात्रा के शुरू होने से पहले ही अपना इंदराज कराया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले दो दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे ने अगले दो दिन तक साहली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने मजीद कहा कि अगले तीन दिन तक हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। इस दौरान कौमी राजधानी दिल्ली में आज सुबह शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे शहर के रिहायशियों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। केरलम के ज्यादातर हिस्सों में आज बारिश के कमजोर होने की तवक्को है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि केरलम के कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के अलावा तमाम जिलों में बारिश की शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। कन्नूर और कासरगोड, जो कि गुज़िश्ता दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट पर थे, आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महकमे ने कोझिकोड जिले के लिए बदस्तूर येलो अलर्ट बरकरार रखा है। सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी साइबर धोखाधड़ी केस में गुजरात के राजकोट से हरियाणा के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी के तहत एक खातून मोहम्मद शहरी को दो मुख्तलिफ बैंक खातों से 25 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करने पर मजबूर किया गया था। शिकायत के मुताबिक मुतासिर खातून को उन नामालूम अफराद की जानिब से धमकी भरे फोन कॉल मौसूल हुए थे, जो खुद को सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी अफसरान के तौर पर जाहिर कर रहे थे। फोन करने वाले नामालूम अफराद ने झूठे दावे किए थे कि खातून मोहम्मद शहरी के बैंक खाते को दहशतगर्दी से मुतालिक सरगर्मी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उस मोहम्मद खातून को गिरफ्तारी और उनकी जायदाद जब्त करने की धमकी दी गई थी। अपने दावों को मोतबर साबित करने के लिए उन्होंने एक फर्जी कुर्की का हुक्म भी भेजा। तहकीकात के दौरान मजाज अदालत से जरूरी अहकाम हासिल करने के बाद मुतासर खातून को 2,65,000 रुपये रिफंड भी किए गए थे। सीबीआई ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो धोखाधही पर मबनी सरकारी सरमायाकारी स्कीमों, कानून नाफिज करने या रेगुलेटरी एजेंसियों और डिजिटल गिरफ्तारी घपलों के नाम पर की गई फर्जी कॉल समेत साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ चौकन्ना रहें। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसकारों के जरिए जारी बिलवास्ता मुजाकिरात कल दोहा में खत्म हो गए। खतर की हुकूमत की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस महीने की 9 तारीख को ईरान के साबिक रहबर आला अली खामिनाई की आखिरी रसूमात के बाद मुजाकिरात जारी रखने से इत्तेफाक किया है। मीडिया के अफराद से बात करते हुए अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने बताया कि दोहा मुजाकिरात खुश असलूबी से जारी हैं। कुछ तकनीकी सतह पर बातचीत पहले से ही जारी है। उन्होंने कहा कि अगले मरहले की बातचीत के दौरान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई के बाद मुजाकिरात एक मुस्तहकम मौकफ के साथ किए जा रहे हैं। फीफा आलमी कप में बेल्जियम इजाफी वक्त में सेनेगल को 2-3 से हराने के बाद नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इस तरह वो प्री क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया है। प्री क्वार्टर फाइनल में अब बेल्जियम का मुकाबला अमरीका या बोस्निया हजरे गोविनिया मैच के फातह से होगा।

0: मर्दों के क्रिकेट में कल रात चेस्टर ली स्ट्रीट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला टी20 बैनुल अक्वामी मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 गेंदों में 68 रन बनाए। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को खसूसियत के साथ शाये करते हुए लिखा है कि ये एक इनकलाबी कदम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने नई समत अता करते हुए तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। जापान की वजीर आजम सिनाए तकेशी ने 3 रोजा सरकारी दौरे पर भारत पहुंची। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की खबर है, बैनुल अक्वामी बाजार में गैस की कीमतों में तखफीफ के बाद मुल्क में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमत में कमी। इसी अखबार की एक और खबर है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी दरअंदाजी और आबादी के बदलते हुए ढांचे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की अपनी हमनसब सनाए ताकाइची के साथ सरबरा सतह के सालाना मुजाकिरात करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने माली साल 2025-26 के लिए EPF डिपॉजिट पर 8.25% शरह सूद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मरकज ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर शुरू करने से मुतालिक मेटा को नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर यूजर नेम फीचर से मुतालिक तफसीली वजाहत देने की हिदायत दी है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में मौसमियाती फिजाई आलूदगी पर मुस्तकिल तौर पर काबू पाने के लिए मौसम सरमा की फिजाई आलूदगी से मुतालिक मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया है। और फीफा आलमी कप में बेल्जियम ने एक सनसनीखेज मैच में सेनेगल को 3-2 से हरा दिया, जिसके बाद बेल्जियम नॉकआउट मरहले में पहुंचने के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर की आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

समीर का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, अनुराधा अलका याग्निक और एमजी श्री कुमार की आवाजों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम शवन ने और फिल्म का नाम था सात रंग के सपने। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में। बोल समीर के हैं, धुन बनाई है नदीम शवन ने और फिल्म का नाम है साजन।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के सुर में भी आपने सुना फिल्म साजन का गीत। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीतकार हैं नवाब आजू, संगीतकार नदीम शमन और फिल्म का नाम है साथी।

0: बिच्छू फिल्म का गीत अभी आपने सुना, हैरी आनंद और जसपिंदर निरूला की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, उससे पहले आइए लेते हैं श्रोताओं एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

येसुदास की स्वर में अभी आपने सुना सुनैना फिल्म का गीत। गीत के बोल व संगीत रविंद्र जैन के थे। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत साधना सरकम और मधुश्री की आवाजों में। फिल्म का नाम है साथिया, शब्दशना गुलजार की है, संगीत AR रहमान क्या दिया हुआ।

0: साथिया फिल्म का गीत अभी आपने सुना, साधना सरगम और मधुश्री की आवाजों में। और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है जिले की हलचल का।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का।
3: जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने गंगासू गंगा पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें पुल पर कराए गए मरम्मत कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों एवं आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य पूर्ण होने के उपरांत पुल को फिलहाल हल्के वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुल पर शेष तकनीकी परीक्षण एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात शीघ्र ही भारी वाहनों के आवागमन के लिए भी खोल दिया जाएगा। गंगासू गंगा पुल के पुनः संचालित होने से रायबरेली सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक एवं सामाजिक गतिविधियों को भी गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि
4: 1970 के दशक का जो निर्मित पुल है वो काफी दिनों से बंद था, जिसमें रिपेयर वर्क चल रहा था। अब अभी वो लाइट व्हीकल्स के लिए खोला गया है और जल्द ही उसको 10 से 15 जुलाई के बीच में हेवी व्हीकल्स के लिए भी खोल दिया जाएगा।
3: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दोतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने राष्ट्रीय स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR प्रतियोगिता 2025-26 में विजेता बनकर एक नया इतिहास रच दिया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु देश के कक्षा 1 से 12 तक के कुल 14,75,000 समस्त सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में से यह प्रतियोगिता निर्धारित मानकों पर जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आकलन कर अंतिम रूप से पूरे देश के कुल 191 विद्यालयों को इस पुरस्कार हेतु विजेता घोषित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय दोतरा विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद रायबरेली ने प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अब राष्ट्रीय स्तर पर भारत में 91वीं रैंक प्राप्त कर इस प्रतियोगिता का राष्ट्रीय विजेता बन चुका है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता के प्रत्येक विजेता हेतु जुलाई माह में नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विद्यालय को प्रशस्ति पत्र के साथ 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। हेडमास्टर को शैक्षिक एक्सपोजर विजिट पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय दोतरा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर समस्त विद्यालय परिवार, ग्राम समुदाय एवं जनपद रायबरेली को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

0: उन्होंने कहा कि जनपद दौतरा से दिल्ली तक गूंजा नाम राष्ट्रीय जीत ने रायबरेली व उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर डलमऊ स्थित वीआईपी गंगा घाट पर आयोजित भव्य गंगा महाआरती कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री राकेश अचान ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए माँ गंगा का विधिवत पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में बड़ा मठ के देवेंद्रानंद जी महाराज की गरिमा में उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं से माँ गंगा की निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखने का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह गंगा सहित सभी जल स्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाए जाने की अपील की। महागंगा आरती के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद, दीपों की अलौकिक आभा एवं भक्ति रस से ओत प्रोत भजन कीर्तन ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार कर दिया। इस अवसर पर आपदा एवं बाढ़ नियंत्रण में सराहनीय योगदान देने वाले नाविकों व गोताखोरों को सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनपद में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार तथा जन जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में सांसद केएल शर्मा ने जनपदवासियों से टीबी उन्मूलन अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा कि टीबी मुक्त जनपद का सपना जन भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, बुखार, लगातार वजन कम होना, रात में अत्यधिक पसीना आना अथवा बलगम के साथ खून आना जैसे लक्षण दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज न करें। ऐसे व्यक्ति को तत्काल अपने निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीबी की जांच करानी चाहिए। जनपद न्यायाधीश अमित पाल सिंह, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका व पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी बैरकों का भ्रमण किया तथा कारागार की पाकशाला में बंदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं नियमानुसार दुरुस्त रखी जाएं और बंदी गृह में रह रहे मरीजों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जेल की सभी व्यवस्थाएं जेल मैनुअल के अनुरूप ही संचालित हों। जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका द्वारा रायबरेली विकास प्राधिकरण के माध्यम से बरखापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर और बिल्डिंग का अवलोकन करते हुए निर्माण गुणवत्ता एवं मूलभूत सुविधाओं का गहनता से जायजा लिया। उन्होंने भवनों के बाहरी एवं आंतरिक हिस्सों का निरीक्षण करते हुए पाया कि कुछ कार्य अभी भी अवशेष हैं।
1: रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का।
2: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जालौन में आयोजित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में 41 विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी आध्यात्मिक स्थलों के विकास, कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा के सुदृढ़ मॉडलों को पहले और अब की थीम में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में सूचना विभाग द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को चित्रों एवं जानकारियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना आदि के लाभार्थियों को अनुदान चेक और आवास स्वीकृत पत्र वितरण किए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत में विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और आज करोड़ों गरीब किसान, महिला, युवा एवं वंचित वर्ग के इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद जालौन के युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष औद्योगिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में 100 युवा उद्यमियों को लेकर जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर

0: रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह भ्रमण कार्यक्रम युवाओं को उद्यमियों की वास्तविक कार्य प्रणाली से परिचित कराने एवं उन्हें स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य से आयोजित किया गया। भ्रमण के दौरान युवाओं के राजकीय औद्योगिक संस्थान कालपी स्थित हथकरघा, हाथ कागज उद्योग की इकाइयों तथा खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान का अवलोकन किया गया। जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्ण सुबह पर जनपद मुख्यालय उरई में योग के प्रति अभूतपूर्व जन उत्साह देखने को मिला। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नागरिक स्वयं सड़कों पर उतरकर दूसरों को योग के प्रति जागरूक करते नजर आए। लगभग 4,000 लोगों ने टाउन हॉल के चौक, घंटाघर और रेलवे स्टेशन मार्ग होते हुए करीब 5 किलोमीटर लंबी भव्य जागरूकता रैली निकालकर स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। रैली को सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी के सिंह ने टाउन हॉल परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उरई के सभी वार्डों से 100 से अधिक लोगों ने सहभागिता रखी। शहर के मुख्य चौराहों और मार्गों पर नागरिकों ने रैली का स्वागत किया तथा योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास की सराहना की। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने कहा कि योग भारत की संस्कृति विरासत ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का आधार है। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि इसकी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता यह दर्शाती है कि जनपद में योग के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्म से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।
1: हिंदुस्तान के बाहर भी जमीन के जिस टुकड़े पर मेरी राख बिखरेगी वो जमीन हमेशा के लिए हिंदुस्तान को देगी।

मन्ना डे के स्वर में अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत, जिसके बोल लिखे थे कैफी आजमी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने और फिल्म का नाम हिंदुस्तान की कसम। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं मज्जू सुल्तानपुरी, संगीतकार नौशाद और फिल्म का नाम है साथी।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार के स्वर में। फिल्म का नाम है रंगोली, गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का दिया हुआ।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। गीतकार हैं हर्षचयपुरी, संगीतकार सी रामचंद्रन और फिल्म का नाम है रूठा न करो।

मोहम्मद रफी के गाइस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद लोकगीत। गायक कलाकार हैं अशोक कुमार मथुरिया।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। गायक कलाकार थे अशोक कुमार मथुरिया। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 106.1 मीटर पर।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता।

हेमलता के स्वर में भी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत। गीत के बोल रविंद्र जैन के, संगीत रविंद्र जैन का दिया हुआ और फिल्म का नाम था अखियों के झरोकों से। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अमित कुमार के स्वर में गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन और फिल्म का नाम है बालिका वधू।

सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, यीशुदास के स्वर में। गीतकार थे पंडित पंकज, संगीतकार राजकमल। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल। गीतकार गोविंद मुनिस, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

हिना फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में, गीत संगीत रविंद्र जैन का दिया हुआ। और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संजीव अभ्यंकर का गाया राग भैरव में ख्याल गायन।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार संजीव अभ्यंकर द्वारा राग भैरव में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार। स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में, और आज का ये अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कुछ आवाजें केवल कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल की धड़कनों में उतर जाती हैं। कुछ नाम केवल कलाकार नहीं होते बल्कि एक एहसास बन जाते हैं। जब वह गायक ऊंचे सुरों में देशभक्ति गाता था तो करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। जब वह प्रेम गीत गाता था तो प्रेमियों के दिलों में नई उम्मीद जाग उठती थी, और जब वह भजन गाता था तो वातावरण श्रद्धा और भक्ति से भर जाता था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वह आवाज किसकी थी जिसने एक ऐसे दौर में अपनी पहचान बनाई जब हिंदी फिल्म संगीत पर कई महान गायकों का दबदबा था? वह कौन था जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और प्रतिभा के बल पर अपनी अलग पहचान बनाई? श्रोताओं, ये कहानी है एक ऐसे साधारण युवक की जिसने असाधारण सपने देखे। यह कहानी है संघर्ष, समर्पण, आत्मविश्वास और संगीत के प्रति अटूट प्रेम की। यह कहानी है उस गायक की जिसकी आवाज में दर्द भी था, जोश भी था, प्रेम भी था और भक्ति भी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस महान पार्श्व गायक की जिसका नाम है मोहम्मद अजीज़।

0: इस प्यारे से गीत के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आज के कलाकार हैं मोहम्मद अजीज। जी हाँ, सुरों से जिसने दिलों का संसार सजाया, हर गीत में प्यार और एहसास जगाया। वो चला गया मगर उसकी आवाज अमर है, हर धड़कन में आज भी उसका ही असर है। श्रोताओं, मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सैयद मोहम्मद अजीब उन नवी था। उनका परिवार मूल रूप से संगीत प्रेमी था और बचपन से ही उन्हें गायन का वातावरण मिला। अजीज साहब जो थे वो बहुत छोटी उम्र से ही संगीत में रुचि दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया था। वे महान गायक मोहम्मद रफी के जबरदस्त प्रशंसक थे। रफी साहब के गीत सुनना, उन्हें गुनगुनाना और उनकी शैली को समझना उनके जीवन का हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि बचपन में जब भी किसी समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता, मोहम्मद अजीज अपनी गायकी से सबका ध्यान आकर्षित कर लेते। धीरे धीरे यह शौक उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। श्रोताओं, हर कलाकार की तरह उनका ये सफर भी आसान नहीं था। सपनों की नगरी मुंबई तक पहुंचना जितना कठिन था, उससे कहीं अधिक कठिन था वहां अपनी पहचान बनाना। उस समय हिंदी फिल्म संगीत में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गजों का प्रभाव था। ऐसे समय में किसी नए गायक के लिए अवसर प्राप्त करना किसी परीक्षा से कम नहीं था। पर मोहम्मद अजीज ने कभी हार नहीं मानी। वे संगीतकारों के दफ्तर के चक्कर लगाते रहे, ऑडिशन देते रहे और अपनी प्रतिभा पर विश्वास बनाए रखा। उनकी मेहनत एक दिन रंग लाई और धीरे धीरे उन्हें छोटे छोटे अवसर मिलने लगे। श्रोताओं, संगीतकार अनु मलिक और बाद में मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। फिल्म मर्द में गाया गया गीत मैं हूं मर्द टांगे वाला उनकी पहचान का आधार बना। इसके बाद उनकी आवाज अभिनेता अमिताभ बच्चन पर खूब जची और वे देखते ही देखते हिंदी सिनेमा के सबसे व्यस्त पार्श्व गायकों में शामिल हो गए। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं उनकी फिल्म मद से ये गीत जो कि उनकी जीत का, उनकी पहचान का आधार बना।
1: जाको

अरे क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, तुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला।

मर्द टांगे वाला। जी हाँ श्रोताओं, एक ऐसा गाना जिसको उन्होंने फिल्म मर्द में बस यूं ही गाया, और लेकिन ये गाना अब फिल्म जगत में जैसे कि उनकी पहचान का आधार बन गया। लोग पूछने लगे कि ये गाना गाने वाले आखिर कौन हैं। अब मोहम्मद अजीज पहचाने जाने लगे थे। जी हाँ, 1980 और 1990 के दशक में मोहम्मद अजीज ने हजारों गीत गाए। उन्होंने रोमांटिक गीत गाए, देशभक्ति गीत गाए, कव्वाली, भजन और भावपूर्ण नगमे, हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे ऊंचे सुरों को भी पूरी शक्ति और सहजता के साथ निभाते थे। यही कारण था कि उनकी आवाज बड़े पर्दे पर नायकों के व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना देती थी। श्रोता, उनकी गायकी की कुछ विशेषताएं थी जैसे कि बुलंद और दमदार आवाज, ऊंचे सुरों पर असाधारण पकड़, भावनाओं को गीत में जीवंत कर देने की क्षमता, देशभक्ति गीतों में जोश और ऊर्जा, भजनों में भक्ति और आत्मीयता, और रोमांटिक गीतों में मधुरता और कोमलता। जी हाँ, उन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली, उड़िया और

अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनेक गीत गाए। 1980 के दशक में सबसे व्यस्त पार्श्व गायकों में गिने जाते थे मोहम्मद अजीज। कई बार वे एक ही दिन में अलग अलग स्टूडियो में कई गीत रिकॉर्ड किया करते थे। अमिताभ बच्चन की आवाज माने जाते थे मोहम्मद अजीज। जी हाँ, 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए अनेक लोकप्रिय गीत मोहम्मद अजीज के ही गाए हुए थे।

श्रोता मोहम्मद असीज को अक्सर मोहम्मद रफ़ी की गायकी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले गायकों में गिना जाता है। उनकी आवाज़ में वही पहचान, बुलंदी, मिठास और भावनात्मक गहराई थी जिसने उन्हें 1980 और 90 के दशक के सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायकों में शामिल कर दिया। उन्होंने अपने साथ के अनेक प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया, जिसमें से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अनु मलिक, बप्पी लहरी, राजेश रोशन, रविंद्र जैन, नदीम श्रवण और आनंद मिलिंद शामिल हैं। विशेष रूप से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए उन्होंने लगभग 250 से अधिक गीत गाए और वे उस समय के सभी बड़े कलाकारों की आवाज बन चुके थे। श्रोता मोहम्मद अजीज केवल एक गायक नहीं थे, बल्कि एक ऐसा युग थे जिसने करोड़ों संगीत प्रेमियों को अपनी आवाज का दीवाना बना दिया। उनका सफर यह सिखाता है कि यदि प्रतिभा के साथ धैर्य, समर्पण और निरंतर मेहनत जुड़ जाए तो सफलता एक दिन अवश्य कदम चूमती है। आवाजें कभी नहीं मरती, वे समय की सीमाओं से परे चली जाती हैं। मोहम्मद अजीज भी आज हमारे बीच भले ही शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके गीत हर पीढ़ी के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम, आज के कलाकार। आज हमने और आपने मिलकर तय किया सफर मोहम्मद अजीज के जीवन का। मिलेंगे कल एक नए कलाकार के साथ, कुछ नई दिलचस्प बातों के साथ और कुछ नए गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए कार्यक्रम से इजाजत अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और आइए कार्यक्रम के

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस उत्साह भरे गीत के साथ।

स्वागत है श्रोताओं इस गीत के बाद, और आशा है कि इस गीत के साथ ही आपका भी उत्साह कुछ बढ़ा होगा। जी हाँ, ये गाना ही कुछ ऐसा है जो हमारा और हमारे देश के खिलाड़ियों का उत्साह दुगना कर देता है। मैदान में श्रोताओं खिलाड़ी पसीना बहाता है, लेकिन उस पसीने की चमक दुनिया तक कौन पहुंचाता है? जब किसी खिलाड़ी की आंखों में जीत के आंसू छलकते हैं, जब राष्ट्रगान की धुन पर पूरा देश गर्व से भर उठता है, तब उन अनमोल क्षणों को, शब्दों को और चित्रों में अमर कर देने वाला एक और योद्धा उस मैदान में होता है। जी हाँ श्रोताओं, और वो होता है खेल पत्रकार। जी हाँ, आज है 2 जुलाई और हर वर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है खेल पत्रकारों के योगदान को सम्मान देना और

पत्रकारिता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना। खेल पत्रकार खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। वे केवल समाचार नहीं देते बल्कि खिलाड़ियों के संघर्ष, उपलब्धियों और प्रेरक यात्राओं को समाज तक पहुंचाकर नई पीढ़ी को खेलों के प्रति और प्रेरित करते हैं। जी हाँ, खेल केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि अनुशासन, संघर्ष, आत्मविश्वास और राष्ट्रप्रेम का सशक्त माध्यम भी है। किसी भी देश की खेल संस्कृति तभी मजबूत होती है जब समाज खेलों को केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि जीवन मूल्य के रूप में स्वीकार करे। इस परिवर्तन में खेल पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। श्रोताओं, बात करते हैं खेल संस्कृति के बारे में। खेल संस्कृति का अर्थ केवल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना नहीं बल्कि इसका अर्थ होता है खेलों के प्रति सम्मान करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना रखना, अनुशासन और टीम भावना रखना, महिलाओं और दिव्यांग खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करना, ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और खेलों को जीवन शैली का हिस्सा बनाना। तब जब समाज इन मूल्यों को अपनाने लगता है तब एक समृद्ध खेल संस्कृति का निर्माण होता है। और इस खेल संस्कृति को और भी मजबूत बनाते हैं हमारे खेल पत्रकार।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और श्रोताओं, आज कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं विश्व खेल पत्रकारिता दिवस की, जी हाँ, जो कि आज ही के दिन 2 जुलाई को मनाया जाता है। श्रोताओं, खेल पत्रकारिता वह माध्यम है जो मैदान में घट रही हर घटना को दुनिया तक पहुंचाती है। आज समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, डिजिटल मीडिया, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से खेल पत्रकार करोड़ों लोगों को दिलों से और खेलों से जोड़ रहे हैं। यदि खेल पत्रकारिता ना होती तो अनेक महान खिलाड़ियों की उपलब्धियां सीमित दायरे में ही रह जाती। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में जो खेल पत्रकारिता है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कहानियां पत्रकारिता के माध्यम से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचती हैं, जी हां, और जिससे मिलती है हमारे देश के खिलाड़ियों को पहचान। जब युवा खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी पढ़ते या सुनते हैं लोग तो उनमें भी आगे बढ़ने का जो है उत्साह पैदा होता है। तो इस तरह से खेल पत्रकारिता के द्वारा प्रेरणा का स्रोत बनते हैं ये लोग। इसके द्वारा छोटे खेलों को पहचान मिलती है, जैसे कि क्रिकेट के अलावा हॉकी, कबड्डी, खो खो, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, बैडमिंटन और पैरा स्पोर्ट्स जैसे खेलों को लोकप्रिय बनाने में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका रही है। श्रोताओं, आज महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियां प्रमुखता से प्रकाशित होती हैं। इससे बेटियों को खेलों में आगे आने की प्रेरणा मिलती है और इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है खेल पत्रकारिता। पत्रकार खेल संगठनों की कमियों, भ्रष्टाचार और खिलाड़ियों की समस्याओं को उजागर करते हैं, जिससे व्यवस्था में सुधार होता है। ओलंपिक, एशियाई खेल, विश्व कप, राष्ट्रीय खेल और विद्यालय प्रतियोगिताएं पत्रकारिता के माध्यम से हर घर में पहुंचती हैं। श्रोताओं, रेडियो ने भारत में खेल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हुए लाखों लोगों ने खेलों से जुड़ाव महसूस किया है। आज भी रेडियो खेल समाचार, विश्लेषण और खिलाड़ियों के साक्षात्कार के माध्यम से खेल संस्कृति को मजबूत बना रहा है। आज डिजिटल मीडिया ने खेल पत्रकारिता को नई दिशा दी है। लाइव अपडेट, वीडियो विश्लेषण, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से खेल समाचार कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। इससे खेलों के प्रति युवाओं की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।

जी हाँ श्रोताओं, शाबाशियां तो किसी भी खेल में आगे बढ़ने पर जरूर मिलती हैं, लेकिन उस खेल की एक एक खबर, एक एक क्लिप, एक एक बात को जो हम तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हम देश के खिलाड़ियों के लिए उत्साहित होते हैं, तालियां बजाते हैं, उनके लिए टीवियां खोल के बैठते हैं और उनको उत्साहित करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ है खेल पत्रकारिता की वजह से। श्रोताओं, जहां आज डिजिटल मीडिया ने खेल पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है, वहीं उसके सामने एक या कहें कि कई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे कि फेक न्यूज और अफवाहें, टीआरपी की दौड़ में संतुलन की कमी, कुछ लोकप्रिय खेलों तक सीमित कवरेज और जैसे कि खिलाड़ियों की निजता का सम्मान बनाए रखना, ये कई चुनौतियां होती हैं जिनका कि सामना आज के समय में खेल पत्रकारिता को करना पड़ता है। और श्रोताओं, उसका समाधान जो है वो यही है कि तथ्यपरक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की जाए, सभी खेलों को समान महत्व दिया जाए।

0: क्योंकि खेल पत्रकारिता के लिए कोई भी खेल बड़ा नहीं है, सभी खेल समान हैं। ग्रामीण प्रतिभाएं जो हैं उन पर खेल पत्रकारिता यदि विशेष ध्यान दें तो आज के समय में वे और भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। खेल पत्रकारों का नियमित प्रशिक्षण होना चाहिए जिससे कि वे इस पत्रकारिता को और भी नई दिशाओं में मोड़ सकें। सकारात्मक और प्रेरणात्मक पत्रकारिता को ही हमारे समाज में बढ़ावा देना चाहिए। श्रोताओं, खेल पत्रकारिता केवल समाचारों का संकलन नहीं है बल्कि सपनों को उड़ान देने का एक माध्यम है। जब कोई पत्रकार किसी खिलाड़ी के संघर्ष को समाज तक पहुंचाता है तो वह केवल एक कहानी नहीं लिखता बल्कि हजारों युवाओं के भीतर नए सपने को जन्म देता है। यदि हमें भारत को खेल महाशक्ति बनाना है तो खिलाड़ियों के साथ साथ खेल पत्रकारों के योगदान को भी समान सम्मान देना होगा और यही विश्व खेल पत्रकारिता दिवस का वास्तविक संदेश है।
1: India in deep trouble now, having lost two matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।
3: मैं मैच देखने आऊँ।

0: ऐसे लगा हम खेल ही नहीं, पहले ही कंधे घेर दोगे फिर कैसे लड़ो।
1: जब तू इन स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को

जी हाँ श्रोताओं, जब खेल के मैदान में कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल में कोई क्यों क्योंकि हमारे भारत में तो सभी खेल बराबर ही हैं। हालांकि कुछ खेलों को जैसे कि क्रिकेट को आज के समय में कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है, लेकिन नज़रिए से देखा जाए तो हमारे लिए सभी खेल बराबर हैं।

और जब खेल के मैदान में कोई भी खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता है और जब अंतिम समय में होता है और वो जीतने के लिए अपने देश के लिए अपने भारत के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तो इस गाने की तरह ही हम भी उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं कि लहरा दो और देश के लिए परचम अपने जीत का लहरा दो। लेकिन उन पलों को हम तक कौन पहुंचाता है? उन पलों को हम तक पहुंचाने के लिए, हमें भी उत्साह भरने के लिए और उस खिलाड़ी में भी उत्साह भरने के लिए, अगर उस खेल के मैदान में कोई संघर्ष उस समय कर रहा होता है तो वो एक तरफ होता है खेल पत्रकार। और श्रोताओं, कार्यक्रम से जाते जाते अब हम खेल और इस पत्रकार के बारे में आपको कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे कि जहां पसीने से इतिहास लिखा जाता है, कि जहां पसीने से इतिहास लिखा जाता है वहीं शब्दों से उसका मान बढ़ाया जाता है। मैदान में खिलाड़ी संघर्ष की मिसाल बने, पत्रकार उसके सपनों का उजियाल बने, जीत की हर मुस्कान जग तक पहुंचाए, हार में भी हिम्मत का दीप जलाए, कलम जब खेलों का सम्मान लिखे, भारत का भविष्य स्वर्णिम पहचान लिखे। आओ मिलकर यह संकल्प निभाएं कि हर प्रतिभा को नई उड़ान दिलाएं। खेल बने संस्कृति जीवन का आधार, पत्रकारिता बने उसका सच्चा पहरेदार। जी हाँ, उसका सच्चा पहरेदार।

श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मिलेंगे कल एक नए समसामयिक विषय के साथ और कुछ नए गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए कार्यक्रम से इजाजत अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को। नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। श्रोता अब सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERG।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
3: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं,
3: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
2: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
3: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
2: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
3: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
2: तो दीजिए हिंट।
3: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
2: जी।
3: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
2: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
3: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
2: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
3: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
2: जी।
3: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
2: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
3: श्रोताओं, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का दबाव वायुमंडलीय दबाव से हजारों गुना अधिक होता है।
2: इन अत्यधिक दबाव वाली परिस्थितियों में कार्बन के परमाणु एक विशेष क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हीरा बनता है। इस प्रक्रिया में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी हमने जाना कि हीरे पृथ्वी की सतह से 150 से भी अधिक गहराई में बनते हैं। इतनी गहराई तक उत्खनन तो असंभव है, तो फिर हीरे तक हम कैसे पहुँचे?
3: सचमुच ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। यदि हीरे इतनी गहराई में ही बने रहते तो हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाते। होता ये है कि ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण मैग्मा यानी धरती के अंदर की पिघली चट्टानें तीव्र गति से ऊपर उठती हैं और वे साथ साथ हीरों को भी पृथ्वी की सतह के बहुत करीब ले आती हैं
2: और फिर हम उन्हें उत्खनन द्वारा निकाल लेते हैं। श्रोताओ, वैज्ञानिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। आपको बता दें कि हीरा और आपके घर में पाई जाने वाली पेंसिल की नोक ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हैं। अंतर केवल परमाणुओं की व्यवस्था का है।
3: पता है श्रोताओ, हीरे को यदि अत्यधिक ताप पर ऑक्सीजन में जलाया जाए तो अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो बदल सकता है। श्रोताओ, एक बात और आपको बता दें, आजकल आभूषणों और उद्योग में इस्तेमाल होने वाले हीरे प्रयोगशाला

0: में ही बनाए जाते हैं।
1: लेकिन एक खास बात यह है कि कृत्रिम रूप में हीरों को बनाने के लिए एक छोटा प्राकृतिक हीरा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डायमंड सीड कहा जाता है। इस सीड के द्वारा प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करके हीरा बनाया जाता है। एक बात जरूर है कि प्राकृतिक रूप से हीरा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप में इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है।
0: लेकिन इसे बनाने की विधा या फॉर्मूला हमें प्रकृति से ही मिलता है, तो हम याद रख सकते हैं कि पृथ्वी की गहराइयों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो कार्बन के क्रिस्टल बनते हैं उन्हें हम हीरा कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा वास्तव में पृथ्वी की गहराइयों में लाखों करोड़ों वर्ष पहले बना हुआ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज

0: रही हूँ।
1: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
1: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
1: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है भाई। इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
1: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
3: महाराज की जय हो,
4: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
5: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
5: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
5: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
5: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
6: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
5: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
6: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
0: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
7: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा?
8: गद्दी पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास जा रहा है, हंस ने बचाया होगा कैसे? देवदत्त तो कर उनका है।
6: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
1: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
0: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।

0: मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
1: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
2: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
3: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
7: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
8: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ।

0: भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0
4: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समयानुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
5: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया है।
4: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
6: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
7: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
6: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
7: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
8: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
9: हम अच्छे हैं।
8: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
9: जी हम तैयार हैं।
8: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
9: आदित्य L1 के बारे में?
2: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
7: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
8: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज, यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
6: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
8: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
7: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
8: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
7: जी, मेरा नाम श्रुति है।
8: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
10: सूर्य ग्रह है या तारा?
8: अरे सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
7: सर, मेरा नाम सुमित है, सूर्य एक ग्रह है।
8: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई, सूर्य असल में एक तारा है।
9: अच्छा सर।
6: सर, मेरा नाम सोहम है, मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
7: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
8: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
6: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
8: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
9: विशाल गैसों का?

तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावना

0: अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
1: शाबाश, समझ गए ना?
2: जी सर।
3: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
0: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
1: जरूर बच्चों, देखो आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
2: जी सर।
1: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
3: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
1: हाँ, सही कहा। आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
0: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
1: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही होता है ना?
2: जी सर।
1: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
0: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
1: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
3: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
1: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
0: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
1: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
3: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
1: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
4: साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
5: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: श्रोता भी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुन

माने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में फिल्म टू स्टेट्स से ये गीत, जिसमें संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का और इस गाने के गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

फिल्म टू स्टेट्स के इस गीत के बाद आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत जिसे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से। इसमें अपनी आवाजें दी हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। संगीत निर्देशन है विक्की प्रसाद का और इस गीत को लिखा है सिद्धार्थ सिंह और गरिमा वहल ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। कार्यक्रम अभी जारी है श्रोताओं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

अंतराल के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम नए तराने में। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे सोनू निगम, मीट ब्रोस और अनजान की आवाजों में। फिल्म का नाम है क्या सुपर क्या कूल है हम। इस गाने के संगीतकार हैं मीट ब्रोस अनजान और इस गीत को लिखा है कुमार ने। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म क्या कूल है हम से ये अगला गीत।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म भारत से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में। इस गीत के संगीतकार हैं विशाल शेखर और इस गीत को लिखा है इशाद कामिल ने।

0: ओ मिठी मिठी चाशनी।
1: फिल्म भारत से चाशनी गीत के बाद आइए श्रोताओं सुनते हैं ये अगला गीत मोहित चौहान की आवाज में, जिसे हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हीरोपंती से। संगीतकार हैं साजिद वाजिद और इस गीत को लिखा है कौशर मुनीर ने।

और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले इलाकाई खबरें। कृपया हिंदी में समाचारों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को

0: आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही।
1: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर
2: से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है, हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मतपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गई, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों तथा राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 412 अंक की बढ़त के साथ 77,355 के उच्चतम स्तर और निफ्टी 119 अंक बढ़कर 24,124 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is holding annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. The summit is an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation, as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Earlier, Prime Minister Takaichi was accorded a ceremonial welcome at the forecourt of Rashtrapati Bhavan today. Prime Minister Modi was also present on the occasion. The Japanese Prime Minister arrived in

0: मुआवजे की नजरसानी शुदा शराहों का भी नोटिफिकेशन जारी किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना ने कल उत्तर प्रदेश में कौमी शाहराह नंबर 34 के तकरीबन 118 किलोमीटर तवील एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को मंजूरी दे दी। काबीना के फैसले पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की तखमीनी लागत 7,145 करोड़ रुपये होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये अहम प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को बगैर किसी रुकावट के राबता फराहम करेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को फजाई रबते से जोड़ा जाएगा, जिससे उसकी तरक्की में मजीद तेजी आएगी। इससे कबल वज़ीर आला ने सहारनपुर के हायर प्राइमरी कंपोजिट स्कूल इस्माइलपुर से रियासत गिर स्कूल चलो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने स्कूल चलो मुहिम को अवामी तहरीक बनाने की अपील की।
1: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3 से 4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ से रियासत गिर मुतादी बीमारी पर काबू पाने की मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने वबाई अमराज से बचाव के लिए आगाही रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने दस्तक मुहिम का भी आगाज किया जो 11 से 31 जुलाई तक चलाई जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमती कोशिशों के साथ साथ आवाम की शिरकत भी जरूरी है। कल रियासत के तकरीबन सभी इजला बशमूल वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, देवरिया और अंबेडकर नगर में अवामी बेदारियां रैलियां निकालकर लोगों को मुतादी बीमारियों से बचाव का पैगाम दिया गया। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET 2026 आज से 4 जुलाई तक रियासत के 60 इजला के 955 इम्तहानी मराकज पर मुनक्किद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इस सिलसिले में शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन आज से 4 जुलाई तक गोरखपुर और लखनऊ के दरमियान बगैर रिजर्वेशन वाली इम्तहान खसूसी 2 ट्रेनें चला रहा है। इस ट्रेन में 12 बिना रिजर्वेशन वाले डिब्बे होंगे। रियासती हुकूमत ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे के गबन के इल्जाम की जाँच करने वाली खसूसी तफ्तीशी टीम SIT को मजीद 15 दिन की मोहलत दी है। 15 जून को तश्कील दी गई इस SIT को 7 दिन के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन आखिरी तारीख 30 जून को खत्म हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। अब समय है हमारी बहनों के अपने कार्यक्रम घर संसार का।

महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में देश की बेटियों का दाखिला खुद माता पिता आगे आकर करा रहे हैं। शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट में अब ज्यादा दाखिले हो रहे हैं। मैं हमेशा ये सोचकर रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए गोल्ड मेडल लाता। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। ये डायलॉग 2016 की दंगल फिल्म में आपने भी सुना होगा, जो महिलाओं की खेलों में भागीदारी की हकीकत को बताता है। लेकिन बीते सालों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीतकर देश की बेटियों ने छवि को बदल दिया है। जब पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने गोल्ड जीता, क्रिकेट में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, साइना मिर्जा और साइना नेहवाल बैडमिंटन के लिए, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के लिए मीराबाई चानू ने देश को पहचान दिलाई, तो माता पिता और समाज के रुख में बेटियों के लिए बदलाव आ गया। अब भारत में अपनी बेटियों से खेलों की उम्मीद की जा रही है। पहले बेटियों को आर्ट क्राफ्ट तक ही सीमित रखा जाता था, लेकिन अब महिलाएं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। बदलाव की बयार में व्यवहारिक और सामाजिक बदलाव ही महिलाओं के लिए आगे लाने वाला है, तभी महिलाएं अपने फैसले भी खुद लेंगी। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, जागरूकता का बढ़ना और सामाजिक मान्यताओं में ढिलाई, टीवी और इंटरनेट के जरिए मिलने वाला प्रोत्साहन, प्राइज मनी और माता पिता से मिलने वाला प्रोत्साहन अब खेलों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ा रहा है। अब समाज में लड़कियों के खेल कूद को अपनाने का प्रेशर पहले से कम हुआ है। आज लड़कियों के सामने रोल मॉडल के लिए सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, फोगाट सिस्टर्स, मैरी कॉम, महिला क्रिकेट टीम के सितारे मौजूद हैं। अब लड़कियों पर भी इंजीनियर और डॉक्टर बनने का दबाव कम हो गया है। तो बहनों, ये बात थी महिला खेल और खिलाड़ियों की। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी ज़िंदगी से मैच की हाइलाइट्स, कड़क स्पोर्ट्स कमेंट्री, खेल की खबरें, खिलाड़ियों के इंटरव्यू

व्यू गायब हो जाए तो खेल देखने का मजा बहुत ही फीका हो जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी तो मैदान पर सिर्फ अपना खेल खेलते हैं, लेकिन उस खेल को इमोशन और जुनून के साथ आप तक पहुंचाते हैं हमारे खेलों के पत्रकार। और आज के ही दिन इन्हीं का नाम श्रोताओं 2 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। खेल पत्रकार मैदान के साइलेंट प्लेयर्स होते हैं, जो कैमरे के सामने नहीं आते लेकिन अपने अंदाज से इतिहास लिख देते हैं। लोगों को लगता है कि खेल पत्रकारों का काम काफी मजेदार होता होगा, फ्री में मैच देखो, खिलाड़ियों से मिलो। लेकिन सच तो ये है कि दोस्तों, जब आप और हम जीत का जश्न मना रहे होते हैं तो ये कड़कती धूप और डेडलाइन के बीच बिना सोए रात दिन जागकर उस इतिहास को शब्दों और तस्वीरों में ढाल रहे होते हैं। मैदान के जज्बातों को लाखों दिलों तक पहुंचाते हैं। आज दौर बेशक डिजिटल हो गया है, लेकिन पत्रकारिता की जिम्मेदारी आज भी वही है, सच्ची और निष्पक्ष। तो सभी जाबाज और सच्चे दिल पत्रकारों को सलाम और प्रणाम। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अब सुनेंगे ये सुंदर सा गीत।

0: बहनों, कामकाजी महिला होना आसान नहीं होता। ऐसे में अगर परिवार का सहयोग मिल जाए तो महिलाओं का जीवन थोड़ा आसान हो जाता है और वो परिवार की तरक्की में ज़्यादा सहयोग देती हैं। इसी विषय पर पेश है हमारी वार्ता, कामकाजी महिलाएं और परिवार का सहयोग। और वार्ताकार हैं शशि शर्मा।
1: वर्तमान समय में नारी शिक्षा के बल पर ही रूढ़ियों की चार दीवारी की कैद से स्वतंत्र हो चुकी है। आज नारी उचित कदम उठाकर अपनी पहचान बना रही है। वह अपने दम पर खड़ी होने में समर्थ है। नारी हर क्षेत्र में कार्यशील है। नारी के कार्य क्षेत्र पर दृष्टि डालें तो आज नारी एक सफल अध्ययन

यहाँ का जिलाधिकारी, न्यायाधीश, पायलट, विमान परिचारिका, टेलीफोन ऑपरेटर, डॉक्टर, अभियंता, अधिकारी अथवा संगीत आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहकर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। यदि इन कामकाजी महिलाओं को परिवार का सहयोग और प्रोत्साहन समय समय पर मिलता रहे तो इनकी कार्यकुशलता को और अधिक बढ़ावा मिलता है। यदि पारिवारिक सहयोग और वातावरण सहानुभूतिपूर्ण होगा तो इनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। कामकाजी महिला को दोहरे दायित्व निभाते हुए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। कभी-कभी घर के दायित्व से भी ज्यादा कार्यक्षेत्र का दायित्व अधिक महत्वपूर्ण होता है। तब पति का यह कर्तव्य होता है कि वह पत्नी को समझे, उसके कार्य में मदद करे और उसे प्रोत्साहन दे। कार्यक्षेत्र से थककर आई पत्नी को पति के दो मीठे बोल परम सुख की अनुभूति करा सकते हैं। पति पत्नी की आपसी समझबूझ एक सफल दाम्पत्य जीवन का प्रतीक होती है। बदलते वक्त ने महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है, साथ ही उनकी हैसियत और सम्मान में वृद्धि हुई है। इसके बावजूद अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारी। खाना बनाना, घरेलू व्यवस्था और बच्चों का पालन पोषण अभी भी महिलाओं का ही काम माना जाता है। यानी महिलाओं को निभानी पड़ रही है दोहरी जिम्मेदारी। घरेलू महिलाओं की तुलना में कामकाजी महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा है। उन्हें अपने कार्यक्षेत्र के अलावा घर की जिम्मेदारी संभालने में अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। कभी-कभी तो घर और ऑफिस के बीच सामंजस्य न बिठा पाने के कारण नौकरी छोड़ने की नौबत तक आ जाती है। कामकाजी महिलाओं की स्थिति दो नावों में सवार व्यक्ति के समान होती है, क्योंकि एक ओर उसे कामकाज का तनाव झेलना पड़ता है, दूसरे घरेलू मोर्चे पर परिवार को खुश रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। महिलाएं जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। घर में सम्मान पाने, घरेलू हिंसा से बचने और परिजनों के अपमान से बचने के लिए ही एक महिला आत्मनिर्भर होने के लिए घर से बाहर निकलती है, और तब उसे लोगों की टीका टिप्पणी, तानाकशी और घूरती निगाहों का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पिछली कुछ सदियों से दयनीय रही है। उनका हर स्तर पर शोषण होता रहा है। महिलाओं को परिवार और समाज में अपना सम्मान पाने के लिए आर्थिक रूप से निर्भर होने की सलाह दी जाती है। यद्यपि प्राचीन काल से गरीब वर्ग की महिलाएं अनेक प्रकार के काम करती रही हैं। कुछ क्षेत्रों में जैसे घरों, सड़कों आदि की सफाई, कपड़े धोने, सिलाई बुनाई, खेती बाड़ी आदि कार्यों में इनका एकाधिकार रहा है। अति शिक्षित परिवारों एवं उच्च शिक्षित परिवारों की महिलाएं पहले से ही उच्च पदों पर आसीन होकर कामकाज करती रही हैं। जहां तक उच्च शिक्षित महिलाओं की बात की जाए तो उन परिवारों में महिलाएं हमेशा से ही सम्मान पाती रही हैं। परंतु गरीब वर्ग में शिक्षा के अभाव में रूढ़िवादी समाज के कारण आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुए भी अपमानित होती रही हैं, और आज भी इसमें कुछ सुधार नहीं हो पाया है। मध्यम वर्गीय परिवार की महिला भी नौकरी, दुकानदारी, व्यापार, ब्यूटी पार्लर या डॉक्टर जैसे व्यवसायों में पुरुषों की तरह काम करने में लगी हैं। डॉक्टर, वकील, आईटी, पुलिस और सीए जैसे क्षेत्रों में आज महिलाओं की मांग बहुत बढ़ रही है। इन सब के साथ साथ उन्हें घर की जिम्मेदारी उठाने का तनाव भी झेलना पड़ रहा है। घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें सुबह जल्दी उठकर बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करनी होती है, और शाम को कामकाज से घर लौटने के बाद गृह कार्यों में पुनः लगना पड़ता है। फिर भी पुरुष घर की महिलाओं पर ही घर की जिम्मेदारी डालते हैं। कभी-कभी महिलाओं के नियोक्ता भी उनके प्रति सहज नहीं दिखते। वैसे व्यवहार में यदि देखें तो कामकाजी महिला पारिवारिक दायित्वों से मुक्त नहीं है।
मैं रोज सुबह एक अध्यापिका को स्कूल जाते हुए देखती हूँ। उनके पति कार में उन्हें छोड़ने जाते हैं, तब उन अध्यापिका के चेहरे की खुशी ये बताती है कि पारिवारिक सहयोग मिलने से वह कुछ ज्यादा ही सक्षम दिखाई देती हैं और अधिक ऊर्जावान भी। साथ में एक वो महिला है जिसे पारिवारिक सहयोग न मिलने के कारण वो थकी थकी सी नजर आती है। ऐसा लगता है मानो कार्यालय जाना

की मजबूरी है और पारिवारिक प्रोत्साहन के अभाव में उसकी कार्यक्षमता में कमी आ रही है। एक शोध के अनुसार ये कहा गया है कि कामकाजी महिलाओं के पारिवारिक वातावरण का उनकी कार्यक्षमता पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य का ये दायित्व है कि काम पर जाने वाली महिला को घर के विविध कार्यों में हाथ बटाकर उसका सहयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि कामकाजी महिला को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़े तो घर के सदस्य उसके कार्यों को स्वयं निष्पादित करें, जैसे बच्चों का होमवर्क, बाजार से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी और अन्य घरेलू कामकाज। ऐसा होने से कामकाजी महिला प्रसन्न एवं तनाव मुक्त महसूस करेगी। सामान्य दिनों में भी पति की या परिवार के अन्य सदस्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि कामकाजी महिला के घर आने से पहले कुछ ऐसे घरेलू कार्यों को पूर्ण कर लें जिनसे समय की बचत हो सके और महिला को काम का अतिरिक्त बोझ न झेलना पड़े। नारी चाहे कामकाजी

0: परिवार के अन्य सदस्यों की ये जिम्मेदारी बनती है कि कामकाजी महिला के घर आने से पहले कुछ ऐसे घरेलू कार्यों को पूर्ण कर लें जिनसे समय की बचत हो सके और महिला को काम का अतिरिक्त बोझ न झेलना पड़े। नारी चाहे कामकाजी हो या गैर कामकाजी, उसका स्थान सदैव सर्वश्रेष्ठ रहा है, क्योंकि नारी ही जननी है, उसी से परिवार और समाज का निर्माण होता है। वो अपनी संतान को अच्छे संस्कार देती है, तभी वह संतान संस्कारवान होकर देश और समाज की सेवा कर पाती है। आज की कामकाजी महिला जब अपने कार्यक्षेत्र में आशातीत उपलब्धियां प्राप्त करती है तो वह किसी भी स्तर पर पुरुष से कमतर नहीं आंकी जा सकती, परंतु उसी परिवार का हर एक सदस्य उससे ये उम्मीद करता है कि वह परंपरागत तरीके से परिवार का दायित्व भी उठाए, लेकिन यह संभव नहीं होता है। घर की जिम्मेदारियों में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग जरूरी होता है, तभी महिला तनाव मुक्त होकर अपनी कार्य क्षमता के अनुरूप कार्य कर पाएगी। अतः ये कहना सही है कि चाहे घरेलू कार्य क्षमता की बात हो, सामाजिक कार्य क्षमता या कार्यालयी क्षमता की बात हो, नारी को यदि पारिवारिक सहयोग मिलता है तो वह सभी क्षेत्रों में अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा पाने में सक्षम होगी। परिवार के लोग अपने दायित्व को निभाएं और महिलाओं का सार्थक सहयोग करें तो वो देश व समाज के निर्माण में सफल होगी।
1: अभी आपने सुनी वार्ता कामकाजी महिलाएं और परिवार का सहयोग, और वार्ताकार थी शशि शर्मा। श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा, अभी आपसे मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

0: बहनों, वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर एक ऐसी तकनीक है जो एक आभासी दुनिया में ले जाती है। इसमें एक खास हेडसेट होता है या एक डिवाइस जैसा होता है जिसे आप पहनकर ऐसा अनुभव कर सकते हैं जैसे आप खुद ही किसी गेम में फिल्म का हिस्सा हैं, किसी दूसरी दुनिया में मौजूद होने का एहसास होता है। ये तकनीक एक 3D वातावरण बनाती है जहाँ आप चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कई बार महसूस कर सकते हैं। वीआर का सबसे ज़्यादा उपयोग गेमिंग और मनोरंजन में होता है जहाँ खिलाड़ी खुद को गेम के अंदर पाता है। इसके साथ इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है जहाँ कठिन या जटिल विषयों को आप आसानी से समझ सकते हैं। सर्जरी की ट्रेनिंग देने में वीआर काफ़ी उपयोगी है। आर्किटेक्ट और डिज़ाइन की दुनिया में बिल्डिंग का वर्चुअल मॉडल देखने में भी वीआर काम आता है। वीआर बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। ये तकनीक हमारे जीवन और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। वर्चुअल रियलिटी खेलों की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। अब पेशेवर और ओलंपिक खेलों में वीआर तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एथलीट को बेहतरीन प्रशिक्षण वीआर के जरिए दिया जाता है। खिलाड़ी बिना चोट खाए खतरनाक और वास्तविक परिस्थितियों में जैसे मैच का दबाव या स्कीइंग का खेल हो, फुटबॉल का खेल हो, इसका अभ्यास सुरक्षित रूप से कर सकते हैं। आने वाले समय में वीआर के साथ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तालमेल होगा जो वास्तविक खेल के मैदान की तरह के वातावरण में प्रतिद्वंदियों और रणनीतियों को समझने में काफ़ी सक्षम बनाएगा। इससे आप अपने खेल को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम का अनुभव घर बैठे मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा और वीआर हेडसेट जो आपको खुद ही स्टेडियम में आप लाखों लोगों के साथ खुद को मैच देखते हुए पाएंगे। वीआर तकनीक का भविष्य उज्ज्वल है लेकिन इस तकनीक की लागत काफ़ी ज़्यादा है और वीआर सेट पहनने से होने वाली थकान और डिजिटल साक्षरता की कमी भी कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में। कार्यक्रम जारी रहेगा, अभी मिलते हैं आपसे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: बहनों, अभी हम कार्यक्रम में वीआर के बारे में बात कर रहे थे यानी वर्चुअल रियलिटी के बारे में।

और अब बात करेंगे कुछ रंगों के बारे में। बहनों, रंग देखने में भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारी भावनाओं, हमारी सोच और व्यवहार की गहराई को प्रभावित करते हैं। हर रंग की अपनी अनूठी ऊर्जा होती है जो हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करती है। रंग हमारे मूड को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति रखते हैं। जैसे नीला रंग शांति और सुकून देता है, लाल रंग ऊर्जा और जोश भरता है। कई बार हमें किसी जगह जाने पर अच्छा लगता है या अजीब सा महसूस होता है, इसका कारण वहाँ इस्तेमाल किए जाने वाले रंग भी होते हैं। पीला रंग खुशी और सकारात्मकता लाता है, जबकि ग्रे रंग आपको अकेलेपन या अलग होने का, उदास होने का एहसास देता है। हमारे पसंदीदा रंग हमारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। जैसे जो लोग गहरे रंग पसंद करते हैं वो गंभीर और आत्मविश्वासी होते हैं, जबकि हल्के रंग पसंद करने वाले लोग वहीं कोमल और शांत स्वभाव के मालूम होते हैं। रंगों का प्रयोग चिकित्सा में भी होता है। हरा रंग आंखों को आराम देता है और नीला रंग तनाव कम करता है और लाल रंग रक्त संचार को बढ़ाता है। इसी वजह से हॉस्पिटल में हल्का हरा या हल्का नीला रंग प्रयोग होता है। घर में कौन सा रंग होना चाहिए ये भी बहुत मायने रखता है। गलत रंग घर में नकारात्मकता ला सकता है और सही रंग सकारात्मकता बढ़ाता है। बेडरूम में हर रंग हल्का होना चाहिए ताकि मन को शांति और आराम मिल सके। घर की दीवारों का रंग हमारे मूड पर प्रभाव डालता है। हल्का पीला, हल्का नीला या सफ़ेद रंग से माहौल शांति बनाता है। जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसका रंग हमारे मूड और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। अगर आप अपने इंटरव्यू में नीला और ग्रे कलर पहनते हैं तो वो आप में अधिक कार्यक्षमता और एक्टिविटी को दिखाता है। बिजनेस में भी रंगों का महत्व है। बड़ी कंपनी अपने ब्रांड के लिए ऐसे रंग चुनती है जो अधिक ग्राहकों को आकर्षित करे। तो श्रोताओं, रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। सही रंग का चयन करके आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन ला सकते हैं। कार्यक्रम जारी रहेगा श्रोताओं, आगे सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

बहनों, बढ़ते हुए स्क्रीन टाइम के कारण अधिकतर स्मार्टफोन यूजर परेशान हैं। एक बार फोन हाथ में लेने पर घंटों का समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ तरीके अपनाकर आप अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। स्मार्टफोन की लत से सभी यूजर्स और माता पिता भी बहुत परेशान हैं। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, दूसरी एप्लीकेशंस, जिनके कारण फ़ोन से हाथ दूर रखना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण लोग अपने कई ज़रूरी घंटे मोबाइल की स्क्रीन के सामने गुजार देते हैं। और जब बच्चों को मोबाइल करने से रोके तो वो बस 5 मिनट और 5 मिनट और कहते हैं। ये बात है, बच्चों के मस्तिष्क के विकास को मोबाइल स्क्रीन काफ़ी प्रभावित करती है। बच्चों को समझाना तो थोड़ा और मुश्किल होता है, लेकिन बड़े कुछ बातों से खुद को मैनेज कर सकते हैं। जब आप पढ़ाई या कोई ज़रूरी काम करते हैं तब नोटिफिकेशन को म्यूट कर दें, फ़ोन को खुद से दूर रखें। ऐसे में जब नोटिफिकेशन की बार बार आवाज़ नहीं आती तो आपका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ से काफ़ी कम रहता है और आप अपना काम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। कुछ देर के लिए फ़ोन हाथ में लेने पर कुछ मिनट वेस्ट हाल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्मार्ट वॉच आपकी मदद कर सकती है। फ़ोन पर आने वाली कॉल्स और नोटिफिकेशन स्मार्ट वॉच पर ही पता चल जाते हैं और आपको फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बहुत अच्छी आदत अगर आप डालना चाहें तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए, वो भी फिज़िकल कॉपी हाथ में लेकर, ना कि मोबाइल पर किसी ऐप में। किताबें सिर्फ ज्ञान वर्धन ही नहीं करती बल्कि हमारी सोच को सुंदर आयाम भी देती हैं। आशा करते हैं ये सभी बातें आपके काम आएंगी और आपका स्क्रीन टाइम घटाने में आपकी मदद करेंगी। कार्यक्रम में आपसे मिलते हैं अभी एक छोटे से अंतराल के बाद।

और श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज के कार्यक्रम में हमने करी है ढेर सारी काम की बातें, और हमने आज जैसे आपको बताया, आज खेल दिवस था, वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताया, और आपको बताया परवरिश के नाते कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से अब अपने स्क्रीन टाइम के बच्चे के टाइम को कम कर सकते हैं, और बड़े अपने किस तरह से टाइम को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही घर के माहौल में और आपके जीवन में रंग किस तरह से प्रभाव छोड़ते हैं, ये सब हमने जाना। और इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम रेडियो पर खबरें और कार्यक्रम लगातार आते रहेंगे, और इसके साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: इसलिए परेशानी।
1: बहनें भी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे कलाकार पंकज उदास द्वारा गाई हुई कुछ चयनित गजलें। पहली गजल जो आप सुनने जा रहे हैं उसके बोल हैं, तुम आए जिंदगी में तो।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कलाकार पंकज उदास द्वारा गाई हुई कुछ चयनित गजलें और कार्यक्रम है सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे दूसरी गजल जिसके बोल हैं, अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर के समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया मिड डे न्यूज की प्रतीक्षा करें।

0: talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time, and the India-Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today, and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries.
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: He stressed that both nations understand the importance of economic security and energy security. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation. Mr. Modi said to realize this vision, India and Japan have issued a joint statement in the field of AI.
1: Technology partnership हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
0: The Prime Minister also informed that in the field of defense today, both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan.
1: डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी।
0: The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a three-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 marks a major step towards ensuring employment, strengthening rural livelihoods, and accelerating the development of villages across the country. Union Minister for Rural Development and Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, has said. Union Minister Sri Shivraj Singh Chauhan, along with Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, today launched the VBG Ramji Act at Mukhavaripalle village in Tirupati district of Andhra Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Chauhan said the scheme aims to ensure that no poor labourer remains without work and that every hand gets employment. He thanked Prime Minister Narendra Modi for introducing the scheme and said employment under the programme has been enhanced from 100 days to 125 days.
2: मनरेगा में केवल
3: अंडर मनरेगा वर्कर्स यूज्ड टू गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर ओनली 100 डेज पर अंडर द विकसित भारत जी रामजी योजना लेबरर्स विल रिसीव एम्प्लॉयमेंट फॉर अ फुल 125 डेज इन द वेरी फर्स्ट ईयर द सेंटर्स कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम अमाउंट्स टू 95,600 करोड़ रुपीस विद द स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग देयर 40% शेयर अ टोटल ऑफ 1,51,282 करोड़ रुपीस विल बी स्पेंट इन जस्ट वन ईयर
2: 282 करोड़ रुपया
0: Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav today underlined that the government is promoting ease of living while ensuring environmental protection through policies that balance development with sustainability. Addressing a national conference on electric mobility, Mr. Yadav said the government's approach reflects Prime Minister Narendra Modi's vision of ensuring that ecology and economy grow together. He highlighted that despite rapid industrial development, the country's forest cover has increased from 7,1,673 square kilometers in 2014 to 7,15,000 square kilometers. The Election Commission today announced the schedule for by-elections to three Legislative Assembly constituencies across Bankipur in Bihar, Datia in Madhya Pradesh and Manjalpur in Gujarat. The polling will take place on the 30th of this month and the counting of votes will be conducted.

0: वे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोड मैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
2: We must address the conditions conducive to the spread of terrorism.
0: अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले

0: के मुक्कावरी पल्ले गांव में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे।

0: थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे गायक पंडित अजय पोहनकर द्वारा मिश्र पहाड़ी में गायन।

श्रोता समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुने कलाकार पंडित अजय पोहनकर द्वारा मिश्र पहाड़ी में गायन। अब पेश है सिंध भैरवी में पंडित अजय पोहनकर द्वारा गायन प्रस्तुति।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार पंडित अजय पोहनकर द्वारा मिश्र पहाड़ी और सिंध भैरवी में गायन। कार्यक्रम था उपशास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 2:45 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रोता हुआ आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म दिल एक मंदिर से लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत, जिसमें संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का और इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है आज और कल। इस गीत में संगीत निर्देशन है रवि का और इस गीत को लिखा है साहिर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म आपकी परछाइयां से, जिसमें अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। संगीत निर्देशन है मदन मोहन का और इस गीत को लिखा है राजा मेहंदी ने।

और श्रोताओं, फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। श्रोता अब सुनेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत में श्रोता सुनने जा रहे हैं फिल्म रंग से ये गीत, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं अलका याग्निक और कुमार सानू ने। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और इस गीत को लिखा है समीर ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है जान तेरे नाम। इस गीत में संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और इस गीत को लिखा है सईद राही ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और इस गीत को लिखा है मदन पाल ने और इस गीत को हमने लिया है फिल्म दिल का क्या कसूर से।

कार्यक्रम गीत गुंजन का ये अगला गीत श्रोता सुनेंगे कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। इस गीत को हमें लिया है फिल्म संग्राम से। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और इस गीत को लिखा है समीर ने।

और श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गुंजन का ये अगला अंतिम गीत श्रोता सुनेंगे अपने रेडियो सेट पर फिल्म दलाल से। एक बार फिर से कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में। इस गीत में संगीत निर्देशन है बप्पी लहरी का और इस गीत को लिखा है अनजान ने।

0: और श्रोताओं, इस गाने के साथ ही कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे भेंटवार्ता जिसका विषय है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान। इस विषय पर आप सुनेंगे डॉक्टर पीयूष जैन से अनिंद्र सिंह की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष। श्रोताओं, आज का दौर अभूतपूर्व बदलावों का दौर है और तकनीकी प्रगति, तेज जीवन शैली, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दबाव, आर्थिक असुरक्षा, डिजिटल दुनिया का बढ़ता चलन, ये सब चीज़ें जो है हमारे जीवन को सुविधाजनक तो बनाती हैं, लेकिन इनके साथ साथ मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद और बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ ये तेज़ी से बढ़े हैं। क्या हैं ये समस्याएं, क्यों होती हैं और कैसे इनसे निपटा जाए, आज इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष जैन जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार सभी लोगों को।
1: मैं श्रोताओं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब डिप्टी CMO का दायित्व भी इस वक्त निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही बात कि मानसिक स्वास्थ्य के वास्तविक मायने क्या है, क्या ये केवल मानसिक रूप से बीमार होने भर की स्थिति है?
2: नहीं नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो अपने आप में एक बहुत ही वृद्ध है, बहुत ही विशाल है और बहुत ही व्यापक है। किसी भी इंसान के शरीर में जितने भी स्वास्थ्य की परिभाषाएं होती हैं, फिजिकल फिटनेस होती है, मेंटल फिटनेस होती है और किसी की लाइफ में जो फिटनेसेज और जो बैलेंस होते हैं, इकोनॉमिकल बैलेंस होता है, सोशल बैलेंसेज होते हैं, वो सारी चीजें अगर उसकी सही चल रही हैं, पर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर किसी भी इंसान के पास सब कुछ है, सोशली वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, एजुकेशन वाइज वो बहुत क्वालिफाइड है और आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न है, फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी है, पर अगर कहीं पर भी उसका किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर अगर मानसिक स्वास्थ्य उसका स्टेबल नहीं है, तो वो लाइफ में मिली हुई इन सभी ब्लेसिंग्स को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सकता।
1: मानसिक संतुष्टि,
2: मानसिक
1: कहा जाता है कि संतोषी सदा सुखी, वो जो संतुष्टि अगर मेंटली नहीं है आपके पास, हाँ,
2: तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आपको मिली हुई चीजों को आप एंजॉय नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू नहीं कर सकते।
1: ठीक बात। आजकल देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा नजर आती हैं, इसके आप क्या प्रमुख रीजंस पाते हैं?
2: देखिए, ये बहुत सही बात है कि जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो हमारे समाज में बेहद ही तेजी से बढ़ रही हैं और ये सभी लोगों का प्रेडिक्शन भी है कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये एक महामारी या एपिडेमिक या पेंडेमिक के रूप में ये समाज में व्याप्त हो जाएंगी। और इसका मुख्य कारण है जो आपने बताया कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, लोगों के पास
1: भौतिक सुविधाएं
2: ज्यादा बढ़ रही हैं।

0: और सबसे बड़ी बात है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं अपने आप से, अपने परिवार से, अपने जॉब से, और उन अपेक्षाओं को मिलाते हुए जो उनके रिसोर्सेज या सोर्सेज होने चाहिए वो पूरे एक साथ नहीं डेवलप हो पाते हैं, वो अपेक्षाएं रियलाइज नहीं हो पाती हैं। दूसरा जो इसका मेन कारण है वो है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि आप यहाँ बैठे बैठे पूरे यूरोप में, अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो लोग किस चीज़ से लाइफ को अपनी ईजी बना रहे हैं, और हमारे पास वो नहीं है। हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे पास हो, पर हम ये नहीं देखते कि हमारे रिसोर्सेज और हमारी एजुकेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उसके लिए नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग हर्ट होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तीसरी चीज है कि मानसिक स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उसका जो असर हो रहा है वो सिर्फ युवाओं में नहीं हो रहा, वो सिर्फ बुजुर्गों में नहीं हो रहा,
1: हर वर्ग में,
0: हर आयु वर्ग में है और हर जेंडर में है। महिलाएं भी उससे उतनी परेशान है, उनकी अपनी दिक्कतें होती हैं, उनका अपना एक सर्किल होता है, अपनी एक

0: बढ़ रही है, उसका जो असर हो रहा है वो सिर्फ युवाओं में नहीं हो रहा, वो सिर्फ बुजुर्गों में नहीं हो रहा,
1: हर वर्ग में।
0: हर आयु वर्ग में है और हर जेंडर में है। महिलाएं भी उससे उतनी परेशान है, उनकी अपनी दिक्कतें होती हैं, उनका अपना एक सर्किल होता है, अपनी एक दुनिया जहां पर व्याप्त हैं ये सारी दिक्कतें। और बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आजकल हमारे समाज में छोटे बच्चे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल तक के भी, उनमें भी मेंटल हेल्थ को लेकर दिक्कतें
1: इश्यूज अभी
0: सामने आ
1: दिखाई
0: रही
1: दे रहे
0: हैं,
1: हैं।
0: इश्यूज सामने आ रहे हैं। और इसका जो एक सामाजिक कारण जो मुझे लगता है वो है कि न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन बढ़ना
1: वो एक बहुत बड़ा रीजन है।
0: बहुत बड़ा रीजन है। और पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे, बड़ों का मार्गदर्शन मिलता था, बच्चों को देखभाल पर्याप्त रूप से मिलती थी, अगर मदर फादर में से किसी को कुछ हो जाता था या दोनों बिजी होते थे तो घर में बहुत सारे लोग होते थे जो बच्चों का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करने में हेल्प करते थे और एक दूसरे को समझते भी थे, शेयरिंग बहुत ज्यादा थी।
1: शेयरिंग इज केयरिंग कहा भी
0: हाँ,
1: जाता है।
0: तो शेयरिंग अभी बहुत कम हो गई है, लोग इंट्रोवर्ट हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर दे आर एक्सट्रोवर्ट, बट इन पर्सनल रिलेशनशिप दे आर इंट्रोवर्ट।
1: ठीक बात
0: तो ये
1: है
0: सारी दिक्कतें हैं जो इन चीजों को जन्म दे रही हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने बच्चों की बात की कि बच्चों में भी तनाव आजकल देखने को मिलता है, मेंटल इश्यूज हैं। तनाव, चिंता और अवसाद, ये स्थितियां बार बार सुनने को मिलती हैं। मूलतः इन तीनों में अगर मैं अंतर जानना चाहूं तो वो अगर हमारे श्रोताओं को आप समझा पाएं।
0: देखिए, आपने बोला तनाव, चिंता और अवसाद,
1: जी
0: मैं इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहूंगा।
1: जी
0: मैं बोलूंगा चिंता, तनाव और अवसाद। इसका अगर हम सीक्वेंस बदलें तो अगर किसी भी आयु वर्ग में किसी को भी किसी भी वजह से कोई चिंता होती है, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे स्कूल के होमवर्क को लेकर हो, या किसी रील को देखकर हो, या घर में कोई बीमार है उसके इलाज को लेकर हो, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द चिंता। और अगर चिंता का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सबकी चिंता की अपनी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, हो सकता है किसी बच्चे को खिलौना नहीं मिल रहा हो, उसको चिंता हो गई भाई ये खिलौना मुझे मिलेगा,
1: मतलब
0: पापा
1: वो
0: ने
1: चीजें जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर
0: मजबूर कर
1: रहे।
0: रही हैं, वो थॉट आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर रहा है। आपका डेली रूटीन अलग था कल तक, पर आज किसी और थॉट ने आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर लिया, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक चिंता कहलाती है। और जब चिंता का सॉल्यूशन नहीं मिलता है
1: जी
0: तो वो धीरे धीरे करके तनाव में आ जाता है, और तनाव एक अलार्मिंग कंडीशन
1: कंडीशन
0: होती
1: है।
0: है मेंटल हेल्थ के लिए। और तनाव जब आ जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि स्टार्टिंग में तनाव से ना आदमी अकेले जूझने की और लड़ने की कोशिश करता है, वो लोगों से सपोर्ट नहीं लेना चाहता या व्यक्त नहीं करना चाहता, उसे लगता है कि लोग मुझे गलत समझेंगे, मेरे पूरी बात को नहीं समझ पाएंगे, और उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, शेयरिंग नहीं हो पाती है, टाइमली एडवाइसेज नहीं मिल पाती हैं, तो वो
1: स्ट्रेस में
0: डिप्रेशन,
1: परिवर्तित हो जाता
0: फ्रस्ट्रेशन और एग्रेसिवनेस या अनयूजुअल बिहेवियर में भी के रूप में सामने आता है। और हमारे समाज में जो हमारी फिजिकल इलनेसेस हैं, जैसे
1: शारीरिक,
0: डायबिटीज
1: हमारी
0: है,
1: जो
0: जो
1: बीमारी है
0: शारीरिक
1: जिनको आप
0: बीमारियां
1: कहते
0: हैं,
1: हैं।
0: डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, कुछ भी है, इनको पहचानने की क्षमता भी लगभग सभी लोगों में है, और डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो भी इनमें अपना नॉलेज
1: एक्सपर्टीज
0: रखते हैं,
1: रखते हैं और
0: एक्सपर्टीज और
1: वो
0: नॉलेज
1: आपको
0: रखते
1: उनसे
0: हैं।
1: फिर आपको निजात दिला
0: पर
1: देते हैं,
0: यस
1: लेकिन जो
0: यस
1: मेंटल
0: पर
1: इश्यूज हैं
0: मेंटल
1: उनके
0: इश्यूज
1: लिए बहुत
0: में
1: मुश्किलात
0: बहुत
1: है।
0: मुश्किल है। इसका रीजन ये है कि मेंटल इश्यूज आदमी व्यक्त नहीं करता है।
1: भावनाओं का जो
0: हाँ
1: प्रदर्शन है वो
0: यस,
1: डिफरेंट फॉर्मेट्स
0: डिफरेंट
1: में
0: होता
1: होता
0: है
1: है।
0: मेंटल इश्यूज। एक तो सबसे पहले जो पीड़ित होता है इससे, जो प्रभावित हो रहा है, वो व्यक्त नहीं करता है, और अगर वो व्यक्त करता है तो जिससे वो व्यक्त कर रहा है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे स्कूल में टीचर्स हो, चाहे कोचिंग के वो हो, या सीनियर्स हो ऑफिस में, या उसके कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, वो हो सकता है उस लेवल तक उसको समझने में असमर्थ रहे कि इस आदमी के मन में, इस पर्सन के मन में क्या द्वंद्व चल रहा है, वो क्यों परेशान है। तो यहां पर रोल आता है काउंसलिंग का। अब तो थोड़े बहुत लोग खुलकर जाने लगे हैं, पर अब से 3-4 साल पहले तक लोग बताते नहीं थे, या छुप कर जाते थे, या शाम होने के बाद जाते थे, या अकेले में जाते थे। मुझे लगता है कि इसके बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है लोगों में, और सबसे बड़ी जागरूकता होना जरूरी है आदमी के अंदर स्वयं में होने में,
1: खुद को बहुत जरूरी है
0: खुद
1: ये
0: को
1: समझना
0: इवेल्युएशन
1: कि मेरे
0: सबसे।
1: अंदर जो है ओवरडोज हो रही है।
0: यस, क्या मैं ओवर ऑक्यूपाइड हूं किसी थॉट
1: हाँ
0: प्रोसेस से, क्या कोई थॉट मुझे बार बार परेशान कर रहा है, और वो सिंपल आपके डेली हैबिट्स में भी दिखाई दे सकता है
1: बिल्कुल ठीक बात
0: कि
1: है।
0: पहले मैं अच्छे कपड़े पहनता था, मैं अपनी केयर नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा अपने हाथों को धोता हूं, मैं बार बार हैंडल को छूता हूं, मैं गंदगी से बेहद ज्यादा परहेज करता हूं, जो कि मेरे डेली रूटीन को परेशान करती है, जिसे हम ओसीडी का एक सिम्टम मानते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का। और अगर आप बच्चों में देखेंगे तो हम कैसे पहचान सकते हैं, आप किसी भी समाज का जो आईना होता है, जो मैं कहूंगा, वो न्यूज हेडलाइंस होती हैं। आप अखबार उठा के पढ़िए, आप न्यूज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ जो स्ट्रिप रन करती है आप उसको पढ़िए, तो

0: आपको आज आजकल आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको बहुत कॉमनली ये बात है जिसको देख के हम पेज पलट देते हैं कि बच्चे से अगर मोबाइल लिया तो उसने माँ को हर्ट कर दिया है ना,
1: हाँ
0: या
1: बहुत
0: सुसाइड्स कर
1: एक्सट्रीम
0: ली,
1: एक्सट्रीम
0: बहुत
1: स्टेप्स जो
0: सुसाइड्स
1: भी।
0: कर ली,
1: हाँ
0: और नीट का एग्जाम या कोई भी ऐसी कोई इनको सेटबैक लगा के लिए हम ये न्यूज़ भी आ रही है कि बच्चे
1: उससे
0: आजकल वो
1: परहेज नहीं करते,
0: कोप अप नहीं कर पाते हैं
1: हाँ
0: चीज़ों को
1: एक
0: लेकर,
1: गलत
0: स्ट्रेस,
1: कदम उठा लेते
0: एक
1: हैं।
0: गलत कदम उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को चीज़ों को समझना चाहिए, इसको हम कहते हैं एग्रेसिव इम्पल्स, इम्पल्सिव बिहेवियर।
1: आजकल जो बहुत सारे घटनाक्रम देखने में मिल रहे हैं, ये एक सामाजिक जो रिश्ते हैं
0: जी
1: उनमें बहुत सारे आपको
0: यस
1: ऊपर
0: यस
1: नीचे
0: यस,
1: ऐसी इस तरह की चीजें
0: आप
1: देखने को
0: बहुत
1: मिल
0: सारे
1: रही हैं।
0: आजकल जो केसेस हाईलाइटेड हैं,
1: जी
0: चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर हो, है ना, तो लोगों का एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और वो तभी बढ़ता है जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं
1: तो
0: होती है।
1: ये कहीं ना कहीं एक पूरे समाज के लिए एक संकेत है
0: जी
1: कि ये, और इसको बहुत गहराई से
0: ये
1: और
0: बहुत गंभीर
1: समझने की
0: संकेत
1: जरूरत है।
0: है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये कब तक ये सेटल होगा हमारे समाज में और कितना ज़्यादा इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, पर ये जो भी है संकेत, ये अभी हेल्दी संकेत के रूप में हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर
1: नहीं कर
0: सकते हैं।
1: सकते, ठीक बात है,
0: दिस इज़ अ वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस।
1: बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं अकेलापन या कहें कि सामाजिक जो अलगाव है वो एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते ये जो आपसी ताल्लुकात हैं, आपसी रिश्ते हैं, वो एक भावनात्मक जो अटैचमेंट हुआ करता था उसकी कमी है, और उसकी वजह से ये मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं जिनको आप एग्रेशन कह रहे हैं वो
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: बिल्कुल
1: सामने आ
0: बिल्कुल,
1: रहे
0: ये
1: हैं।
0: बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आप देखेंगे ना कि ये एनर्जी होती है, हर चीज़ में एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, और एक साइकिल होती है, एक सर्किल होता है किसी भी चीज़ का। तो सिंपल सी बात है, आजकल आप देखेंगे कि कम्युनिटी में, समाज में कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स, इवेंट्स और शोज हो रहे हैं जहां पर लोग सिर्फ आते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं, और इस तरह के प्रोग्राम्स की और उसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती
1: बढ़ती
0: जा
1: जा
0: रही है,
1: रही।
0: क्योंकि जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वो जो आपने अलगाव बोला, जो अकेलापन बोला, वो कहीं ना कहीं उससे पीड़ित हैं,
1: और
0: और
1: वो उसको
0: जो
1: ब्रिज करना
0: वो
1: चाहते
0: ब्रिज
1: हैं।
0: करना चाहते हैं वो ऊब चुके हैं, या ऊबना उन्होंने शुरू कर दिया, बोर होना शुरू कर दिया है अकेले स्क्रीन के साथ टाइम बिताने से, अकेले घर में बैठने से, टीवी देखने से, ऑर्डर करके खाने से। नाउ देर इज अ लिमिट नाउ, तो वही थॉट प्रोसेस उनको डिस्टर्ब करते हैं, तभी वो लोग नाउ दे आर सर्चिंग फॉर ए कंपनी, हेल्दी कंपनी, हेल्दी लोगों से मिलना, और ये बढ़ रहा है एक तरह से, ये सही भी है, पर इसका मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो जो मैंने एक बार अभी बोला था कि न्यूक्लियर फैमिलीज के चलन से समाज में शेयरिंग और केयरिंग फॉर, केयरिंग फ्रॉम एल्डर,
1: वो
0: ये
1: कहीं
0: बहुत
1: ना
0: कम
1: कहीं
0: हो रही
1: बिल्कुल
0: है,
1: गायब सी
0: गायब
1: हो
0: हो
1: गई,
0: गई है
1: और उसके
0: ना।
1: चलते उसके जो रिपरकशंस हैं वो बहुत ज्यादा मतलब अजीब अजीब फॉर्मेट्स में
0: बिल्कुल
1: आपको नजर
0: बिल्कुल
1: आ रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं,
0: और दूसरा है
1: जिनके बारे
0: माइग्रेशन।
1: में शायद हमने कभी सोचा
0: हाँ,
1: भी नहीं
0: दूसरा
1: था।
0: है माइग्रेशन, आजकल बहुत जल्दी एजुकेशन लेने के बाद बच्चे माइग्रेट कर जाते हैं।
1: प्रतिस्पर्धा का युग है,
0: यस यस,
1: तो इसके चलते भी जो एक आपने शुरुआत में बात कही थी कि जो हमारी आधुनिक जीवन शैली सो कॉल्ड हो गई है, जहां हम भौतिक सुख सुविधाओं के आदि होते जा रहे हैं, और चूंकि प्रतिस्पर्धा है तो उसके चलते बहुत सारे लोग जो है एक दूसरी जगह पलायन करते हैं, अपने
0: और
1: रोजगार की
0: पलायन
1: तलाश
0: नहीं,
1: में
0: पलायन
1: जाते
0: करते
1: हैं।
0: हैं वो ठीक बात है, पर पलायन करने की एक उम्र और एक ताकत होती है। अगर आप 20 साल के, 19 साल के बच्चे को आप बहुत दूर अपने घर से भेज देंगे, जिसका जो तना है, जिस पेड़ का, वो पूरी तरह से अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है,
1: उसको
0: तो
1: अभी भावनात्मक रूप से सहारे की
0: भावनात्मक रूप
1: जरूरत
0: से,
1: है।
0: या तो आपने बचपन से उसको पूरी तरह ट्रेन किया हो, तो उसमें दो कंडीशन उत्पन्न होती हैं कि जब वो वहां पर जाता है तो वहां की जो एडवर्स या न्यू कंडीशंस होती हैं उसमें हो सकता है वो कोप अप पूरी तरह से ना कर पाए, और किसी गिल्ट की भावना से या वापस आने की शर्म की भावना से वो किसी के साथ शेयर भी ना करें, और धीरे धीरे करके वो इंसान टूटता चला जाए। दूसरा क्या होता है कि वो अपने आप को इतना ज्यादा कोप अप या स्ट्रांग कर ले कि वो आपसे टूट जाए, अपने मूल परिवार से टूट जाए, समाज से टूट जाए,
1: वो
0: देश
1: उसी में
0: से।
1: ही आनंद अपना
0: हाँ
1: खोजने लगे।
0: यस, तो ये दोनों ही चीजें एक बैलेंस बिहेवियर का निशानी नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: तो अगर आपको ये जो नींव डालनी है, वो बचपन में संस्कार, वो हमारे जो संयुक्त परिवार के और हमारे समाज के थे, वही वापस आने चाहिए, वही शिक्षा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि अब दोबारा गुरुकुल का
1: चलन जो है, अब
0: चलन,
1: वो चीजें
0: हाँ,
1: आ
0: वो
1: रही
0: गूंज
1: हैं।
0: आने लगी है अब समाज में
1: ठीक
0: कि
1: बात
0: भाई
1: है।
0: गुरुकुल के स्कूल कहाँ है ना।
1: आपने जो बात कही है सामाजिक संबंधों की या पारिवारिक संबंधों की, पारिवारिक रिश्तों की, पारिवारिक जो एक मजबूती होती है उसकी, उसमें अगर हम देखें महिलाओं का रोल जो है उसको हम नकार नहीं सकते, बहुत बड़ा
0: बिल्कुल भी नहीं,
1: और
0: बिल्कुल नहीं,
1: महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की होती है,
0: महिलाओं, मुझे
1: लेकिन
0: किसी की,
1: महिलाएं ही आजकल बहुत सारी सामाजिक या कहें मानसिक समस्याओं से जूझ रही हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे
0: मुझे लगता है

0: है कि हमारे पूरे समाज में, जब मैं स्कूल में था तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, एक नहीं दो दो मात्राएं नरसे भारी नारी।
1: बिल्कुल
0: और ये है जो फीमेल पार्ट हमारी सोसाइटी का है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और कभी कई लोगों ने चैलेंज भी करके दिया है कि किसी भी आदमी को अगर महिला की लाइफ अगर 9 महीने तक जीनी पड़ जाए तो वो आदमी, वो पूरी जो मेल सोसाइटी है वो फीमेल के गुलाम बन जाएगी। क्योंकि वो लोग वास्तव में बहुत कुछ बियर करती हैं, बहुत कुछ एडजस्ट करती हैं कि जन्म से लेकर पहले स्कूल्स में, फिर कॉलेजेस में,
1: एट
0: एजुकेशन,
1: एवरी
0: फिर
1: स्टेज ऑफ लाइफ।
0: फैमिली में, फिर ससुराल में, बहुत सारी चीज़ें। आदमी का ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि महिलाओं का जो मेंटल स्टेबिलिटी में अब सेचुरेशन आ गया है। पहले क्या होता था, वो बच्चों के लिए सब कुछ कर जाती थी, बच्चे उनके साथ रहते थे,
1: अब
0: अब
1: कहीं
0: बच्चे
1: ना
0: भी
1: कहीं
0: दूर हो
1: के
0: गए हैं
1: खुद का करियर भी कहीं
0: और
1: ना
0: अब वो
1: कहीं।
0: खुद कैरियर ओरिएंटेड होने लगी हैं।
1: हाँ
0: तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, हर एक की एक क्षमता होती है। इंसान का जो दिमाग है उसकी भी एक क्षमता है, चाहे वो महिला का हो या पुरुष का हो। अगर उससे ऊपर बात जाएगी तो वो बाढ़ में ही तब्दील होगी। वो चाहे विचारों की बाढ़ हो या तनाव की
1: भावनाओं की
0: बाढ़
1: हो
0: हो
1: या
0: या
1: तनाव
0: चिंता
1: की,
0: की बाढ़
1: ठीक
0: हो,
1: बात
0: तो
1: है।
0: फिर वो अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन में ही बाहर आएगा। तो ये बहुत कॉमन है और इसके लिए हमें, मैं दोबारा, कंसेप्ट वही है, शेयरिंग एंड काउंसलिंग।
1: मानसिक बीमारियों की अगर बात करें तो जैसे शारीरिक बीमारी होती है वो दिखती है, आपने कहा मानसिक बीमारी है वो दिखती नहीं, लेकिन क्या सामान्य चिकित्सकीय जो स्थितियां हैं उनके द्वारा शारीरिक जो बीमारियां हैं उनकी तरह ही मानसिक बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता
0: 100%। अगर हम बात करें गंभीर बीमारियों की, तो
1: जी।
0: अक्सर हम कहते हैं भाई कैंसर बहुत गंभीर बीमारी है ना, ब्रेन स्ट्रोक बहुत गंभीर बीमारी है, जिसमें एक आदमी जिंदगी भर के लिए या तो पैरालाइज हो जाता है या मर जाता है, उसका डेथ हो जाती है। कैंसर के संग भी यही कहा जाता है। पर दोनों ही केसेस में ये भी कहा जाता है कि अगर इनको इनिशियल स्टेज में पहचान लिया जाए तो ये 100% क्योर भी
1: क्यूरेबल
0: है।
1: है।
0: और इसी तरह कहा जाता है कि ये जितनी भी कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, स्ट्रोक है, ये 100% प्रिवेंटेबल डिजीज भी हैं। अगर आपको पता है कि अगर मेरी लाइफ स्टाइल इस तरह की बजाय अगर बिगड़ेगी तो मुझे ये हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, और आप शुरू से अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल को, अपने फैमिली के एटमोसफेयर को हेल्दी रखते हैं, तो वो डेवलप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह मेंटल इलनेसेस के साथ है। अगर आपके घर का वातावरण सही है, आपका संस्कार सही है, आपके फैमिली की बॉन्डिंग सही है, तो मेंटल इलनेसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और मेंटल इलनेसेस को भी अगर, चाहे व्यक्ति के द्वारा स्वयं या उसके आसपास के लोगों के द्वारा, चाहे वो टीचर्स हों, उसके कलीग्स हों, पीयर ग्रुप हों, फ्रेंड्स हों,
1: नियर एंड
0: सोसाइटी,
1: डियर जो
0: नियर
1: भी
0: एंड डियर,
1: हैं।
0: जो क्लोज रहते हैं, अगर वो अवेयर हों कि मानसिक बीमारियों के क्या सिम्टम्स होते हैं और इनिशियल फॉर्म में किसी को पहचान लेते हैं तो उसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। हाँ, उसमें हो सकता है हमेशा दवाई चलाने की जरूरत नहीं पड़ती हो, उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा अलग होता है, उनके डायग्नोस्टिक टूल्स भी अलग होते हैं, जिनको हम साइकेट्रिक टूल्स बोलते हैं।
1: जी
0: और मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूं कि अब उनका उपयोग दिन पर दिन मेडिकल फील्ड में ज्यादातर बढ़ता जा रहा है।
1: आपने बात की थी मिथ्स की, इन मिथ्स के चलते भी लोग ट्रीटमेंट लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं,
0: हिचकिचाते हैं।
1: आपको क्या लगता है कि मतलब क्या स्थिति है और कैसे इससे ओवरकम किया जा सकता है?
0: ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले एक चीज होती है एक्सेप्टेंस। अगर आदमी के अंदर अपनी बीमारी को लेकर एक्सेप्टेंस है, वो ये समझ जाए कि नहीं, मुझे
1: देयर इज ए
0: कोई,
1: प्रॉब्लम।
0: देयर इज ए प्रॉब्लम, मुझे कोई शारीरिक नहीं, मेरा मन थोड़ा सा परेशान है, तो मुझे मन के डॉक्टर के पास जाना है। हमारे तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी मन की बात करते हैं ना,
1: जी,
0: पूरे देश के स्वास्थ्य के लिए, कि
1: तो
0: लोग
1: वो
0: उनसे जुड़ें,
1: मन के संतुलन
0: मन के
1: बिठाना
0: संतुलन बिठाना, मन की
1: वो
0: बात
1: सबसे
0: करते हैं,
1: इम्पोर्टेंट।
0: मन लोगों से जुड़ने के लिए, शेयरिंग के लिए, कि ताकि देश के हर कोने से आई इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से साझा कर सकें। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि अगर आदमी अपने मन में होने वाली दिक्कतों को पहचान ले और मन के डॉक्टर के पास, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो काउंसलर हो या साइकेट्रिस्ट हो, उसके पास उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाए जितना वो हड्डी में चोट लगने पर ऑर्थोपेडिशियन के पास जाता है या बुखार आने पर वो फिजिशियन के पास जाता
1: और
0: है।
1: एक बात डॉक्टर साहब और है, बहुत सामान्य सी स्थिति में अगर हम देखें तो हर किसी चीज़ के प्रति, हर किसी भाव के प्रति, हर किसी विचार के प्रति, हर किसी का नज़रिया
0: अलग
1: अलग
0: अलग
1: अलग
0: अलग
1: होता
0: अलग होता
1: है,
0: है।
1: और जब
0: और
1: आप किन्हीं चीज़ों को, किन्हीं भावनाओं को, किन्हीं विचारों को किसी के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो वो जो उनके प्रति जो उसका रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो भी अलग अलग फॉर्मेट्स
0: बिल्कुल
1: में, अलग
0: बिल्कुल
1: अलग
0: बिल्कुल
1: फॉर्म्स में
0: बिल्कुल
1: आपको
0: बिल्कुल।
1: दिखाई देती
0: और
1: है।
0: उसको कभी पर्सनलाइज नहीं लेना चाहिए
1: हाँ,
0: कभी भी, कि इसने
1: वो
0: मुझसे
1: सबसे
0: ऐसे क्यों
1: जरूरी
0: घूरा,
1: है।
0: मुझे क्यों देखा, मेरी बात को सुना नहीं, समझा नहीं। ठीक है, हर किसी का परसेप्शन हर चीज के लिए अलग अलग होता है और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हो सकता है वो आपकी बात ना समझ

0: पाए या उस फील्ड का बंदा नहीं होगा तो नहीं समझ पाएगा।
1: ठीक बात।
0: तो ये सारी चीजें होती हैं। और मैं इसमें यह भी ऐड करना चाहूंगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन चीजों को लेकर बहुत संजीदा है, बहुत, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए भी जा रहे हैं।
1: अगर उनको हमारे श्रोताओं के साथ अगर कुछ साझा कर सकें ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आदमी का किसी से बात करना, जिसे हम शेयरिंग कह रहे हैं
1: जी,
0: और जिससे वो बात करे उसके द्वारा सही सलाह मिलना, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों को, अगर किसी के मन में कोई परेशानी या किसी तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं जिसे वो किसी के साथ साझा करना चाहता है, तो सरकार ने एक टेलीफोनिक कॉल सेंटर हेल्पलाइन शुरू करी हुई है,
1: टेलीमानस।
0: ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन है। पूरे यूपी में अभी 4 जगह से इसका संचालन होता है, आगरा, बरेली, गोरखपुर और बनारस से
1: जी।
0: और टेलीमानस में क्या होता है कि इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो पूरा टोल फ्री है, का नंबर है 14416। आप किसी भी नंबर से मिलाएंगे, और मैं उसका भी नोडल ऑफिसर हूँ इसलिए मुझे उसके बारे में ठीक से पता भी है कि इसमें क्या होता है। आगरा का जो सेटअप है वो हमारे मेंटल हॉस्पिटल में पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में इसका बहुत अच्छा एक सेल बना हुआ है
1: जी,
0: जहाँ पर 8 काउंसलर्स, ट्रेंड क्वालिफाइड काउंसलर्स, हर टाइम कंप्यूटर स्क्रीन्स पर कॉल सेंटर की तरह रहते हैं। जब भी आप कॉल करते हैं तो वो कॉल किसी न किसी काउंसलर को रिसीव होती है, और सबसे बड़ी बात है इसमें गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती
1: जो
0: है,
1: सबसे महत्वपूर्ण,
0: सबसे इम्पोर्टेंट,
1: आदमी उसी
0: जिससे
1: से डर
0: लगता
1: लगता
0: है
1: जी
0: कि मैं जाऊंगा मेरे बारे में पता लगेगा तो लोग मुझे
1: किस
0: पागल
1: तरह से
0: कहना शुरू
1: लेंगे।
0: कर देंगे या कुछ और मिथ शुरू हो जाएगा। तो गोपनीयता, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो काउंसलर आपसे नाम नहीं पूछेगा, वो आपसे आपके दोस्त की तरह बात करेगा, आपकी परेशानी को समझेगा और आपको सलाह भी देगा। अगर उस काउंसलर को आपसे या किसी भी आदमी से बात करते में ये लगता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी गंभीर लग रही है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस काउंसलर के बैकअप में 24/7 24 घंटे एक साइकेट्रिस्ट भी रहता है, तो वो कॉल फिर साइकेट्रिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ट्रांसफर हो जाती है जो उस पेशेंट से टेलीफोन पर दोबारा बात करता है और जरूरत होने पर उनको ओपीडी में बुलाकर इवेल्युएट करने के लिए समय भी देता है।
1: यानी मनोवैज्ञानिक जो परामर्श है, मनोचिकित्सकीय जो सलाह है, उसमें थोड़ा अंतर है।
0: हाँ बिल्कुल
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेवा है ये 24 घंटे रहती है। आप किसी भी टाइम, रात के 2 बजे आपको विचार आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं,
1: और जब आपको लगे तब आप
0: कॉल करके बात कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि ये अब तक हम लोग आगरा में जब से सेल स्थापित हुई है 2 लाख से ज्यादा कॉल हमको मिल चुकी हैं।
1: क्या बात
0: है। ये तब है जब इसका प्रचार प्रसार अभी उस स्तर का नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। और इन 2 लाख कॉल में से लगभग 300 से 500, जो मैं एक रफ डेटा आपको बता रहा हूं, हम लोग अभी आत्महत्या की प्रवृत्ति वाली कॉल को रिसीव करके उन आत्महत्या को बचा भी चुके हैं, जो हमें अपने काउंसलर से जब फीडबैक लेना होता है वो बताते हैं, सर इस तरह से कॉल आए, वो आत्महत्या करने वाले थे, फिर हमने उनसे बात करी तो वो रुक गए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई कॉलर बात करता है और काउंसलर उसको नोट डाउन करते हैं और अगले दिन उनको लगता है कि मुझे इससे दोबारा बात करनी चाहिए, तो फीडबैक कॉल भी करी जाती है।
1: दरअसल ये जो भावनाओं का या विचारों का उद्वेलन है, जिसको आप इंपल्स कह रहे हैं,
0: उसको रोकना
1: वो
0: होता है।
1: उसको रोकने की
0: जे,
1: अवस्था
0: जे,
1: है, और वो बातचीत करके उसको शांत
0: बिल्कुल,
1: किया
0: बिल्कुल।
1: जा सकता है, उसको रोका
0: और उसमें
1: जा
0: कोई
1: सकता
0: कॉल
1: है।
0: ड्यूरेशन लिमिट नहीं है, आप 1 घंटे बात करें, 45 मिनट करें, आप 10 मिनट बात करें, जितना आप कन्वीनियंट है, आप 1 बार कॉल करें, 5 बार कॉल करें, कोई उसमें
1: यानी जितनी भी मना स्थितियां हैं जिनको हम उद्वेलन का नाम देते हैं या मानसिक जो
0: डिप्रेशन
1: की स्थितियां हैं,
0: कह सकते हैं
1: अवसाद की स्थितियां हैं, हर मानसिक समस्या में दवा ही लेना जरूरी नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: केवल अपनी भावनाओं को साझा करने से, बातचीत करने से, काउंसलिंग लेने से भी समस्या का निदान
0: बहुत
1: हो
0: सारा
1: सकता है।
0: बहुत सारे, काउंसलिंग इज ए वेरी गुड साइकेट्रिक टूल। काउंसलिंग हर लेवल पर होती है, कभी कभी घर में पेरेंट्स बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ओल्ड एज में बच्चे पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, जो बातचीत होती है वो काउंसलिंग ही होती है, एक दूसरे को समझना और समझाना, दिस इज काउंसलिंग। और अब टेलीमानस में जो नया, अभी कल परसों ही हमको एक इसका अपग्रेडेशन के लिए पता लगा है कि अब हम इसमें वीडियो कॉल भी कराना शुरू करने वाले हैं। अगर कोई आदमी फेस टू फेस बात करना चाहता है तो वीडियो कॉल भी कर सकता है, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आए कि वो किससे बात कर रहा है,
1: आदमी आत्मीय रूप से भी जुड़ सकता
0: है। यस यस यस यस। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी हमारा न्यायपालिका की तरफ से और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी एक पहल करी जा रही है कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, वो ऐसी कदम उठा लेते हैं जो पूरे परिवार के लिए हानिकारक होता है।

0: सुसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इंडिया में। सुसाइड्स जो सबसे ज्यादा हो रही हैं वो 18 से 40 साल के एज ग्रुप में हो रही हैं, जो कि हमारे देश की यंग पॉपुलेशन है।
1: जहां पर विद्यार्थी हैं तो परीक्षा का दबाव,
0: यस,
1: जिसको कह सकते हैं, थोड़ा और ऊपर
0: एक्सपेक्टेशन का
1: जाते हैं तो फिर कैरियर की चिंता
0: कैरियर की चिंता
1: सताती है,
0: होती है
1: बेरोजगारी, और
0: फिर।
1: फिर जो एक ओवरऑल सोशल मीडिया जो हावी
0: बिल्कुल।
1: है उसका
0: और
1: प्रभाव।
0: दूसरा, आजकल जो सोशल मीडिया के प्रभाव में जो इनके रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, जो उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो उस एज ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वो भी कभी फेलियर्स होते हैं, कभी उसमें सक्सेस मिलती है, नहीं मिलती है, या ओवर एक्सपेक्टेशंस होते हैं। वहां पर
1: जी
0: बच्चों को समझने के लिए अभी हम लोग एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। वही सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है कि अब हर हायर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं, और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनको एक काउंसलर हायर करना कंपलसरी
1: मैंडेटरी
0: हो
1: है।
0: गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो काउंसलर जो भी हायर करेंगे वो अपने संसाधनों से करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो इन हाउस नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारा ही कोई टीचर काउंसलर उन्होंने बना दिया। डेट शुड बी एक्सटर्नल, डेट शुड बी न्यूट्रल, और वो बच्चों से बात कर सके और बच्चे उससे
1: अपनी
0: ओपनली
1: चीजें
0: शेयर कर
1: ओपनली
0: सकें।
1: शेयर कर सकें,
0: क्योंकि अगर कोई भी इन हाउस काउंसलर आप रखते हैं तो वो बाइज्ड हो जाता है, क्योंकि बच्चों से मिलना होता है।
1: क्योंकि ऐसे स्कूल्स हुए या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हुए, इन जगहों पर जो मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता होना, वो अपने आप में बड़ी
0: बिल्कुल,
1: जरूरी
0: वहां बच्चों
1: चीज
0: को समझ में आना चाहिए कि आज अगर मेरे किसी टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं
1: है।
0: तो मैं परेशान हूं, तो कल जो काउंसलर विजिट करने वाले हैं जब मेरे को, तो उनसे मैं बात करके अपनी प्रॉब्लम बता पाऊं, जिससे वो कोचिंग के टीचर से बात करके एक ब्रिज बना पाए कि भाई इस
1: दरअसल
0: बच्चे को
1: वो
0: थोड़े
1: सारी
0: से।
1: बात घूम फिर के वही आती है कि हमारे जो आसपास, हमारे इर्द गिर्द जो एक बड़े संयुक्त परिवार का जो एक आवरण हुआ करता था,
0: बिल्कुल
1: वो आवरण
0: बिल्कुल
1: हमारा कहीं ना
0: बिल्कुल
1: कहीं
0: भाई,
1: कमजोर
0: पहले
1: हुआ
0: घर में
1: है।
0: बुआ भी होती थी, चाचा भी
1: हाँ,
0: होते थे,
1: तो
0: मामा
1: वो
0: भी
1: जो
0: होते थे, वो
1: काउंसलर
0: सारा
1: हमारे
0: शेयरिंग।
1: चारों तरफ मौजूद हुआ करते थे, जिनसे हम अपनी चीजों को साझा कर पाते थे, वो काउंसलर साहब
0: और
1: हम तलाश रहे
0: एक
1: हैं।
0: जना डांटता था तो दूसरा पुचकार लेता था,
1: हाँ, तो
0: ये
1: वो
0: बहुत बड़ी
1: बात
0: बात
1: है,
0: थी।
1: ठीक बात है। तो ये
0: और एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एक गाइडलाइंस आई हैं, जिसको हम उम्मीद गाइडलाइंस कहते हैं, जिसको मनोदर्पण गाइडलाइंस आई हैं, और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एक काउंसलर की नियुक्ति बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं और बहुत ही जल्दी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे हर लेवल पर, जिसको मॉनिटर हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए। इसके अलावा हम दो तीन प्रोग्राम और चलाते हैं। एक है स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम,
1: जी
0: जहाँ पर हम हर साल 24 स्कूल के प्रिंसिपल और दो टीचर्स को इनवाइट करते हैं, उनको मेंटल हेल्थ में ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो कम से कम इस कैपेबिलिटी में आ जाए कि अगर उनके स्कूल में कोई बच्चा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकें,
1: आइडेंटिफाई कर सकें और उसको जो है
0: उसके पेरेंट्स
1: उचित
0: को इन्फॉर्म कर
1: इन्फॉर्म
0: सकें,
1: कर सकें। ठीक
0: डॉक्टर को
1: बात
0: इन्फॉर्म कर सकें। और वहीं हम हर स्कूल में एक मंदूत और एक मनपरी भी बनाते हैं, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है।
1: क्या है।
0: मंदूत बनाते हैं हम लड़कों के बीच में, मनपरी बनाते हैं लड़कियों के बीच में।
1: हाँ,
0: तो जब हमारी मेंटल हेल्थ की टीम स्कूल में जाती है, वो टेस्ट लेती है, तो वहां पर जो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करता है वो मनदूत मनपरी चयनित होता है। उसका काम ये होता है कि जो बच्चे बच्चों के बीच में रहते हैं तो उनको बहुत सारी ऐसी बातें पता लगती हैं
1: कि
0: जो
1: इसके मन
0: टीचर को
1: में
0: पता
1: क्या
0: नहीं
1: चल
0: लगता।
1: रहा है,
0: हाँ, यही आस उदास है, कुछ बच्चा बहुत दिन से नहीं आ रहा, खाना नहीं खा रहा, अपना टिफिन वापस लेके जा
1: या
0: रहा है,
1: कुछ
0: तो वो
1: पीरियड से
0: हमारे
1: इसका जो
0: इन्फॉर्मर
1: है।
0: होंगे, वो
1: हाँ,
0: हमारे इन्फॉर्मर होंगे जो टाइमली टीचर को जाके बता दें, मैडम आज फलाना मेरा
1: ये
0: दोस्त
1: मन का
0: दुखी
1: दूत
0: है।
1: जो है वो उसके
0: यस,
1: मन की
0: मंदूत
1: बात को
0: मनपरे।
1: लेके
0: हाँ, तो
1: जाएगा।
0: हमने काफी स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट किया है, रिजल्ट्स आर गुड। तो ये चीजें हैं, और मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के स्टेबिलिटी के लिए, पूरे समाज के लिए, लोगों का इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली का इंडिविजुअल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग और अवेयर होना और बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, अब समय चूंकि हो रहा है कार्यक्रम का, तो मैं जाते जाते आपसे केवल पांच ऐसी चीजें जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती हैं।
0: सबसे बड़ी चीज है अच्छी नींद, आपका नींद जरूर होनी चाहिए। किसी भी स्वस्थ आदमी को 8 से 9 घंटे की नींद जरूर होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए, आप हमेशा लोगों से मिलते रहें, बात करते रहें,
1: शेयर करते रहें।
0: शेयरिंग करते रहें, रोज अपने किसी एक पुराने दोस्त को कॉल करिए, रिश्तेदार को। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अवेयर बने। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज परेशान कर रही है, किसी चीज को लेकर आप तनावग्रस्त हैं, आप खुशनुमा माहौल में भी खुश नहीं हो पा रहे हैं जहां पर आपको होना चाहिए, तो आप अपना इवेल्यूशन खुद करिए और कॉन्फिडेंस के साथ आप साइकेट्रिक या काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास हेल्प लेनी चाहिए। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा पूरे समाज से, कि

0: एक दूसरे को सपोर्ट करें। मानसिक बीमारियां कभी भी पागलपन ही नहीं होती हैं। जैसे किसी के पैर में दर्द है तो हम उसे लंगड़ा नहीं कह सकते हर बार,
1: जी जी जी
0: इसी तरह मानसिक बीमारी से अगर कोई आदमी आपके संपर्क में आता है
1: तो वो
0: तो उसको
1: जरूरी नहीं है वो
0: सपोर्ट दें,
1: पागल ही हो।
0: उसको सिंपैथी दें, उसको उतना ही सपोर्ट दें जितना आप एक किसी और बीमारी से ग्रस्त आदमी को देते हैं। और पांचवी चीज है कि हमेशा अपडेटेड रहें, हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपने रिसोर्सेज के आधार पर डेवलप करें, और अगर वो पूरी होती है तो खुश होइए, और नहीं होती है तो दोबारा से राणा प्रताप महाराणा प्रताप की तरह खड़े होइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने आज मानसिक स्वास्थ्य के जो तमाम पहलू हैं उन पर जो अत्यंत उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुनी विषय मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और समाधान पर डॉक्टर पीयूष जैन से अनिंद सिंह की बातचीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसका प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स में शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 102.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका। आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल की तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद।
0: जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं। श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं। 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं। खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने। सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमारे लिसनर्स के साथ, कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया।
1: ये सफर तो काफी मेरा शानदार है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है। ऑफिसर से लेकर जितने आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने भी कार्मिक हैं, सबको इसमें मेहनत करना पड़ता है। कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें रहता है। भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं, सबका महत्वपूर्ण सबका

0: महत्वपूर्ण योगदान रहता है जी।
1: तो सर जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है, लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई, एक टैक्टिकल लीडरशिप, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए, इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे, तो उनके बारे में बताइए
0: जी। ऑपरेशन इसलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे, हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे जो अभी आईजी हैं, और आईपीएस संजय सर थे वो पटना फ्रंटियर में थे, उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर, हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था, हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें, तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा जो भी ऑपरेशन हुआ
1: जी। यहां पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूं?
0: जी बिल्कुल ठीक बहुत बता
1: जी। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे, और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
0: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफ़ी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पिलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ जीपीएस वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है, और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे। उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
1: जी
0: मारे गए।
1: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफ़ी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे, वो बहुत खतरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को, आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
0: जी उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुँचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
1: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
0: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ
1: जी।
0: इसमें जी जी जी।
1: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहाँ से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
0: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
1: अच्छा।
0: उसमें हम लोग आराम से अपने डीआईजी महोदय, आईजी महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
1: जी।
0: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअल्टी कम से कम होता है, और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है
1: जी
0: जी।
1: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाजा होगा कि ये कितना खतरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आजादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
0: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं, और फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के एसटीएफ भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया, इस ऑपरेशन के बाद उनकी कमर टूट गई।
1: क्या बात है सर
0: जी।
1: तो यानी कि ये बहुत ही एक

0: इम्पॉर्टेंट एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
1: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था, बाहर से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको बहला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उसे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
0: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाए आप घायल अवस्था में भी?
1: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजुरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उस समय आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहता है उसमें।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
1: इसमें हमारे ऑफिसर और ऑफिसर में हमारे नरपत सर डिप्टी कमांडेंट थे, उनका अहम योगदान है, और जो कार्मिक लोग थे बहुत उनका अहम योगदान था इसमें।
0: तो
1: बहुत बहादुरी के साथ वो फायर करते रहे, दोनों साइड से काउंटर फायर बहुत जबरदस्त भारी गोलीबारी का बौछार हुआ दोनों साइड से।
0: सर हमें ये भी हम यहां जानना चाहेंगे जैसे हमारे लिसनर्स कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहां स्टूडियो में बैठ करके, आपने घर में बैठ करके वो अंदाजा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
1: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
0: खात्मा करें। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सैट टीम हमारा था उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था। गोलियों को बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे,
0: क्या बात,
1: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
0: तो सर यही हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते ना कि बस डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए।
1: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला, उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
0: अच्छा।
1: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला, तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
0: जी, और दो बार आपको मिला है,
1: दो बार गैलेंट्री,
0: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं तो वो मेडल भी मैं दो चार देख पा रहा हूं, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहां आप पहुंचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में उसमें उनका वो वहाँ प्रोग्राम था। उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था, तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे लीड मिलते गया और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
0: जी।
1: 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
0: 50
1: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
0: अच्छा,
1: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
0: ओके,
1: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: उनको हम लोगों ने मार के वहाँ इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था, उसमें बहुत
0: अच्छा।
1: सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें जी।
0: जी तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था ये आपका पहला इनकाउंटर था?
1: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
0: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
1: हमने नहीं, हमारी टीम और
0: जी,
1: हाँ सब मिलकर,
0: एसएसबी की टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के।
1: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा
1: जी।
0: तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
1: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा स्टार्ट हुआ, जब पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी हैं सबके मन में भावनाएं एक रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हमको ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: और सर हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की तो कहां से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी, क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज सब इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहां से इंस्पिरेशन मिली, कहां से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
1: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
0: अच्छा
1: जी जी जी हाँ।
0: तो ये जो जोश था ये बचपन से ही था आपके मन में के देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
1: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
0: जी,
1: फिर
0: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
1: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स
0: अच्छा,
1: में ज्वाइन किया जी
0: जी। तो आपने स्कूलिंग के जमाने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
1: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
0: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
1: हाँ, टेस्ट पास हुए, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सलोनाबाड़ी में

0: स्टार्ट हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ। वहाँ
1: अच्छा
0: भी NDFE के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ। हाँ,
1: अच्छा
0: वहाँ फिर NDFE के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ आसाम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
1: तो सर आपकी जो जी एक तो SSB का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट
0: हाँ,
1: जी,
0: इंडो
1: तो
0: भूटान
1: आपका जो
0: बॉर्डर,
1: खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था।
0: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर। फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय
1: अच्छा
0: असम जल रही थी NDFE का, उससे
1: अच्छा
0: तो उसमें NDFE पर भी हम लोग काफ़ी काम किए थे। हमारे बटालियन ने SSB बहुत अच्छा काम किए थी उसमें। उसमें NDFE कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे। एमुनेशन वगैरह, हथियार वगैरह भी पकड़ाया था। बहुत सारे सीजर हुए थे, नारकोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय। जी
1: अच्छा
0: हाँ,
1: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, GD। GD मतलब जनरल ड्यूटी
0: जनरल ड्यूटी। जी,
1: जी।
0: GD मतलब जनरल
1: तो
0: ड्यूटी।
1: ये
0: हाँ
1: जाहिर है ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीज़ें थी
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए।
1: जी।
0: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का, 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद
1: जी
0: प्रमोशन मेरा हुआ। जी
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने CTC सलोन बारी से आपने शुरुआत करी थी, यहां से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की।
0: सलोनावाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।
1: अच्छा
0: उसके
1: बेसिक
0: बाद
1: ट्रेनिंग,
0: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
1: तो 23 बटालियन
0: हाँ,
1: असम में आपने
0: ट्वेंटी
1: शुरुआत।
0: थर्ड
1: अच्छा
0: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहाँ से
1: अच्छा
0: शुरुआत हुआ। जी
1: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही।
0: हाँ, असम में रहे। फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई। 31st बटालियन गोसाई
1: थर्टी
0: गांव
1: फर्स्ट
0: में हुआ।
1: बटालियन
0: जी जी जी जी
1: अच्छा,
0: जी
1: फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए, और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे।
0: हाँ, 32 बटालियन, उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ, जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था,
1: अच्छा
0: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी, वो रोटेट होके आ गई
1: अच्छा
0: असम में, आ गई हॉली में। जी
1: ओके तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं
0: हाँ, 72 बटालियन सिक्किम युकसुंग में मेरी पोस्टिंग
1: जी।
0: हुई है।
1: अच्छा एक चीज सर हम यहां जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग सही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहां पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रह करके सिर्फ सिक्योर करना है
0: जहाँ जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है,
1: जी।
0: उसमें मेरा
1: जी
0: कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता
1: जी
0: है। जी
1: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था, अपराधी था, जो माइस्ट था, नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, तो वो एक
0: पचास
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट था
0: हाँ, उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये, 50 केस का। उसके पीछे STF वगैरह भी लगी हुई थी।
1: जी।
0: जी हाँ,
1: तो
0: लेकिन
1: ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं।
0: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ, सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा वो, उस चीज को हम याद करते
1: अच्छा
0: हैं। जी
1: तो
0: हाँ
1: ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
0: जी
1: जी, तो इसको आप सबसे ज्यादा याद रखते हैं।
0: जी क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करना पड़ा। टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज पर हम लोग डिस्कस करते, हर छोटे चीज से हर बड़े चीज में।
1: जी
0: जी जी जी
1: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है, या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से।
0: जी जी मेन तो आप सोर्स पर सारा चीज डिपेंड करता है, आपका जो
1: जी
0: सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है, आज के समय में कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन
1: जी
0: ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
1: यानी कि जो जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें
0: हाँ, जो
1: इन्फॉर्मेशन
0: इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, वो
1: जी मिल जाए
0: टेक्निकल जो लॉगर वगैरह है, वो तो दूसरा चीज हो जाता है,
1: जी जी
0: उस पर उतना विश्वास नहीं। लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है, जो वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा। क्योंकि वाल्मीकि नगर वहां जहां था, वहां ना कोई टेक्निकल गजट पहुंचना संभव था, ना कुछ पहुंचना, ना आदमी पहुंचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
1: सर हम एक चीज यहां जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी कि अगर कोई SSB ज्वाइन करना चाहे सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सकें तो।
0: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो अपग्रेडेशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है SSC के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
1: अच्छा तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इंफॉर्मेशन उसकी आती है।

0: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसके बाद फॉर्म मार्केट में भी फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
1: अप्लाई कर सकते हैं।
0: अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं तो
1: जी,
0: आप
1: तो
0: अप्लाई कर
1: ग्रेजुएशन
0: सकते
1: कम
0: हैं।
1: से कम इसका क्राइटेरिया है।
0: हाँ, ग्रेजुएशन क्राइटेरिया।
1: जी
0: जी
1: सर, हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड आरजे साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल ऑफ बिलेविड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद

0: है सर. आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल आवर बिलव्ड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली. सो आई पे माय ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्टफेल्ट ऑबिसियंस टू देम माई सेल्फ. शंकर लोध है फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से. जय हिंद, जय भारत माता की, जय वंदे मातरम. आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर. यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है. तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशन के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए.
1: जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने हैं वो देश की सेवा नहीं कर सकते हैं, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं. अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नजदीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक हैं उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए.
0: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं.
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, तभी हमारा देश, जाहिर है हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं. एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार है ये जयपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको.
1: जय हिंद आपको भी.
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी. ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं. ये
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिलके काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा.
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर के एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें. सर आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया ग्वालदम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इन्फॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है.
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही अपने रिलेटेड चीजें.
1: फोर्स से ही मैंने जी.
0: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर का भी कोर्स किया है सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए.
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स ग्वालदम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं ये कोर्स होता है हमारा. ये
0: अच्छा,
1: कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसी ही कुछ ट्रेनिंग होती है, और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
0: अच्छा
1: खाना. और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है,
0: ओके,
1: कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना है अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है.
0: अच्छा,
1: चलने से लेकर हर चीज. और
0: अच्छा,
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल
0: अच्छा,
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: से कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है. जी
0: पूरा टैक्टिक्स. तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर,
1: जी
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके.
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें. जी जंगल
0: तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरमेंट में अपने आपको ढालना होता है.
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है.
0: अच्छा,
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया, फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है.
0: तो एक लीटर पानी में और वो भी 72 घंटे
1: इस टाइप के ड्रिल. उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
0: अच्छा.
1: हाँ,
0: तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 मंथ का होता है.
0: 1 महीना?
1: जी.
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगा हुआ लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज. मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है.
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सब का भी योगदान रहता है.
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं.
0: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं.
1: हाँ,
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा, मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे

0: तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया, और आपने कहा कि सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल।
1: जी, हाँ तो हो जाता है उसमें।
0: तो कैसे, आप थोड़ा सा बताएं हमें।
1: उसमें क्या होता है ना, बड़ी पेयर में बनाया जाता है, तो 3 लीटर हमारा, 3 लीटर बड़ी पेयर का मेरा।
0: अच्छा,
1: तो हाँ तो उनके 3 लीटर से हम काम चला लिए, बाकी काम उनका।
0: तो सर जंगल में आप हैं उस ट्रेनिंग को लेने के लिए, तो
1: हाँ
0: कैसे रहते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं अपना पूरा दिनचर्या, और फिर रात को कैसे आपकी वो ट्रेनिंग चलती है?
1: वो सब ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है सीनियर पदाधिकारी के द्वारा, उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको पहले बताया नहीं जाता है,
0: अच्छा,
1: अचानक अचानक सब चीज होता है। आप
0: पहले से नहीं बताते हैं?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं, आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके,
1: हाँ
0: एक तरह से ड्रिल ड्रिल
1: ड्रिल ड्रिल, हाँ
0: अच्छा,
1: ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है। जी
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते हैं इतनी
1: अगर
0: जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, उस
0: जी
1: अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो आप तो फंसिएगा, आपके साथ आपकी पूरी टीम फंस जाएगी। एक भी हमारा कार्मिक अगर कहीं किसी ऑपरेशन में फंस जाता है या घायल हो जाता है, नहीं चल पाता है, तो उसके लिए पूरी टीम को रुकना पड़ेगा।
0: यानी कि एक
1: हाँ
0: भी कोई अगर कमजोर पड़ा तो
1: कमजोर
0: पूरी
1: पड़,
0: टीम उससे कमजोर पड़ जाएगी,
1: हाँ तो पूरी टीम को एक जैसा लाया जाता है ट्रेनिंग
0: मोटिवेटेड
1: का।
0: रखना।
1: हाँ ट्रेनिंग का मकसद ही आता है फिजिकल स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंड, फिजिकली मेंटली पूरा टीम वर्क के जैसा, टीम के रूप
0: जी
1: में ही उनको ढाला जाता है।
0: सर, अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाय चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
1: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहां भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कहीं
0: जी
1: भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
0: जी
1: ऑपरेशन काफी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
0: जी
1: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
0: जी
1: जी
0: आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
1: जी जी जी जी
0: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
1: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
0: अच्छा
1: पकड़ना है, जी उसके
0: अच्छा
1: उसके उसके बारे में है।
0: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सकें, वो भी आपने किया हुआ है।
1: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना,
0: जी
1: उसके
0: जी
1: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: जी
0: सर, ये जो अब जैसा हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
1: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो
0: जी
1: खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
0: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
1: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही किए। जी
0: सर, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं, आपको मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं
1: जी,
0: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है, और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद, और फॉरवर्ड करें मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया। सर आपका कोई रिएक्शन?
1: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
0: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बम्हाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
1: जय हिंद आपको भी।
0: आपके सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचर्स और इतनी जोश से भरी हुई कहानियां हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिद आपके साथ।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी

0: दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन AIR। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं?
1: मैं बार बार कहता हूं कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए, जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, वो सब सबका अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही, और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: जी।
1: ये
0: सर, ये किस तरह से होता है, ये इसको हम कैसे अगर डिफ्रेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा।
1: में जो काम भी इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है,
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस
1: जो
0: के लिए
1: अच्छे काम करते हैं, उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा।
0: ओके।
1: उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें 1 स्टार और 2 स्टार वेरियंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा DJ सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है, जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको DG चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन रहे।
0: क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहां काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए हैं, देश सबका है, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर, जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीर्ष पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को, अपने विचारों को व्यक्त करें। ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके SSB में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये हैं सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।

0: जय हिंद आपको भी।
1: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड वन से जय हिंद कह रहे हैं आपको।
0: जय हिंद आपको भी।
1: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा तो एक बार और उनको बता दें कि क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुँचाएं अपने दिल की बात।
0: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं।
1: जी, और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं आप कर रहे हैं, तो आप हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?
0: जी, देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
1: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूं, उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
0: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए, बलिदान के, हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स। आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा। आ गई हैं श्वेता लेकर के सैटेलाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो, दिल से दिल तक।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाची ने कहा कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाईची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से जारी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया कि वे भारत द्वारा 3 दशक से पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के तिरुपति में किए गए राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के अनुरूप था। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई परियोजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजुलपुर में 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की आज घोषणा की। मतदान 30 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़े कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कथित तौर पर अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के

0: ये 2 दिन की विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलिथिन लाओ चाय पाओ नामक एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। बेंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। श्रोताओं, ये लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा शिमला समझौता विषय पर। सुनिएगा वार्ता जिसका विषय होगा वृक्षारोपण में युवा भागीदारी। वार्ताकार होंगी वंदना जोशी। सेगमेंट क्वेस्ट वर्ल्ड में लीजिएगा जानकारी यूएफओ के विषय में। हेल्थ प्लस में मुंह की सेहत और माउथ वॉश पर जानकारी लीजिएगा। साथ ही होगा टिप ऑफ द डे योग अनुकूल आहार। हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक शाम 6:00, जिसमें चर्चा होगी फार्मर रजिस्ट्री विषय पर। साथी होगी वार्ता कृषक फसल करने से पहले बीजों का उपचार कैसे करें। वार्ताकार होंगे सलीम अली खान। साथी जानिएगा मंडी भाव और मौसम का हाल। आनंद लीजिएगा लोक गीतों का। हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें वन महोत्सव सप्ताह के विषय में होगी चर्चा। सेगमेंट होंगे मेरा देश मेरी शान, जानिएगा देश दुनिया के बारे में। लीजिएगा सेहत टिप्स, होगा ज्ञान सागर और आज का प्रश्न। साथ ही आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। श्रोताओं, शाम 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज होगी वार्ता हमारी संस्कृति हमारे वृक्ष। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। फिल्म संगीत का आनंद हमारी श्रोता लेंगे रात्रि 8:00 कार्यक्रम शब्द गीत में। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कंट्री वाइड इनसाइट्स कार्यक्रम, और रात्रि 10:00 प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा।

शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित अभय नारायण मलिक से धमार गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग केदार।

हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीडियम वेव 196 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आज आप सुनेंगे रात्रि 10:45 से आईसीसी महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य कैनिंगटन ओवल लंदन में खेले जा रहे T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। समय याद रखिएगा रात्रि 10:45 से। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम सुर संध्या का, तो आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना आइए सुनते हैं सुरेंद्र कोहली के संगीत निर्देशन में उदय शंकर पाणी का गीत हरिहरण के स्वर में, चार धाम फिल्म से।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सूर्य संध्या में। कार्यक्रम में ये अब सुनते हैं जय माँ वैष्णो देवी फिल्म से ये भक्त रचना अनुराधा पोडवाल और सोनू निगम की आवाजों में। गोपाल शर्मा की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है अमर उत्पल ने।

श्रोताओं, जोधा अकबर फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी बेला शिंदे के स्वर में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था A.R. रहमान ने। श्रोताओं, इन भक्त रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट प्रकीर्णा को। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम करेंगे ढेर सारी काम की बात, लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के साथ। तो बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप? गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तो पानी पीते रहिए और प्रोग्राम का आनंद लेते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की। आज के दिन यानी 2 जुलाई को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की जब भी बात होती है तो एक नाम अक्सर सुनने को मिलता है, जो कि है शिमला समझौता यानी शिमला अग्रीमेंट। ये समझौता क्यों हुआ था और इसका महत्व क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आपसी तनाव को कम करना और भविष्य में शांति बनाए रखना। इसी उद्देश्य से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई। एक ऐतिहासिक बैठक शिमला में आयोजित की गई और 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात इस समझौते की ये थी कि दोनों देश अपने सभी विवादों को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों यानी बायलेटरल टॉक्स के माध्यम से सुलझाएंगे। इसका मतलब ये था कि भारत और पाकिस्तान अपने मुद्दों को किसी तीसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बजाय आपस में बातचीत करके हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी और क्षेत्रीय अखंडता यानी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे। इसके अलावा 1971 के युद्ध के बाद बनी सीज फायर लाइन को नया नाम दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। दोस्तों, शिमला समझौता केवल एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि समय समय पर दोनों देशों के बीच में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आज भी भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा के दौरान इस समझौते का

विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने जाना शिमला समझौते के बारे में। अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही छोटा पर इंटरेस्टिंग सवाल है। हम अक्सर बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, एलियंस हैं या नहीं इस पर खूब चर्चा करते हैं। ऐसे में UFOs का नाम सुन के हमारे कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको UFO का फुल फॉर्म पता है? अगर नहीं पता तो आप पता लगाइए। तब तक हम सुनते हैं फिल्म केदारनाथ का ये प्यारा सा गाना।

0: हैं, ये हम सब देख रहे हैं। आज हम गर्मी और पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं, इसका कारण भी डिफॉरेस्टेशन ही है। लेकिन अभी भी अगर हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ी का शायद कुछ भला हो जाए। और ये तभी होगा जब आज का युवा वृक्षारोपण की जिम्मेदारी लेगा। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं वार्ताकार वंदना जोशी से।
1: बंजर धरती करे पुकार, वृक्ष है धरती का श्रृंगार, वृक्ष लगाओ बार बार। वृक्ष है तो जीवन है, यह संपूर्ण जीवन वनस्पतियों पर निर्भर है। वृक्ष न केवल हमें हवा, पानी, अन्न प्रदान करते हैं, अपितु पृथ्वी के तापमान को संतुलित कर हम पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं। वृक्षों एवं वनों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, और यह महत्व इस बात से पता चलता है कि एक वृक्ष अपने जीवन काल में हजारों लोगों का भरण पोषण करते हैं। पेड़ों से स्वच्छ वायु, फल फूल और जीवन श्वास मिलता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका मन फूलों को देख प्रफुल्लित ना होता हो। एक हरा भरा वृक्ष देखकर मन खुश हो जाता है, हरियाली अपने साथ खुशहाली लाती है। भारत के कई राज्यों में जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड और बंगाल के लोगों की रोजी रोटी पूर्णतः पेड़ों पर निर्भर है। वे लोग पेड़ों को देवता समान पूजते हैं। वनों का, वृक्षों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। वृक्ष मिट्टी को अपनी जड़ों में जकड़े रहते हैं, जिससे भूस्खलन नहीं होता है। वृक्षों के कारण ही वर्षा होती है और धरती माता अपनी गोद से अन्न उत्पन्न करती है। बचपन के वो दिन शायद ही कोई भूले, जब सावन के महीने में नीम के पेड़ में जोर जोर से झूला जाता था। जीवनदायिनी ये वन और वृक्ष धन्य है, जिनके कारण मनुष्य जीवन इतना सरल और इतना सुगम बन पाया है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों जैसे कि असम, मणिपुर में लोग बांस के घरों में रहते हैं, जिससे लोगों के जीवन और संपत्ति को भी क्षति नहीं होती है। सुंदर वन क्षेत्रों के जंगल से उच्चतम गुणवत्ता वाली लकड़ियों का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है, जो नव निर्माण की सबसे बड़ी साक्षी के रूप में उभर कर आ रही हैं। इन्हीं वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जो जीवन चक्र को संतुलित करने में सहयोग देते हैं। सच में पेड़ पौधे अपनी छांव से सबको शीतलता और ठंडक प्रदान करते हैं। जहां वृक्षों का अपना अलग महत्व है, वहीं इनका निरंतर दोहन अत्यंत शोचनीय एवं चिंताजनक है। वृक्षों एवं वनों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और कभी अल्पवृष्टि तो कहीं बाढ़ का कारण बन रही है। वृक्षों एवं वनों की संख्या में लगातार हो रही कमी के कारण कई प्रकार के दुर्गम जीव जंतुओं की प्रजातियां तो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं और कई नष्ट होने के कगार पर खड़ी हैं। वृक्षों एवं वनों के निरंतर हो रहे दोहन से मनुष्य जीवन निरंतर खतरे की ओर बढ़ता जा रहा है। आज मनुष्य पाना तो सब कुछ चाहता है, परंतु वनों को हो रही क्षति से पूर्ण रूप से अनजान है और वह निरंतर इसे काटकर अपने आप को मालामाल और धरती को कंगाल बना जा रहा है। निरंतर वनों की कटाई से मृदा की उर्वरता घटती जा रही है, जंगल खाली होते जा रहे हैं, पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा है। वनों की घटती संख्या के कारण पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता जा रहा है और बर्फ पिघल रही है, जिसके कारण भारी संख्या में पानी समुद्र में मिल रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को रोकने का सबसे कारगर उपाय है वृक्षारोपण। हर मनुष्य को यह प्रण लेना चाहिए कि यदि वह एक वृक्ष काटता है तो उसकी जगह दस लगाए। देश की और इस विश्व की समृद्धि वृक्षों पर निर्भर है। एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान सुख देता है। हम सबका यह कर्तव्य है कि अपनी पृथ्वी को बचाना और उसे संवार कर रखना है। हर दिन वृक्षों का रोपण करना होगा। वनों की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों में, बड़ों में, समाज के हर तबके में जागरूकता का प्रसार करना होगा। सड़क किनारे, घरों में, ऑफिसों में वृक्षों को रोपित करना चाहिए। वनों और वृक्षों के कारण ही हमारा जीवन है और जीवनदानी इन वनों को बचाना हमारा कर्तव्य। आज से यह प्रण लें कि त्योहारों में, जन्म दिवस के मौके पर या किसी भी मौके पर अपनों को वृक्ष देकर पृथ्वी को एक नया जीवन दान दिया जाए। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है।
0: दोस्तों अभी आपने

वेलकम बैक दोस्तों. इन फिल्मी गानों में जो हम हरी भरी वादियों का जिक्र सुनते हैं, अब शायद ही वो इतनी हरी हैं. जंगल कितनी तेजी से खत्म हो रहे हैं.

सुनी वार्ता वृक्षारोपण में युवा भागीदारी वार्ताकार वंदना जोशी से। तो दोस्तों, पेड़ पौधे लगाएं, साफ सफाई रखें, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कॉन्शियसली करें, क्योंकि हमारी पृथ्वी की सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अब अपनी सेहत की बात भी कर लेते हैं। हम अपने चेहरे, बालों और त्वचा का तो खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार ओरल हेल्थ यानी हमारे मुंह की सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि हमारा मुंह ही शरीर का प्रवेश द्वार है। और आजकल का खान पान, सोडा, जंक फूड और तंबाकू सेवन से हमारे दांतों का क्या हाल होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अगर मुंह स्वस्थ रहेगा तो खाना भी अच्छे से चबाया जाएगा और शरीर को पोषण भी बेहतर मिलेगा। दोस्तों, आजकल ओरल हाइजीन के लिए मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। टंग क्लीनर्स, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, फ्लॉस, टीथ वाइटनिंग स्ट्रिप्स, यहाँ तक कि टीथ वाइटनिंग पेन भी। लेकिन साथियों, ये ट्रेंड के लिए तो सही है, लेकिन रेगुलर यूज से हमारे इनेमल को ख़राब भी कर सकते हैं। और इन सब में सबसे पहले आता है माउथ वॉश। ईजी टू यूज़ एंड अफोर्डेबल। बहुत से लोग सोचते हैं कि माउथ वॉश का इस्तेमाल कर लिया तो ब्रशिंग की ज़रूरत ही नहीं। असल में माउथ वॉश ब्रशिंग और फ्लॉसिंग का रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि उनका सपोर्ट है। कुछ माउथ वॉश में फ्लोराइड होता है जो दांतों को मजबूत बनाने और कैविटीज से बचाने में मदद करता है। वहीं कुछ में एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकते हैं और बैड ब्रेथ को भी कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, माउथ वॉश हर किसी के लिए रोज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, बार बार मुंह में छाले होते हैं या लगातार बदबू रहती है, तो बिना सलाह के लंबे समय तक माउथ वॉश इस्तेमाल करने के बजाय डेंटिस्ट से सलाह लेकर आप उनके बताया गया जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये किसी दूसरी समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। और हाँ, अल्कोहल वाले माउथवॉश संवेदनशील लोगों के मुंह सूखने या जलन की वजह भी बन सकते हैं। ऐसे में अल्कोहल फ्री माउथवॉश एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, आज का हेल्थ टिप याद रखिए, दिन में दो बार टूथपेस्ट से ब्रश करिए, रोज़ टंग क्लीनिंग करिए, जहां ज़रूरत हो वहां फ्लॉसिंग करें, खूब पानी पिए और 6 से 12 महीने में एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर माउथवॉश इस्तेमाल करते हैं तो उसे सही कारण और सही तरीके से करें। अब वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आज के सवाल का जवाब। बने रहिए हमारे साथ।

वेलकम बैक दोस्तों. जरा सोचिए, अगर आज रात आप खुले आसमान की ओर देखें और अचानक कोई चमकती हुई गोल आकृति हवा में तेजी से घूमती हुई दिखाई दे तो पल भर में और वो गायब भी हो जाए, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद हमें सारी एलियंस वाली मूवीज याद आ जाएंगी और हम सोचेंगे हमें भी एक जादू मिल जाता है ना. लेकिन ये चमकती हुई गोल चीज आखिर होती क्या है? हम अक्सर इसे UFO के नाम से बुलाते हैं. UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. जी हाँ, यही है आज के सवाल का जवाब. अब जानते हैं आखिर UFO क्या होते हैं. क्या ये सचमुच किसी दूसरे ग्रह से आने वाले यान हैं या फिर इनके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है? दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है. UFO का मतलब एलियन स्पेसक्राफ्ट होना नहीं है. UFO का अर्थ है ऐसी कोई उड़ने वाली वस्तु जिसकी पहचान उस समय नहीं हो पाती. यानी जो चीज़ हमें आसमान में दिखाई दे लेकिन हम तुरंत ये ना बता सकें कि वो विमान है, ड्रोन है, मौसम का गुब्बारा है या कुछ और. कुछ साल पहले वैज्ञानिकों और डिफेंस एजेंसीज ने एक नया शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया, UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना. ये शब्द सिर्फ उड़ने वाली चीज़ों तक सीमित नहीं है बल्कि किसी भी ऐसी असामान्य घटना के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसकी तुरंत पहचान ना हो सके. इतिहास में UFO साइटिंग्स की हजारों रिपोर्ट्स दर्ज की गई हैं. इनमें से कई बाद में वेदर बलून्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, स्पेस डेब्रीज या फिर ऑप्टिकल इल्यूजन निकलते हैं. लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनकी आज तक पूरी तरह से स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है. यही वजह है कि UFO का विषय लोगों को जिज्ञासा बनाए रखता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स इतना विशाल है कि वहाँ जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अरबों गैलेक्सीज और खरबों स्टार्स हैं. ऐसे में कहीं और जीवन हो सकता है लेकिन अभी तक ऐसा कोई पक्का साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो कि ये साबित करे कि एलियन पृथ्वी पर आए हैं. तो जब भी कोई UFO की खबर आती है, वैज्ञानिक सबसे पहले उसकी जांच करते हैं. वो उसकी रडार डेटा, सैटेलाइट इमेज, मौसम की स्थिति और अन्य तकनीकी जानकारी का विश्लेषण करते हैं. दोस्तों, विज्ञान का सिद्धांत है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस. यानी असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण भी होने चाहिए. आज के दौर में सोशल मीडिया पर कई UFO वीडियोस वायरल हो जाते हैं लेकिन हर वीडियो पर तुरंत विश्वास करना सही नहीं है. कई बार कैमरा एंगल, एडिटिंग, CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी या फिर साधारण ड्रोन भी लोगों को भ्रमित कर सकते हैं. इसलिए किसी भी वायरल वीडियो को देखने के बाद हमें क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेंपर अपनाना चाहिए. UFO आज की चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि आज यानी 2 जुलाई को हम हर साल UFO डे मनाते हैं. ये तारीख रोजवेल इंसिडेंट की याद में चुनी गई. माना जाता है कि जुलाई 1947 में रोजवेल के पास एक रहस्यमयी वस्तु गिरने की घटना हुई. शुरुआत में इसे फ्लाइंग डिस्क बताया गया लेकिन बाद में अमेरिकी सेना ने कहा कि वो एक वेदर बलून था. दोस्तों, विज्ञान हमें हर सवाल पूछने की आज़ादी देता है लेकिन साथ ही हर उत्तर को प्रमाण के आधार पर परखना भी सिखाता है. शायद भविष्य में हमें UFO के रहस्यों के और जवाब मिले और शायद नहीं, लेकिन जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच ही हमें नई खोजों तक पहुंचाती है. तो दोस्तों, अपने क्यूरियोसिटी बरकरार रखें, क्या पता आप भी कुछ नया ढूंढ निकालें.

दोस्तों, जब भी हम फिट रहने की बात करते हैं तो अक्सर सब योग करने की सलाह देते हैं, लेकिन योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। और इस लाइफस्टाइल के कुछ नियम भी हैं, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है योग अनुकूल आहार। योग के अनुसार ऐसा भोजन सबसे अच्छा माना जाता है जो शरीर को ऊर्जा दे, मन को शांत रखे और पाचन को आसान बनाए, और इसी को हम सात्विक डाइट भी कहते हैं। इसमें शामिल है ताज़े फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, अंकुरित अनाज, दूध, दही, मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी। इसके विपरीत बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मसालेदार, बहुत ज़्यादा मीठा या प्रोसेस्ड फूड शरीर को भारी महसूस करा सकता है और योग अभ्यास के दौरान आलस्य या असहजता पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सुबह योग करते हैं तो कोशिश करें कि खाली पेट या बहुत हल्का भोजन करके योग करें। वहीं भारी भोजन करने से कम 2-3 घंटे के बाद ही योग करना बेहतर माना जाता है। दोस्तों, आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर फास्ट फूड और इंस्टेंट मील्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए, हमारा शरीर वैसा ही बनता है जैसा हम रोज़ खाते हैं। योग हमें केवल शरीर को स्वस्थ रखना ही नहीं सिखाता, बल्कि भोजन के प्रति जागरूक रहना भी सिखाता है। इसलिए खाना खाते समय जल्दीबाजी ना करें, आराम से बैठकर अच्छी तरह चबा

कर और बिना मोबाइल या टीवी के भोजन करने की आदत भी योगिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों याद रखिए, योग तभी देता है पूरा लाभ जब उसके साथ हो संतुलित और पौष्टिक आहार। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति, स्वस्थ रहिए, संतुलित भोजन कीजिए और हमारी पृथ्वी की सेहत का भी ख्याल रखिए। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, मेरे यानी प्रकीर्णा के साथ। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

0: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी किसान भाइयों बहनों का आपके अपने ग्राम्य लोक कार्यक्रम में। और देखिए, आज आप सबके बीच हाजिर होने का मौका मिला है आपके साथी देवेंद्र को, तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए हमारा राम राम। साथियों, हम देखते ही होंगे कि खेती किसानी के काम काजों में कितनी भागदौड़ रहती है। कभी खेतों की बुआई करवाना, कभी जुताई करवाना, पानी लगाना, कभी कटाई मढ़ाई, इसके अलावा खाद बीज का इंतजाम करना, और कभी किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाना, तमाम तरह के दस्तावेज़ों को इकट्ठा करना, वाकई में बहुत भागदौड़ वाला काम होता है ये। पर जानते हैं, हमारी इसी थकान को और भागम भाग वाले काम को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की है। सीधे सीधे कहें तो अब हमारे खेतों का एक डिजिटल पहचान पत्र बनाया जाएगा, जिससे ना तो बिचौलियों के पास जाने की ज़रूरत होगी और ना ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत। बस एक बार अपने आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल के साथ अपने नज़दीकी कृषि भवन पर जाएं या जनसेवा केंद्र पर जाएं और अपना जो खेतों का पहचान पत्र है वो बनवाएं। वैसे आपको बता दें कि हम भी पहुँचे इसी फार्मर रजिस्ट्री के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए एक कृषि भवन में।
1: साथियों नमस्कार। देखिए, हमारी सरकार जो है हमारे लिए तमाम तरह की योजनाओं लेकर आती है ताकि हमारा और आपका जो जीवन स्तर है वो और बेहतर हो, और इसलिए आज हम इस सिलसिले में हम पहुंचे हैं कृषि भवन में और उप कृषि निदेशक श्री सतीश पांडे सर से हमारी मुलाकात हुई है और हमने उनसे जानने की कोशिश की है कि सर हमारी सरकार इस समय फार्मर रजिस्ट्री को लेकर बड़ा तवज्जो दे रही है, तो आखिर क्या कारण है और हम किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री क्यों करवाना अनिवार्य है।
2: धन्यवाद देवेंद्र सिंह जी, आप आगरा आकाशवाणी से यहाँ फार्मर रजिस्ट्री चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जहाँ पर वन विंडो सिस्टम के माध्यम से इस प्रकार का समझिए कि सभी जो जितनी खतौनी है किसी भी किसान भाई की, वो एक जगह रजिस्टर्ड हो जाएगी और वो एक कार्ड के रूप में आगे चल करके एक कार्ड मिल जाएगा, जैसे आयुष्मान कार्ड, एटीएम कार्ड, उस तरह फार्मर आईडी कार्ड एक किसान को मिल जाएगा। उस आईडी कार्ड से किसान की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, खेती से संबंधित हो, बैंक से संबंधित हो, राजस्व विभाग से संबंधित हो, जो समस्याओं के लिए किसान इधर उधर दौड़ता है, वो ऑटोमेटिक सारे कार्य होते जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री का अगर कृषि विभाग और एलाइड विभाग से अगर आप इसका देखेंगे तालुका, तो बहुत बड़ा महत्व सरकार लेके चल रही है। कृषि विभाग में जैसे उसको निवेश लेना हुआ, बीज हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, जितने सब्सिडाइज योजनाएं हैं, चाहे मैकेनाइजेशन हो या अन्य योजनाएं, प्रदर्शन हुआ, सारी चीजों में जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, उन्हीं किसानों को लाभ मिल पाएगा जिनकी फार्मर आईडी बनी हुई है। और बैंक से अगर आप देखेंगे, जब जमीन आपकी एक जगह हो जाएगी, सारी खतौनी ऑनलाइन हो जाएगी, तो बैंक में बैठा हुआ जो भी वहां पर मैनेजर है, जो देखते हैं उसको, अगर किसान भाई को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है,

0: तो बैंक मैनेजर वहीं से देख लेगा कि किसान के पास कितनी जमीन है, उसकी कितनी लिमिट बन सकती है, वो उसका लोन सैंक्शन या केसीसी बन जाएगी। फाइनेंशियल कोई भी इशू फार्मर आईडी बनने से आसान हो जाएगा, उसको कुछ फाइनेंस कराना है तो किसानों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी।
1: गागर में सागर भरने वाली बात,
0: गागर में सागर भरने की ही बात आएगी। राजस्व विभाग में होता है कभी जमीन कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, नाम चढ़वाना है, वरासत होनी है, ये सारी चीजें फार्मर आईडी बनने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। फार्मर आईडी इसलिए भी अनिवार्य है कि जो भी लाभकारी योजनाएं हैं, आगे चलकर ये भी हो सकता है सरकार निर्णय ले कि जो अन्य विभाग है उनकी भी योजनाओं का लाभ फार्मर आईडी से जोड़ा जा सके, चाहे जो व्यवसाय कर रहा हो या कुछ और क्षेत्र में वो काम कर रहा हो, खेती किसानी से लगभग लगभग हर आदमी जुड़ा हुआ है। फार्मर आईडी उसके लिए बहुत अनिवार्य है। जिन किसान भाइयों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है अभी तक, या किसी कारण से नहीं बन पाई है, चाहे वो नेम मिसमैच हो, अंत निर्धारण हो, वरासत हो या आदेश में नाम हो, वो राजस्व विभाग तहसील से संपर्क करके, लेखपाल से संपर्क करके तत्काल उसको सुधरवा लें और अपनी फार्मर आईडी बनवा लेंगे, तभी जो सरकार की योजनाएं है उसका लाभ उनको दिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, चाहे खाद लेने में, बीज लेने में, वो समस्याओं से अगर आपको बचना है तो फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य है। इसीलिए लगातार सारे जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग, राजस्व विभाग, विकास के विभाग, चाहे वो पंचायत हो या डेवलपमेंट हो, सारे लोग मिल करके किसानों को खोज खोज कर फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है। तो किसान भाइयों से भी मेरा अनुरोध रहेगा को स्वतः जन सुविधा केंद्र पे जाकर के, या कृषि विभाग के जो एम्प्लाई हैं फील्ड लेवल पे उनसे संपर्क करके, या तहसील पे, या जो लेखपाल उनके क्षेत्र के हैं, नए पंचायत लेवल पे या राजस्व गांव लेवल पे, उनसे संपर्क करके अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवा लें।
1: कहना मतलब सर ये है कि बिना फार्मर आईडी के हम लोग अधूरे हैं, हम किसान भाई एक तरह से ये कह सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने कहा जनसेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा हमें उसको बनवाने के लिए, तो जनसेवा केंद्र पर जाएं हम तो किन किन कागजातों को अपने साथ लेकर जाए?
0: जनसेवा केंद्र पे आप जाएंगे, अपना आधार कार्ड जो जरूरत है, उसके बाद आपकी खतौनी, जितनी भी खतौनी है सारी खतौनी वहाँ ऑटोमेटिक, अगर वो आधार से लिंक है तो वो ऑटोमेटिक उठा लेगा वो फार्मर रजिस्ट्री। आधार कार्ड अनिवार्य, आधार कार्ड ले जाइए और अपना रकबा खतौनी लेके जाइए, आपकी फार्मर रजिस्ट्री बन जाएगी।
1: फोटो बैंक पास की
0: फोटो वहाँ तो आप जाएंगे तो रहेगा, अगर जरूरत है तो ले लेगा।
1: अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा कि हमारी फार्मर रजिस्ट्री अपडेट होती है, बन सी है?
0: अभी जो बन रही फार्मर रजिस्ट्री तो वो प्रिंट आउट तुरंत आपको दे देता है कि आपकी फार्मर रजिस्ट्री बन गई है। अगर कोई प्रॉब्लम है जिस कारण से नेम मिसमैच है या नाम में बहुत बड़ा अंतर है या और कोई वरासत नहीं हुई है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वो ऑटोमेटिक पोर्टल पे आ जाएगा कि इस कारण से आपकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पा रही, फिर उसको आपको सही कराना होगा और फार्मर रजिस्ट्री आपकी तत्काल बन जाएगी।
1: जो कमी आ रही है उससे संबंधित अधिकारी
0: हाँ कर्मचारी संपर्क करके वो आप सही करा लेंगे, आपकी फार्मर रजिस्ट्री ओके हो जाएगी। समय सीमा नहीं है, बस सरकार का ही उद्देश्य है और विभाग का भी उद्देश्य है, राजस्व विभाग, कृषि विभाग मिलकर काम कर रहा है कि जनपद में जितने भी या स्टेट में जितने किसान है में जिनके नाम खतौनी है उनकी सबकी फार्मर आईडी बन जाए, फार्मर रजिस्ट्री बन जाए, बस यही उद्देश्य।
1: सम्मान निधि
0: जो पीएम सम्मान निधि के जो लाभार्थी पहले से रजिस्टर्ड हैं उनकी अभी किस्त रोकी नहीं गई है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि किस्त रोकी जा सकती है अगर फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनती। ओपन सोर्स में जो नए रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए, जैसे वरासत हुई तो नए हो जाते हैं, डेथ हो गई, तो नए लोग जो आ रहे हैं उनकी पीएम सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब फार्मर रजिस्ट्री बनी, वो जब जाएंगे और रजिस्ट्रेशन कराने, रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब उनकी फार्मर रजिस्ट्री बनी रहेगी। इसलिए फार्मर रजिस्ट्री बनवाना अनिवार्य है पीएम सम्मान निधि के लिए या अन्य योजनाओं के लिए, जो भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज योजनाएं दे रही है, चाहे जिस प्रकार की योजना है, वो कृषि विभाग हो सकता है, पशुपालन है, उद्यान है, मत्स्य है, सारे विभाग की जितने भी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो एलाइड विभाग है सब में अनिवार्य कर दिया गया है। विशेष तौर से जो फोकस है फर्टिलाइजर भी अब फार्मर रजिस्ट्री पर उपलब्ध किया कराया जा रहा है, इसके लिए भी जो है फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। नहीं, उनकी फार्मर रजिस्ट्री तो नहीं बन सकती, क्योंकि अगर उनके नाम जमीन नहीं है तो फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन सकती। फार्मर रजिस्ट्री उसी बनेगी जिसके नाम जमीन होगी।
1: जैसे मान लीजिए इस जिले में भी उसकी जमीन है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी उसकी जमीन है, तो दोनों जगह अलग अलग बनेगी कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में बनेगी?
0: नहीं, आपकी बात सही है कि जमीन कई जगह लिया है तो फार्मर आईडी तो एक ही बननी है। जिले का अगर मूल निवासी यहाँ का है तो यहाँ पर आएगा, वो खतौनी अगर वो अटैच कराना चाहेगा तो अटैच हो जाएगा,
1: लेकिन बनेगी
0: बनेगी।
1: सर आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी
0: आपने देवेन जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट उठाया फार्मर आईडी, फार्मर रजिस्ट्री जो किसानों के लिए अनिवार्य है। इस समय अगर आप, मुझे केवल यही कहना है कि जो मौसम का इस समय मिजाज है, अब तक मानसून सक्रिय हो जाना चाहिए, था जो सुपर एलिनो के कारण लेट हो रहा है। तो किसान भाइयों से मेरी यही अपील रहेगी कि वो जो अधिक पानी के आने वाली फसलों को का एरिया घटाएं और कम पानी के आने वाले दलहन तिलहन मिलेट्स पर फोकस करें। सारे

0: जनपद में कृषि विभाग द्वारा निःशुल्क मिनी किट मिले से दलहन तिलहन के उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सबका जो है ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद ही लॉटरी के माध्यम से जिसका चयन हो रहा है उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो किसान भाई दलहन तिलहन मिलेट ज्वार बाजरा मक्का इन फसलों को लेना चाहते हैं, जो कम पानी चाहती है, मौसम को मिजाज को देखते हुए वो अपना ऑनलाइन बुकिंग कराएं और बीज प्राप्त करके समय से बुआई करें, जैसे बरसात होती है वो बुआई करें। धान की एरिया को कम करें, दलहन तिलहन और मिलेट ज्वार बाजरा मक्का इन एरिया को बढ़ाएं।
1: तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू देवेंद्र जी।
2: साथियों, उप कृषि निदेशक श्री सतीश पांडे जी ने बड़ी ही सरलता से फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी बातों से हमें अवगत कराया, तो उम्मीद है हम आप फार्मर रजिस्ट्री की उपयोगिता को समझते हुए जल्द से जल्द अपने खेतों का पहचान पत्र जरूर बनवाएंगे, ताकि भविष्य में हमें सरकारी योजनाओं का लाभ निरंतर मिलता रहे। तो योजनाओं का लाभ लगातार आप उठाते रहिए और हमारे साथ आनंद लेते रहिए इस प्यारे से लोकगीत का।

0: साथियों देखिए, खरीफ की बुआई शुरू होने वाली है और कहीं कहीं तो शुरू हो भी गई है। पर जानते हैं भैया, बुआई से पहले हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तभी हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अच्छा, सबसे ज़रूरी काम क्या होता है खेती किसानी में, आप जानते हैं? चलिए हम बता देते हैं, वो होता है स्वस्थ बीज, क्योंकि स्वस्थ बीज ही एक अच्छी फसल की नींव होते हैं। इसलिए नींव को मजबूत करने का सबसे बेहतर जरिया है बीज उपचार। तो आइए, आज हम अपनी चौपाल में फसल बोने से पहले बीजों को कैसे उपचारित किया जाए, इस विषय में विस्तार पूर्वक जानते हैं सलीम अली खान से।
1: किसान भाइयों, जब भी हम किसी भी फसल के बीजों की बुवाई करें तो बीज बोने से पहले बीज उपचार अवश्य कर लें, क्योंकि जब भी हम बीजों को भूमि में बोते हैं तो बीजों को भूमि में उपस्थित कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का सामना करना पड़ता है। यदि इन सूक्ष्म जीवों से हमारा बीज संक्रमित हो जाता है तो बीजों का अंकुरण नहीं होगा, और यदि बीजों का अंकुरण हो भी गया तो वो स्वस्थ पौधों के रूप में विकसित नहीं होते हैं, जिसका असर हमारी उपज पर पड़ता है। किसान भाइयों, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि बीज उपचार क्या है। बीज उपचार बीजों की बुवाई से पहले बीजों को फफूंदी नाशक, कीटनाशक और जैविक उर्वरकों से उपचारित करने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो बीजों को रोगों, कीटों और मृदा में उपस्थित हानिकारक फफूंद के प्रकोप से बचाती है। बीज उपचार बहुत ही सस्ता और सरल उपाय है, जिसका लाभ हमें आगे चलकर अच्छी उपज के रूप में देखने को मिलता है। कई बार देखा गया है कि हमें एक ही बीजों को फफूंदी नाशक, कीटनाशक और जैव उर्वरकों यानी बायो फर्टिलाइजर से उपचारित करना होता है। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले बीजों को फफूंदी नाशक से उपचारित करना चाहिए, इसके बाद कीटनाशक से उपचारित करना चाहिए और अंत में जैव उर्वरकों से उपचारित करना चाहिए, और इस क्रम में हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। किसान भाइयों, हमें सबसे पहले बीजों को फफूंदी नाशक से उपचारित करना है, जिसके लिए आप जैविक फफूंदी नाशक के रूप में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं और रासायनिक फफूंदी नाशक के रूप में थीरम, कैप्टान, कार्बेडाजियम या मैनकोजेब जैसे रसायनों से भी बीज उपचारित कर सकते हैं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ट्राइकोडर्मा या रासायनिक फफूंदी नाशक दोनों में से केवल एक का ही उपयोग करना है। बीज शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा पाउडर 6 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज मिलाते हैं। इस कार्य के लिए एक घड़े में बीज और पाउडर डालकर 5 से 7 मिनट तक खूब हिलाते हैं, जिससे ये ट्राइकोडर्मा का पाउडर बीज के ऊपर चिपक जाता है। बीज भूमि में जमने के साथ साथ ट्राइकोडर्मा भी मिट्टी में चारों तरफ फैलता है और जड़ को चारों ओर घेरे रहता है, जिससे फसल भी अच्छी बढ़ती है और बीमारी भी नहीं लगती है।

अब बात करते हैं रासायनिक फफूंदी नाशक से बीज उपचार करने की। इसके लिए थीरम, कैप्टान, कार्वेडेजम या मैनकोजैब जैसे रासायनिक फफूंदी नाशक का प्रयोग करते हैं। इन फफूंदी नाशक की 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज को उपचारित करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस विधि में बीजों के ऊपर कुछ पानी के छींटे लगाकर हल्का गीला कर लेते हैं। इसके बाद दवाई को बीजों के ऊपर छिड़ककर अच्छी प्रकार से हाथ से मिलाते हैं, जिससे दवाई बीजों के ऊपर अच्छी प्रकार से चिपक जाती है। इसके बाद बीजों की बुवाई कर दी जाती है। किसान भाइयों, बीजों के अंकुरण को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों से बीजों को उपचारित किया जाता है, जिससे दीमक, सफ़ेद गिडार, सूतकृमि, जड़ की सुंडी, कटवर्म आदि से पौधे सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए क्लोरोपाइरीफास की 2 से 5 मिलीमीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहती है, या फिर इमीडा क्लोप्रिड या थाइमेथॉक्साम की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज पर्याप्त रहती है। इसके लिए बीजों के हिसाब से दवाई में कुछ पानी मिलाकर एक घोल बना लेते हैं। बाद में इस घोल को बीजों के ऊपर डालकर अच्छी तरह मिला लेते हैं। इसके बाद बीजों की बुवाई कर देते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर द्वारा बीज उपचारित करने की। जैव उर्वरक ऐसे जीवाणु या सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। ये जैव उर्वरक वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें दलहनी फसलों के बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है और गैर दलहनी फसलों के लिए एजोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है और मिलेट्स वाली फसलें जैसे ज्वार, बाजरा के लिए एजोस्पायरेलम का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस के लिए पीएचबी कल्चर और पोटास के लिए पोटासिक जीवाणु कल्चर से बीजों का उपचार किया जाता है। आजकल मार्केट में 200 ग्राम का जीवाणु कल्चर का पैकेट आ रहा है, जो 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त रहता है। जीवाणु कल्चर से बीज उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ को घोलकर एक चिपचिपा घोल तैयार कर लेते हैं। इस गुड़ के चिपचिपे घोल में 200 ग्राम का एक जीवाणु कल्चर का पैकेट अच्छी तरह मिलाकर बीजों के ऊपर समान रूप से छिड़क देते हैं। इसके बाद हाथ से बीजों को कल्चर में धीरे धीरे मिलाते हैं, जिससे हर बीज के ऊपर कल्चर की एक परत समान रूप से चढ़ जाए। जीवाणु कल्चर से बीजों को उपचारित करने के बाद 15 से 30 मिनट के लिए किसी छायादार स्थान पर सुखा लेते हैं। इसके बाद बीजों की बुवाई कर देते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा आधुनिक नवीनतम जैव उर्वरक पूसा बायोफर्ट, पूसा साइनो न्यूट्रिकॉन और पूसा साइनोफर्ट विकसित किया गया है, जिनकी 10 ग्राम मात्रा से 1 किलोग्राम बीज उपचारित किया जाता है। ये पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इन आधुनिक नवीनतम जैव उर्वरक से बीज उपचारित करने से उपज में 10 से 15% वृद्धि होती है। किसान भाई, आधुनिक नवीनतम जैव उर्वरक से बीजों को उपचारित करके अपनी उपज में 10 से 15% की वृद्धि कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज उपचारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें फफूंदी नाशक से बीजों को उपचारित करना है, उसके 2 घंटे बाद कीटनाशक से बीजों को उपचारित करना है और उसके 2 घंटे बाद जैव उर्वरक से बीजों को उपचारित करना है और हर विधि से बीजों को उपचारित करने के बाद 15 से 30 मिनट तक छाया में बीजों को सुखाना चाहिए।

0: उपचारित बीजों को कभी भी धूप में नहीं सुखाना चाहिए। जैव उर्वरक से बीजों को उपचारित करने के बाद बीजों को जल्द से जल्द बोना चाहिए। बीज उपचारित करते समय हाथ में दस्ताने व चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगा लेना चाहिए। इस प्रकार हमारे किसान भाई बीजों को उपचारित करके अपनी फसल को रोगों व कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी उपज में वृद्धि कर सकते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कृषक फसल बोने से पहले बीजों का उपचार कैसे करें, अभी इस विषय में बड़ी ही उपयोगी जानकारी दे रहे थे सलीम अली खान। तो उम्मीद है हम आप उनके द्वारा जो भी जानकारी या ज़रूरी बातें बताई गई हैं उन पर अमल करेंगे और बीजों को शोधित कर कर ही उसकी बुआई करेंगे। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है और जिसे देखते हुए तापमान में भी गिरावट देखी जा सकती है। जैसे कि बीते हुए 24 घंटों में अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 29 डिग्री सेल्सियस। अब बारिश की संभावना है तो आपके जो भी हमारे आपके ज़रूरी एहतियाती उपाय हैं उन्हें ज़रूर बरतें। और अब चलते हैं मनोरंजन की ओर और आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत।

साथियों, कभी कभी तकरार में भी ना प्यार छुपा होता है, इसलिए जीवन का आनंद लेते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अब अपने साथी देवेंद्र को आज्ञा दीजिए। राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण लोक मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले सभी श्रमिक भाई बहनों को अंजू बाला का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और बताएं साथियों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, क्योंकि अब तो उम्मीद की किरणें दूर दूर तक फैलने लगी हैं और सभी मानसून का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। कभी हवाएं तो कभी बादल, कभी छोटी छोटी बूंदें और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हम सभी को ये एहसास करा रही है कि जल्दी हम सब बारिश का आनंद लेंगे। वैसे जब भी गर्मी और उमस बढ़ जाती है तो कुछ हलचल मौसम में दिखाई देती है और मन का मयूरा नृत्य करने को बेचैन होने लगता है। न जाने कैसे दिल के तार झंकृत हो उठते हैं। और अगर चर्चा भी किसी ऐसे व्यक्तित्व पर की जाए तो क्या कहने। जी हाँ साथियों, हमारे देश की शान और पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले सितार की दुनिया के सरताज पंडित रविशंकर के जीवन पर मेरा देश मेरी शान के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। साथियों, वैसे संगीत में कितनी सुंदरता, कितना ठहराव, कितनी एकाग्रता है। ईश्वर की शक्ति को महसूस करने का साधन संगीत भी है और ये हमारे दिलो दिमाग को सुख और शांति देता है। भारत रत्न पंडित रविशंकर का जन्म 1920 में वाराणसी में हुआ। वैसे साथियों, कभी कभी हम जो कर रहे होते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा करते करते हम कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। पंडित जी भी जब 10 साल की उम्र में अपने भाई उदय शंकर के साथ पेरिस गए, जो प्रसिद्ध नर्तक थे, तब पंडित जी ने अपने भाई की मंडली के लिए सितार बजाना शुरू किया था। फिर 1938 से अलाउद्दीन खान से सितार की शिक्षा ली और पंडित जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1944 में संगीतकार के रूप में सत्यजीत रे के अपू ट्रिलॉजी और रिचर्ड एटनबर्ग के गांधी के लिए संगीत दिया। आपने 1949 से 1956 के बीच नई दिल्ली में आकाशवाणी के संगीत निदेशक के रूप में भी काम किया। साथियों, पंडित जी ने पश्चिमी संगीतकारों के साथ भी काम किया और सितार को पश्चिम में भी लोकप्रिय बना दिया और अपने देश के अलावा कनाडा, यूरोप और अमेरिका में फिल्मों और नृत्य नाटक के संगीत से जुड़े रहे। आप बहुत उदार शिक्षक रहे। आपने मशहूर बैंड बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन को भी सितार सिखाया। आपको दुनिया भर से अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले। आपको मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म विभूषण, द ग्रेमी पुरस्कार और दावोस से क्रिस्टल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आप अमेरिकी संगीतकारों के अंतर्राष्ट्रीय मंच के भी सदस्य थे। आपको सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्वर लिपि के लिए 1983 में जॉर्ज फेटन के साथ ऑस्कर से नवाजा गया और फिर 1999 को आपको

भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपने विजय आनंद के निर्देशक में बनी फिल्म नीचा नगर से फिल्मों में निर्देशन का काम शुरू किया और अनुराधा, गोदान और मीरा फिल्म में संगीत दिया। भारतीय संगीतकार होने के नाते हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आपका योगदान अमर है। आपकी आसमान जैसी खुली सोच और संगीत के सभी कायल रहेंगे। हमें भी हमेशा गीत संगीत को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। ऐसे महान लोगों से हमारे देश की शान है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, गीत से पहले चर्चा में हम पंडित रविशंकर के जीवन पर बात कर रहे थे। संगीत उनकी रग रग में खून की तरह दौड़ता है। वैसे प्रकृति का भी एक अपना संगीत है। झरनों के ऊंचाई से गिरने की आवाज, नदियों की कलकल करती धारा, हवा की सरसराहट, बिजली की गड़गड़ाहट और पक्षियों की बोलियों की कूक, सच में ईश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ बनाया है, उसे धन्यवाद करने के लिए हम भी ये प्रण करें कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक हमने जो भी किया है वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चलिए, अब भी संभल जाए तो बहुत समझो, और अगर अब भी ना संभले तो आने वाली पीढ़ियां हमें दुत्कारेंगी। ऐसा ना हो, इसीलिए तो वन महोत्सव सप्ताह हर साल 1-7 जुलाई तक मनाया जाता है, क्योंकि ये जो समय है ये ऐसा समय है जब हम सब वर्षा ऋतु की तैयारियों में लगे होते हैं, ताकि वर्षा का जल बेकार ना बह जाए, और साथ ही मौसम भी थोड़ा थोड़ा सुहावना होने लगता है, और सप्ताह भर में तरह तरह के कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वनों के कटने से होने वाले नुकसानों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इससे संबंधित सभी कार्यक्रम प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। तो चलिए, आप भी दिमाग में कसरत उस पर उसको लगा दीजिए दिमाग को, और आज के प्रश्न के अंतर्गत बताइए कि वन महोत्सव सप्ताह किस वर्ष से मनाने की शुरुआत हुई थी। वैसे हरियाली के बिना जीवन कितना अधूरा लगता ना, बस यही हमें नहीं होने देना है। वैसे साथियों, अगर हर कोई साल में एक पेड़ भी लगाए तो कितने पेड़ हो जाएंगे और हवा शुद्ध हो जाएगी। साथियों, ये सप्ताह हम सब के लिए एक उत्सव के समान है, जिसमें हम वर्षा ऋतु के स्वागत की तैयारियां करते हैं और मिलजुल कर पेड़ लगाने, प्रकृति के बारे में जानने, बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में समझाने, उन्हें पानी की बचत, पेड़ों के महत्व, पशु पक्षियों के महत्व, शुद्ध वायु और साफ सफाई के बारे में समझाकर दिल को कितना चैन मिलता है। ऐसा लगता है हम प्रकृति माँ की सेवा कर रहे हैं। वैसे साथियों, ये वन महोत्सव पूरे देश में इस सप्ताह में जोर शोर के साथ मनाया जाता है। तो साथियों, आप भी ध्यान दे लीजिए कि कौन कौन से पेड़ कहाँ कहाँ लगाने हैं, ताकि बारिश में पेड़ों को खूब पानी मिले। और अब आपको सवाल का जवाब भी दे देते हैं। तो सवाल था कि कब से वन महोत्सव सप्ताह को मनाना शुरू हुआ था, तो बता दें कि 1950 से ही इसकी शुरुआत हुई, और इसका जो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर धरा को धानी रंग से रंग दिया जाए।

साथियों, गीत से पहले ज्ञान सागर में आपने वन महोत्सव सप्ताह के बारे में जाना, और क्योंकि आज गुरुवार है तो खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा देश दुनिया के अंतर्गत। तो चलिए साथियों, पहली खबर बहुत खुशी की है, खास तौर पर हमारे उन बेरोजगार साथियों के लिए जो रोजगार तो चाहते हैं।

0: अभी कुछ व्यवस्था नहीं बन पाई है। साथियों, मनरेगा योजना के बारे में तो आप सभी जानते हैं, अब इसका नाम बदलकर VBG राम जी कर दिया गया है और आपको लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। पहले आपको 100 दिन का रोजगार गारंटी से दिया जाता था और अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी है और सुरक्षा के साथ समय पर भुगतान की भी गारंटी पूरी है। श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय विभागों और उपक्रमों में ठेका श्रमिकों को भी समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया है। और साथियों, एक और खबर ये है कि अब सिलेंडर 180 रुपये सस्ता हो गया है, लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं है बल्कि उन व्यवसायिक लोगों के लिए है जो इससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जैसे रेस्तरां चालक, ढाबा चालक, होटल चलाने वालों के लिए भी ये खुशी की खबर है। साथ ही अगर आप कभी बाहर कुछ खाते हैं या बाहर कुछ अलग सा खाने का मन होता है तो जाते हैं, तो वो भी आपको कुछ कम दाम पर मिलेगा, क्योंकि सिलेंडर की कीमत बढ़ने से खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई थी ना। तो आपको ये दोनों खबरें कैसी लगी, तो इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए और आप इसका ज़रूर लाभ भी लीजिए।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: और साथियों, चलते चलते अब बचे हैं सेहत टिप्स, तो वो बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ रहना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो साथियों, आजकल ये बहुत समस्या देखने में आ रही है कि हर एक को पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, खाना अच्छे से पचता नहीं है, कभी गैस, कभी एसिडिटी, कुछ ना कुछ ऐसा ही चलता रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी सुबह और अपनी रात, इन दोनों समय पर दो ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे आपका पूरा दिन अच्छे से बीते और आप स्वस्थ रहें। तो सुबह आपको क्या करना है कि एक चम्मच सौंफ लेनी है जो कि आपको रात में भिगोकर रखनी है एक गिलास पानी के अंदर, और सुबह उस पानी को गुनगुना कर लेना है, उसमें उसको छान लेना है और फिर उसमें नींबू और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर उसको पी जाना है। इससे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है, गैस एसिडिटी की समस्या भी हल होती है और शरीर हल्का फुल्का आपको महसूस होगा। और साथियों, रात के समय आपको क्या करना है कि एक चम्मच जीरा और एक चम्मच अजवाइन दोनों को मिलाकर तवे पर भूनकर गुनगुने पानी से रात को खाने के बाद लेना है, लेकिन ये याद रखें कि आप छोटा ही चम्मच इस्तेमाल करें। इन दोनों को रात को खाने के बाद लेना है जिससे आपको चैन की नींद आएगी और पेट में किसी तरह की आपको समस्या नहीं होगी। और अब क्योंकि चलते चलते आपको एक गीत हम सुनवाते ही हैं, तो चलिए सुनिए ये मधुर गीत।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। हमारा अगला प्रसारण आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त हो चुका है कार्यक्रम विविधा का। कार्यक्रम विविधा में आइए सुनते हैं वार्ता, हमारी संस्कृति हमारे वृक्ष। वार्ताकार हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा।
1: भारतवर्ष विश्व का प्राचीनतम देश है, अतः भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। यहाँ समय समय पर देवी देवताओं की पूजा तो होती ही रहती है, उनके साथ साथ पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों, जड़ चेतनों की भी समय समय पर पूजा होती रहती है। वृक्षों में चेतनत्व तो है ही, साथ ही ब्रह्मत्व के दर्शन भी हमें होते हैं। ऐसी निराली हमारी संस्कृति है, हम समय समय पर वृक्षों की पूजा भी करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का पूजा जाना मात्र अंधविश्वास ही नहीं है, यह वृक्षों की महत्ता के प्रति हमारे पूर्वजों की जागरूकता का प्रमाण भी है। वृक्षों में दिव्य और उपयोगी शक्तियां हैं। दिव्य और उपयोगी शक्तियों के प्रति पूज्य भाव से ओतप्रोत रहना स्वाभाविक ही भी है। भारतीय साहित्य में इसके निदर्शन भरे पड़े हैं। यजुर्वेद में वृक्षों को नमन करते हुए कहा गया है, वृक्षेभ्यः हरिकेशेभ्यो पशुनाम पतये नमः। अर्थात हरे केशों वाले वृक्षों को जो प्राणियों की रक्षा करते हैं नमन है। इसमें वृक्षों को मानवीकरण करते हुए उनकी उपयोगिता बताई गई है। इनके वैज्ञानिक महत्व को हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही परख लिया था, तदनुसार ही उनके उपयोग तथा स्थान तक निर्धारित कर लिए थे। यथा तुलसी का पौधा घर के आंगन में और नीम का पौधा घर के बाहर लगाया जाता रहा है। पीपल के महत्व को भी बहुत पहले ही विशेष रूप से पहचाना गया। वह सर्वाधिक ऑक्सीजन गैस निस्सृत करता है, जो पर्यावरण की शुद्धि में सहायक है। पीपल का वृक्ष हरि का स्वरूप भी माना गया है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में वटवृक्ष भी देव वृक्ष है। वटवृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन विष्णु तथा अग्रभाग में देवादिदेव शिव स्थित रहते हैं। देवी सावित्री भी वट वृक्षों में प्रतिष्ठित रहती हैं। वट मूले स्थितो ब्रह्मा, वट मध्य जनार्दन, वटाग्रे तो शिवो देव, सावित्री वट संश्रिता। इसी अक्षय वट के पत्र पुटक पर प्रलय के अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को प्रथम दर्शन दिया था। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम वालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। प्रयागराज में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षयवट प्रतिष्ठित है। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने संगम स्थित इस अक्षयवट को तीर्थराज का छत्र कहा है। संगम सिंहासन सठी सोहा, छत्र अखयवट मुनि मनु मोहा। हमारी संस्कृति में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। वैसे तो हर माह में तुलसी का सेवन कल्याणमय कहा जाता है, किंतु कार्तिक मास में तुलसी की आराधना का विशेष महत्व है। एक ओर आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी को रोगहर कहा गया है, वहीं दूसरी ओर यह यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। तुलसी वन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। भगवती तुलसी विष्णु प्रिया कहलाती हैं। भारतीय संस्कृति में आंवला पूजन का भी महत्व है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले के वृक्ष के पास बैठकर पूजन का विधान है। कार्तिक मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे कार्तिकेय की कथा का श्रवण करती हैं। इसके पश्चात ही कुमारों, कुमारियों एवं ब्राह्मणों को आंवला वृक्ष के नीचे विधिवत भोजन कराया जाता है। यदि कार्तिक मास को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विदित होता है कि अश्वत्थ पूजा, तुलसीवन पालन एवं पूजन, आंवला वृक्ष का पूजन आदि से पर्यावरण शुद्ध होता है और मनुष्य प्रकृति प्रिय बनता है। हमारे देश के ब्रज क्षेत्र में छौकर का वृक्ष पाया जाता है। छौकर के वृक्षों का महत्व

बल्लभ संप्रदाय में अधिक माना गया है। सर्वश्री वल्लभाचार्य जी और विट्ठल नाथ जी ने ब्रज में जो धार्मिक प्रवचन किए थे, वे प्रायः इन्हीं वृक्षों के नीचे बैठकर हुए थे। उनकी अधिकांश बैठकें भी इन्हीं वृक्षों के नीचे बनी हुई हैं। तमाल के वृक्ष भी अनेक लीला स्थलों पर मिलते हैं। इसका उल्लेख ब्रज के भक्त कवियों ने कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों में किया है। उन्होंने श्री कृष्ण के सांवले रंग की उपमा तमाल से देकर इस वृक्ष का महत्व और भी बढ़ा दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में अनेक वृक्षों की पूजा का विधान है और वह सब सार्थक है। वृक्ष हमारी संस्कृति में रचे पचे हैं। हमारी संस्कृति त्यागमयी संस्कृति है। इसी प्रकार वृक्ष भी स्वयं कुछ ग्रहण नहीं करते। जिस प्रकार कोई भी नदी स्वयं के लिए जल का संचय नहीं करती, उसी प्रकार वृक्ष भी स्वयं ही अपने फलों का भक्षण नहीं करते। कहा भी गया है, वृक्ष का

0: क्लांति। वृक्ष हमारी थकावट को दूर तो करते ही हैं, हमें शीतल छाया भी प्रदान करते हैं, चाहे भले ही वह स्वयं आतप को झेलते हो। महर्षि चरक की चरक संहिता में पेड़ पौधों के औषधीय महत्व की गहन विवेचना की गई है। इसमें प्रत्येक पेड़ पौधों को जड़ से लेकर पुष्प, पत्ते और अन्य भागों के औषधीय गुणों और उनसे रोगों के उपचार की विविध विधियां वर्णित हैं। विषैला पौधा आक भी फोड़े फुंसी के उपचार में सहायक होता है। बहुत से पौधों के पुष्पों एवं फलों से भी हमारी संस्कृति में पूजा का विधान है। कदंब का पुष्प चित्त को एकदम मादक बना देता है। यह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पुष्प है। गुलाब, चंपा, चमेली, जूही, बेला, रातरानी, केवड़ा, कुंद, कमल, कनेर आदि के पुष्पों से देवी देवताओं की पूजा का विधान है। इस प्रकार हमारी संस्कृति में हमारे पौधों का विशेष महत्व है। कड़वा नीम भी दांतों को निरोग रखने में तथा अनाज को घुन से बचाने में सहायक है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे वार्ता हमारी संस्कृति हमारे वृक्ष। वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: चढ़ावा मामले में जांच के लिए एसआईटी आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीबीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले दो दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में आज एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। अधिवक्ता संघ का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर नामों में बदलाव भी किया जा सकता है।
2: अभी एफआईआर लिखने की बात चल रही है। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर कॉपी नहीं मिलेगी तो आगे बढ़ेगा।
1: तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आज तिरुपति में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 151,282 करोड़ रुपया।
0: इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वीबीजी रामजी योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीब को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का सशक्त माध्यम बनेगी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी।
4: पहले वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती, लेकिन विकसित भारत जी रामजी में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का काम किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत बनाएंगे और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश भी बनाएंगे। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत जी रामजी के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत आगामी योजना, अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित ग्राम सभा बने।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। महोत्सव में 7 श्रेणियों और 56 वर्गों में लगभग 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के उद्यान कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उद्यान मंत्री ने बताया कि महोत्सव में मेजबान उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान

0: राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभाग के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक हिस्सा लेंगे।
1: यह महोत्सव राज्य भर के किसानों को, देश के विभिन्न राज्यों के किसानों को और दुनिया के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके इस लखनऊ की पावन भूमि पर दुनिया में आम के ग्रोवर्स क्या क्या काम कर रहे हैं हमारे राज्य के किसानों को पता चलेगा। भारत के भीतर दूसरे राज्य के किसान आम को बेहतर तरीके से क्या क्या प्रसंस्करण कर रहे हैं ये पता चलेगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 का आज पहला दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और 4 जुलाई की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, जौनपुर सहित प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र पर परीक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष ने कहा कि शासन और आयोग इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष तथा शुचितापूर्ण ढंग से कराने के लिए संकल्पित हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।
2: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: प्रदेश सरकार ने लगातार 7वें वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि ये निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
4: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है।
3: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के लिए SIT आज दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG राम जी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी योजना। शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET का पहला दिन आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न। 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्रों पर अगले 2 दिनों तक होगी परीक्षा। और प्रदेश में मॉनसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। स्याही से लिखी हर सच्ची कहानी बन जाती है आने वाली पीढ़ियों की निशानी। मैदान में खिलाड़ी जीतते हैं सम्मान और खेल पत्रकार पहुंचाता है जन जन तक उसकी पहचान। जी हाँ साथियों, किसी खिलाड़ी की जीत केवल एक पदक नहीं, उसके पीछे वर्षों का तप, अनुशासन, त्याग और अथक परिश्रम छिपा होता है। उस अनदेखे संघर्ष को समाज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं हमारे खेल पत्रकार। और श्रोताओं, आज है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, तो इसी विषय पर आज हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आज है विश्व खेल पत्रकारिता दिवस और ये दिवस समर्पित है हमारे उन पत्रकारों को जो खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके सपनों, उनकी मेहनत और उनकी उपलब्धियों को दुनिया तक पहुंचाते हैं। ये दिन उन खेल पत्रकारों को सम्मान देने का है जो खेल की हर जीत, हर संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी को करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। कलम हो या कैमरा, जब साथ साथ चलते हैं तभी खेल का हर पल इतिहास बनता है।
1: क्या पागल हो गया यार हमारा कैप्टन। यू आर नॉट कैप्टन, यू द वर्ल्ड कप, यू द

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे खेल पत्रकारिता दिवस के विषय में। खेल पत्रकारिता केवल समाचार देना नहीं बल्कि खिलाड़ियों की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। एक निष्पक्ष और जिम्मेदार खेल पत्रकार खेलों को नई पहचान देता है और युवाओं को प्रेरित करता है, और इन्हीं पत्रकारों के जरिए हम खेल जगत की हर उपलब्धि से जुड़े रहते हैं।

दोस्तों, आज के डिजिटल युग में खेल पत्रकारिता का दायरा बहुत ही व्यापक हो गया है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कई माध्यम से खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर हम सभी यानी दुनिया के सामने होती है। कलम की ताकत जब खेल से जुड़ जाती है, हर जीत की गूंज दुनिया तक पहुंच जाती है। जो खिलाड़ियों के सपनों को शब्दों में ढालते हैं, वही तो खेल पत्रकार कहलाते हैं।

दोस्तों, आज के दिन आइए नमन करें उन खिलाड़ियों को भी जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत का नाम विश्व में रोशन किया और संकल्प लें कि खेलों का सम्मान करेंगे, खिलाड़ियों के संघर्ष को समझेंगे, सत्य और निष्पक्ष पत्रकारिता का सम्मान करेंगे, खेल भावना को जीवन का हिस्सा बनाएंगे। सच की कलम, निष्पक्ष विचार, यही है पत्रकार का सबसे बड़ा श्रृंगार। खेलों का सम्मान बढ़ाते रहें, भारत का गौरव जग में फैलाते रहें।

दोस्तों, खेल केवल शरीर को ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाते हैं। लेकिन यदि इन उपलब्धियों को दुनिया तक पहुंचाने वाला कोई ना हो तो कई प्रेरक कहानियां अधूरी रह जाएंगी। जीत की चमक तो सबको दिखाई देती है, संघर्ष की राह कम ही नजर आती है। जो उस संघर्ष को शब्दों में अमर कर दे वही खेल पत्रकारिता कहलाती है। तो श्रोताओं, चलते चलते बस इतना ही कहेंगे, कलम जब सच का साथ चलती है तो इतिहास लिखा जाता है, खेल जब जुनून से खेला जाता है तो राष्ट्र का गौरव बढ़ जाता है। और श्रोताओं, इन्हीं चंद बातों के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। कल फिर मिलेंगे इस वादे के साथ, एक नए विषय के साथ और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8 बजने को है, अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। श्रोताओं ये सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम शब्द गीत, जिसमें आप सुनेंगे एक ही शब्द पर आधारित फिल्म संगीत, और आज का शब्द है मौसम। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, पाकिजा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। कमाल अमरोही की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है गुलाम मोहम्मद ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं।

0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम शब्द गीत में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। खयान के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

श्रोताओं, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से ये गीत आपने सुना, अनवर और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में। गुलजार की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था खयाम ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक, मनहर उदास और साथियों को जानवर फिल्म में।

0: श्रोताओं, द ट्रेन फिल्म से ये गीत आपने सुना मिठुन की आवाज में। सईद कादरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था मिठुन ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। गीत और संगीत राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में इसके गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र रावल ने।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: जब पुलिस एटिंग करके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस को उसमें दिख।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपके हैं कौन फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। रविंद्र रावल की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था राम लक्ष्मण ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही कार्यक्रम शब्द गीत यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए एक बार फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का और सुनते हैं चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत भूतनाथ फिल्म से हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में भूल भुलैया फिल्म से ये गीत आपने सुना, श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी प्रीतम ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज आपने सुना भूतनाथ और भूल भुलैया फिल्म के गीत। आवाजें थीं श्रेया घोषाल, एमजी श्री कुमार और हरिहरन और सुखविंदर सिंह की। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के

0: कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
0: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
0: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
1: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र

0: मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरलम में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवान और बालतल के

0: पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर सीसीटीवी निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Center launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, when Japan's expertise and investment combined with India's speed and scale, the entire world benefits. He said both sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said India and Japan today reached agreements on several areas, such as

0: convoy which departed from Bhagwati Nagar Yatri Nivas in Jammu in the wee hours today crossed into the valley this afternoon under a multi-tier security cover. The first batch comprises of 4,822 Yatris, of which 2,510 are scheduled to trek via Pahalgam route, while 2,312 will take Balthal route early tomorrow morning. Upon reaching the base camps, the Yatris were accorded a warm welcome by the officials of the administration and local residents. Meanwhile, elaborate security arrangements have been made across both routes to ensure smooth and safe conduct of the Yatra. Additional deployments of police, paramilitary forces and army jawans have been stationed along the entire route. In addition, comprehensive arrangements have been put in place, including the establishment of medical facilities, real-time weather monitoring systems and quick response teams at critical locations. Besides extensive CCTV surveillance, RFID-based tracking systems for pilgrims and their vehicles have also been installed. Ishfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
1: The southwest monsoon has further advanced into the entire Delhi, some more parts of Gujarat, remaining parts of Uttar Pradesh, most parts of Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan. IMD has issued a red alert for heavy rainfall in the parts of western and central India for the next 2 to 3 days. However, in Delhi, the sky is likely to remain cloudy with the possibility of light rain over the next 24 hours. In view of continuous rainfall in Uttarakhand's Pithoragarh district, the administration has suspended the issuance of inner line permits for the Adi Kailash and Om Parvat Yatra to ensure the safety of pilgrims. On to sports. In the FIFA World Cup, Spain will face Austria in a round of 32 match at Los Angeles Stadium in Inglewood tonight. In other round of 32 matches, Portugal will clash with Croatia in Toronto, while Switzerland will take on Algeria in Vancouver tomorrow morning. Earlier, Belgium advanced to the round of 16, beating Senegal 3-2 this morning. Co-hosts US also progressed to the round of 16, beating Bosnia and Herzegovina 2-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's speed and Japan's expertise will work as driving force for global growth. Holds talks with Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi. India and Japan announce energy partnership to strengthen strategic oil reserves and maritime transport resilience. Government to expand oil refining capacity to 300 million metric tons per annum in next 1 year amid West Asia crisis. Centre launches Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. IMD issues red alert for heavy rainfall in parts of western and central India for next 2 to 3 days. And in FIFA World Cup, Spain to take on Austria in round of 32 match in Los Angeles tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगे। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपने हममनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले एक साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मेट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैन अवी हवाई अड्डों पर इबोला की जाँच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात लॉस एंजलिस में राउंड ऑफ 32 के मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के ताल्लुकात हकीकी तौर पर बहुत खास हैं और इक्तिसादी शराकतदारी की कामयाबी की बहुत सी शानदार मिसालें मौजूद हैं। आज शाम नई दिल्ली में भारत जापान मुश्तरका इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जब जापान की महारत और सरमायाकारी भारत की रफ्तार और पैमाने के साथ यकजा होती है तो पूरी दुनिया को उससे फायदा होता है।

0: उन्होंने कहा कि आज दोनों फरीकों ने शराकत दारी को और ज्यादा गहरा और मजबूत करने का फैसला किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत और जापान ने इक्तिसादी तहफुज, मसनूई जहानत, दिफा और सेहत जैसे बहुत से शोबों में आज समझौते किए हैं जो इस शराकत दारी को मुस्तकबिल के लिए और लामहदूद बनाएंगे।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
0: जापान की वजीर आजम सनाई तकाइची ने अपने खिताब में कहा कि तआवुन के बहुत से शोबों के माबेन तवानाई का तहफुज इंतहाई अहम शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि हालिया G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तवानाई के तहफुज को मुस्तहकम करने के लिए 3 तजावीज पेश की थी ताकि पैदावारी और सारिफीन मुल्कों के दरमियान आजाद और शफाफ तवानाई की तिजारत करने, तवानाई के जामे जखीरे का ऐलान करने और तआवुन को फरोग देने को यकीनी बनाया जा सके। मोहतरमा तकाइची ने कहा कि पावर एशिया इनिशिएटिव इस नजरिए को ठोस कार्रवाई में बदलने के लिए काम कर रहा है। इस मौके पर दोनों वज़राए आज़म ने हरियाणा के शहर खारखोदा में मारुति सुजुकी की गाड़ी तैयार करने की चौथी फैक्ट्री का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इससे कबल भारत और जापान ने आज मुख्तलिफ शोबों में समझौतों का तबादला किया। इनमें इक्तिसादी और तवानाई का तहफुज, अदविया और मसनू जहानत के शोबे शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर नई दिल्ली में अपनी जापानी हममनसब सनाई तकाइशी के साथ सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस सतह की बातचीत की। ये चोटी कॉन्फ्रेंस बाहमी ताल्लुकात के मुकम्मल शोबों का इहाता करने और उन्हें दवाम बख्शने की गरज से दोनों मुल्कों के लिए मौका फराहम करने के साथ साथ बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर नजरियात का तबादला करने का मौका भी फराहम करती है। बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि आज के दौर में भरोसा सबसे बड़ा असासा है और भारत और जापान की बाहमी शराकतदारी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने उजागर किया कि भारत और जापान आज दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शामिल हैं और एक आजाद और खुला भारत बहरुल काहिल दोनों ममालिक के लिए एक मुश्तरका तरजीह है।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात को तस्लीम किया कि ये ताल्लुक एतमाद पर मबनी है और आज की मसरूफियात के दौरान एतमाद नुमाया तौर पर देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज की मसरूफियात में तवानाई के तहफुज और इक्तिसादी तहफुज समेत शोबों में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। आज भारत और जापान ने खाम तेल की जामे जखीरा अंदोजी, पेट्रोलियम रिजर्व के तरीक़ेकार और समुद्री तवानाई की नकलो हरकत के अखदारी सिलसिले से मुतालिक तआवुन को और गहरा करने से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी जापानी हममनसब सनाई तकाइची के दरमियान आज तीसरे पहर नई दिल्ली में सालाना सरबराह सतह की बातचीत के बाद इस इत्तेफाक का ऐलान किया गया। दौरे के नतायज से मुतालिक तफसीलात फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान तबादले ख्याल में तवानाई की लचक एक कलीदी मौजू रहा। भारत की पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत और जापान की इक्तिसादी तिजारती और तवानाई की लचक से मुतालिक सनद की वजारत के जरिए जारी एक मुश्तरका बयान के मुताबिक फरीकैन ने मौजूदा जुग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के माबेन तवानाई की लचक को मुस्तहकम करने की गरज से एशिया में जिम्मेदार मुल्कों और तवानाई इस्तेमाल करने वाले बड़े ममालिक के तौर पर काम करने के मुश्तरका इरादे का इजहार किया। तवानाई की नकलो हमल से मुतालिक दोनों ममालिक ने तेल और गैस के लिए लचकदार समुद्री लॉजिस्टिक्स की अहमियत पर जोर दिया और समुद्री तवानाई की नकलो हमल के जारी सिलसिले

0: में मुश्तरका सरमायाकारी समेत तआवुन के मौके की जस्तजू करने से इत्तेफाक किया। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि जापान के साथ भारत की जामे शराकतदारी में सरमायाकारी एक कलीदी उंसुर के तौर पर उभरी है और तवक्को है कि बाहमी ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। एक निजी टेलीविजन चैनल के जरिए मुनाकिदा शेपिंग द एशियन सेंचुरी से मुतालिक भारत जापान जामे मुजाकिरात से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की हुनरमंद अफरादी कुव्वत के लिए मौके खुल रहे हैं, जबकि हुकूमत की तवज्जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबके लिए यकसां तरक्की को यकीनी बनाने पर मरकूज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में मुल्क की रिफाइनरी की सलाहियत सालाना 300 मिलियन मैट्रिक टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 साल के वक्फे के बाद पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कायम की जा रही है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान सूरत हाल से निमटने की भारत की कार्रवाई के बारे में जनाब पुरी ने कहा कि तवील अरसे तक हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कंट्रोल किया है, नीज इन पर आयद महसूलात को कम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों के मफाद को हमेशा तरजीह देती है और उन पर तवज्जो मरकूज रखती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 4 साल में पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 5.58% का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमतों में ये इजाफा 6.23% रहा। सारिफिन के लिए तेल की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ और हुकूमत के मालियाती निजाम ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने आज मुल्क भर के बैन अलावामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया। ये जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल DGHS और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL के इश्तराक से तैयार किया गया है। इसका मकसद सेहत, इमिग्रेशन और निगरानी करने वाले इदारों के दरमियान बरवक्त राबता कायम करके खतरे से दोचार मुसाफिरों की फौरी शिनाख्त करना और बैन अलाक़वामी मुसाफिरों की सेहत की निगरानी को मजीद मौसर बनाना है। एयर सुविधा 2.0 में मुकम्मल तौर पर कागज से मुबर्रा और बगैर जिस्मानी राबते के सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया निजाम मुतारिफ कराया गया है। नए निजाम के तहत बैन अलाक़वामी मुसाफिर अपनी आमद से 24 घंटे पहले ऑनलाइन तरीके से सेहत से मुतालिक खुद ऐलानिया फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे इमिग्रेशन की कार्रवाई तेज होगी और हवाई अड्डों पर सेहत की जाँच भी आसान और मौसर तरीके से अंजाम दी जा सकेगी। अमला अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मजनू जहानत अब सिर्फ एक मुतबादल नहीं रह गई है, बल्कि ये अच्छी हुक्मरानी का एक अहम सुतून है। उन्होंने दानिशमंदी के साथ AI के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया। आज से पहर जयपुर में 29वीं कौमी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के लिए इंतजामी सोच में बुनियादी तब्दीली की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अकीदतमंदों का पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजाम के साथ जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में वाके नुनवान और जिला गांधरबल के बालतल बेस कैंप से कैंप पहुंच गया है। जम्मू से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए इस 57 रोजा यात्रा को लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने सुबह सवेरे झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का बाजाबता आगाज कल से होगा और ये 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भगवती नगर जम्मू के यात्री निवास से आज अल सुबह रवाना हुआ श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला काफिला सख्त सिक्योरिटी के बीच आज दोपहर वादी पहुंच गया। ये काफिला 4,822 यात्रियों पर मुश्तमिल है। इनमें 2,510 यात्री पहलगाम जबकि 2,312 यात्री बालतल के रास्ते कल सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना होंगे। बेस कैंप पहुँचते ही इंतजामिया के अफसरान और मकामी लोगों ने यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल किया। यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए दोनों रास्तों पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। यात्रा के पूरे रास्ते पर पुलिस, नीम फौजी दस्तों और फौज के इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है। इसके अलावा तिब्बी खदमात की फराहमी, मौसमी हालात की निगरानी की सहूलियात के अलावा हसास मकामात पर क्विक रेस्पॉन्स टीम्स को भी

0: मामूर किया गया है। अलावा अजी यात्रा के रूट्स पर सीसीटीवी कैमरे और यात्रियों नीज गाड़ियों के लिए आरएफआईडी ट्रैकिंग निजाम भी नस्ब किया गया है। उर्दू खबरों के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
1: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के पेश नजर इंतजामिया ने आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करने मंसूख कर दिए हैं ताकि यात्रियों के तहफुज को यकीनी बनाया जा सके। धारचूला के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने कहा कि इंतजामिया मौसम के हालात का जायजा लेकर परमिट फिर से जारी करने पर गौर करेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून मजीद आगे बढ़ते हुए पूरी दिल्ली, गुजरात के मजीद इलाकों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, मध्य प्रदेश के बेशतर इलाकों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। मौसमियात के महकमे ने मुल्क के मगरबी और वसी इलाकों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, वस्ती महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में गर्म और हब्स वाला मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। गुजरात में मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर ली है जिसकी वजह से 109 तालुका में तेज बारिश हो रही है। खास तौर पर सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में जूनागढ़ जिले के मंगरौल में आज रियासत भर की सबसे ज्यादा 8 इंच तक की बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात खित्ते के नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के एक मैच में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। राउंड ऑफ 32 के दीगर मैचों में टोरंटो में पुर्तगाल का सामना क्रोशिया से होगा, जबकि कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इससे कबल आज सुबह बेल्जियम सेनेगल को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की रफ्तार और जापान की महारत आलमी तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक साबित होंगी। उन्होंने नई दिल्ली में जापान की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत की। भारत और जापान ने स्ट्रेटेजिक तेल जखायर और समुद्री नकलो हमल के निजाम को ज्यादा महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए तवानाई साझेदारी का ऐलान किया है। हुकूमत मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में अगले 1 साल के दौरान मुल्क में सालाना तेल साफ करने की सलाहियत को 300 मिलियन मैट्रिक टन तक तौसी देगी। मरकज ने मुल्क के तमाम बैनुल अक्वामी हवाई अड्डों पर इबोला की जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का आगाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY, इसे हम कह सकते हैं कि ये योजना खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन का एक दशक पूरा कर चुकी है। PMKSY ने पिछले एक दशक में समूचे भारत में सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करने और कुशल जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। ये योजना 64,407 करोड़ रुपए से ज्यादा की केंद्रीय सहायता के साथ खेती में सिंचाई प्रेरित परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक के तौर पर उभरी है और 2.7 करोड़ से भी अधिक किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है और 2.46 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई क्षमता पैदा की गई है। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने देश के किसानों का भविष्य उज्जवल किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद हर्ष जी।
1: आपसे पहला सवाल यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और देश की कृषि व्यवस्था में ये योजना पिछले एक दशक में किस तरीके का परिवर्तन लेकर आई है।
2: हर्ष जी, देखिए, कृषि के लिए जो सबसे

0: महत्वपूर्ण एक इनपुट है वो सिंचाई है। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप कोई भी फसल उगाने के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और अपनी तैयारी के साथ खेती कर सकते हैं। तो कृषि जो है वो एक तरीके से खेती करने के लिए, अगर हम ये कहें जो सिंचाई है वो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है। और इसीलिए क्योंकि अभी भी जो हमारा टोटल जो जिसे हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल में खेती होती है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम जो है, एक दशक पहले जो करीब 45% के आसपास था उससे भी कम था, वो वर्षा आधारित था। तो यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, जो उसकी हमें एक उम्मीद है कि कितना उसके अंदर संभाव्यता है, उसको हम पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे अगर हम सिंचाई की सुविधा ना बढ़ाएं। तो पहला फोकस जो रहा, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाने के पीछे जो सरकार का उद्देश्य रहा है, वो देश के किसानों को उनकी खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट है वो मुहैया कराने का उद्देश्य इसके पीछे रहा है, क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें आगे शुरू होती है। और उसमें एक मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच जिसे कह सकते हैं हम लोग, एक साथ इसके बहुत सारे घटक हैं इस योजना के, उनको सब पर काम किया गया है और उसके नतीजे जो आपने जैसे कहा कि एक दशक में 2016-17 के बजट से लेकर के और अभी तक हमने 64,407 करोड़ रुपए का आवंटन सिंचाई के लिए इस योजना के तहत किया है, और उसका नतीजा यही रहा कि करीब जो 24.61 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जमीन हम अतिरिक्त सिंचाई के तहत ला पाए, जिसका फायदा 2.5 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को हुआ।
1: सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ये चीज सामने आई जिसका फायदा भी किसानों ने और हमारे फार्मिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठाया। ये प्रति बूंद अधिक फसल, इसे कैसे आम श्रोताओं के लिए आप समझाएंगे?
0: एक तरीके से जो हम कहें कि जो स्लोगन भी बनाया गया पर डोप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद से अधिक उपज, का मतलब है कि जो हमारे पास जल उपलब्ध है, जो संसाधन हमारे पास सिंचाई के उपलब्ध है, उनको हम कितना दक्षता के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं उत्पादन में फसल के, वो हम आकलन कर सकते हैं बेहतर उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, और जो एक्सटेंशन वर्क है जिसमें किसान को बताना है, समझाना है कि जो पानी है एक तरीके से बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, उसका आप बेहतर दक्षता के साथ उपयोग करके अधिक उपज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो भी कंपोनेंट है उनको केंद्रित रखते हुए आगे बढ़ा गया। तो इसीलिए जो स्लोगन है पर डॉप मोर क्रॉप, प्रति बूंद अधिक उपज, हम लोग उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है वो कदम इस योजना के तहत उठाए गए।
1: हरवीर जी, आपने मानसून आधारित यानी वर्षा आधारित सिंचाई की भी बात की, तो एक हम इसे कैसे समझें आम श्रोताओं के हिसाब से? एक तो जब वर्षा होती है तो हर खेत को पानी पहुंचता है, लेकिन फिर उसके लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आंकड़े क्या बताते हैं, अभी देश में कितने एरिया ऐसे हैं जहां वर्षा आधारित कृषि है और कितने एरिया हम मान के चले ऐसे हैं जहां के लिए हम सिंचाई की सुविधा देते हैं जो वर्षा पर आधारित नहीं है, वर्षा हो ना हो वहां सिंचाई का पानी पहुंच जाएगा?
0: हमारा सिंचाई का जो ढांचा है जो बहुत बरसों से है, जिसे कि हम लोग कैनाल सिस्टम है, ट्यूबवेल सिस्टम है और डैम बनाए गए हैं, चेक डैम्स हैं, तो ये एक जो पोन्ड्स हैं, तालाब हैं बड़े, उनका रेस्टोरेशन है, बहुत सारी चीजें उसके साथ में। लेकिन जो कैनाल इरीगेशन और हम जो कहते हैं कि भाई जहाँ ट्यूबवेल सिस्टम है वो सारा जो हम कहते हैं इसको एश्योर्ड इरीगेशन, यानी कि बारिश हो ना हो लेकिन किसान के पास एक वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो अपने खेतों की सिंचाई करके फसल का उत्पादन कर सकता है। और इसलिए जो बहुफसलीय जो उत्पादन क्षेत्र है वहां पर किसानों की स्थिति भी अच्छी होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो फसल चक्र उसका है वो रबी है, खरीफ है, जायद है, वो सारी चीजें उसमें हासिल कर सकता है क्योंकि उसके पास सिंचाई की सुविधा है। ये इस तरीके का जो हमारा क्षेत्रफल है वो 50% से थोड़ा ज्यादा है। बाकी जो है हमारा जो कृषि है वो हम कहते हैं कि वर्षा आधारित है, हालांकि हुआ काफी बड़े पैमाने पर वहां पर भी किसानों ने अपने स्तर पर और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका उपयोग करके सिंचाई की सुविधाएं सकती हैं। इसको हम रेनफेड एरिया बोलते हैं। रेनफेड एरिया में अक्सर जो है एक फसलीय खेती होती है और वो जब ये हमारा मानसून का सीजन होता है उस वक्त ये खेती होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं कि हर वक्त बारिश हो। तो सरकार की जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक कंपोनेंट है वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में होता क्या है कि उस तरीके के सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा

करने के एक ढांचे बनाए जाते हैं, चेक डैम्स बनाए जाते हैं कि जो रेनफेड एरिया है वहां पर एक सिंचाई उस क्षेत्र में हो जाए जब कमी पड़ती है उस फसल, या जो पानी अगर बच जाएगा तो उससे आप दूसरी फसल के लिए भी पानी उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये एक काफी बड़ा काम है और देश भर में इसके ऊपर सरकार ने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है वाटरशेड मैनेजमेंट के ऊपर। और इससे क्या हुआ कि जो इलाके ऐसे हैं जो कृषि में थोड़ा पिछड़े हुए हैं उनको बाकी क्षेत्रों के करीब लाने की कोशिश कामयाब होती है, क्योंकि वहां के किसानों को उनका जो कृषि से जो आय है उसमें इसके जरिए सुधार किया जाना संभव है और हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। ये वहां पर जो पोर्ट से उनका रेस्टोरेशन होता है कि जिससे जब पानी की जरूरत है तो वहां से पानी किसान ले सके, और बहुत जगह यूजर एसोसिएशन बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक

0: यूजर एसोसिएशंस बनी हुई है किसानों के, अपने एक तरीके से कलेक्टिव बने हुए हैं जो मिलजुल कर उसका मैनेजमेंट भी करते हैं और आपस में उस पानी का बंटवारा भी करते हैं, जिससे सबके साथ इक्विटेबल जो है रिसोर्सिस का इस्तेमाल हो सके। तो ये इस योजना का एक बड़ा कंपोनेंट मैं मानता हूँ और इसको काफी बड़ा बल मिला है। जो एक रेनफेड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो बड़े पैमाने पर इसके ऊपर काम भी करती रही है, तो ये तभी संभव हुआ है जब उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
1: हरवीर जी, आप ये भी बताएं कि जो ये अवसंरचना विकास है सिंचाई के लिए, ढांचागत विकास है, उसमें क्या नवीनता आई है समय के साथ साथ? जैसे अब तो हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो सिंचाई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई है और ढांचागत जो विकास हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं?
0: इसका एक कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP जिसको बोलते हैं
1: जी।
0: वो प्रोग्राम ऐसा है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं लंबे समय से उनका जो लास्ट माइल कंप्लीशन है, यानी कि जो प्रोजेक्ट 80% पूरा हो गया या 90% पूरा हो गया, उसमें अगर 10% काम बचा तो उसको तेजी से पूरा किया जाए, उसके लिए अलोकेशन किया जाए और उसके पूरा होते ही उसका जो पोटेंशियल है, जो उसके जरिए जो एक संभावना है या कितना क्षमता का हमने उम्मीद रखी है उसके सिंचाई की जो उससे पैदा होगी उसका उपयोग तुरंत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कंपोनेंट रहा है और इसके ऊपर जो है करीब 21,000 करोड़ रुपया जो है इसके लिए अलोकेट हुआ और बड़े पैमाने पर इससे करीब 173 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उसको सिंचित सुविधा की तरह हम दे पाए। प्लस जो माइनर इरिगेशन है, जैसे मैंने आपको चेकडैम की बात की थी, या माइनर इरिगेशन है वो सब हुआ, साथ में जो टेक्नोलॉजी है जैसे आपने कहा कि जो मैं कहूँ कि प्रिसीजन इरिगेशन जो है कि आपको माइक्रो इरिगेशन की जो स्कीम्स है कि भाई आप स्प्रिंकलर है, आपके ड्रिप इरिगेशन है जिससे आप सिंचाई के साथ आप न्यूट्रिशन भी पौधे तक सीधे पहुंचा सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपकी लागत घटती है। और ये जो स्कीम्स है जिसमें हम मैं कह रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके के इरिगेशन के जो नई चीजें नई पद्धतियां लागू की गई हैं उससे बहुत कम पानी में, कई जगह 1/4 पानी इस्तेमाल होता फ्लड इरिगेशन के मुकाबले इसमें, या उससे भी कम उपज है वो बेहतर हो, जो उत्पादकता बेहतर हो। जो ड्राई लैंड एरिया जैसे कि राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो सिंचाई सुविधाओं के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि इसके लिए सरकार सब्सिडी भी देती है और उस सरकार किसानों को प्रोत्साहित करता है
1: जी।
0: जैसे आपने कहा कि पहले से जो हमारा कैनाल इरिगेशन था, जो बड़े पॉन्ड्स थे या लेक से जो है वहां से जो पानी का हम इस्तेमाल कर पा रहे थे नहरों के जरिए, तो लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें अगर ट्यूबवेल सिस्टम भी है तो वहां पर भी आप जो है बोरवेल में वहां पर भी ये आप उसको आगे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जहां पानी का स्तर ऊपर था वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स जो है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए, उसका इस्तेमाल हुआ। और ये जो सिंचित, जैसे हम ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं वहां जो सिंचित एरिया बढ़ाने की बात है उसमें ये काफी मददगार भी है स्कीम्स इस तरह की। इवन राजस्थान में बड़े पैमाने पर लोगों ने प्रिसीजन जो इरिगेशन की हम बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लस सोलर पंप्स के जरिए, छोटे पंप्स और सोलर के जो एनर्जी जहां बिजली की भी जरूरत नहीं है, ये सारा चीजें तभी हो पाई है जब आपने एक बहुत वृद्ध स्कीम बनाई और उसमें हर कंपोनेंट को रखा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डैम बनाएंगे और इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाएंगे, नहीं, जो भी उपलब्ध एक तरीके से विकल्प है उन सबको एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की।
1: हरवीर जी, आपने बहुत सही बताया कि किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर किसानों ने अपनी फसल को बढ़ाया है, अपनी आय बढ़ाई है। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के किसानों ने स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाकर पानी, बिजली और श्रम की लागत काफी कम कर दी, अपना उत्पादन बढ़ाया। और आपने राजस्थान की भी बात की कि जहां किसानों ने कम पानी के बावजूद अपना उत्पादन बढ़ाया है। साथ ही आपने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP के माध्यम से भी लंबित सिंचाई परियोजनाओं को किस तरीके से सरकार ने पूरा किया है इस पर भी बातचीत की। अब आप हमें ये बताएं कि सरकार खास तौर पर विशेष रूप से अगर कहें छोटे और सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए 55% तक की सहायता देती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले सब्सिडी की भी बात की, इससे किसानों की आय और खेती पर पिछले कुछ वर्षों में क्या प्रभाव पड़ा है?
0: ये जो छोटे किसान होते हैं उनके पास संसाधनों की कमी हो, उनके पास जो वित्तीय संसाधन है वो बड़े किसानों की तरह उपलब्ध नहीं होते कि वो इन्वेस्टमेंट करके सिंचाई सुविधाओं पर तुरंत अपने लिए सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पर जो सरकार ने सब्सिडी मुहैया कराई है, जो कंपोनेंट जो लागत आती है उसका बड़ा हिस्सा जो दिया है, और इसमें कोशिश ये हो रही है कि ये जो सुविधाएं विकसित हो रही है उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो, जिससे

0: जो वाटर यूज एफिशिएंसी, जो यानी कि पानी के उपयोग की जो दक्षता है, जो हम लोग पीछे कह रहे थे कि पर लोग मोर क्रॉप जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे अक्वाफर हो या और पॉन्ड्स, उनको कैसे रिचार्ज रखा जा सकता है।
1: जी
0: मेरा अभी भी मानना है कि अभी इस तरीके के जो किसान है हमारे देश में, अभी भी जो लघु और सीमांत किसान है उनकी हिस्सेदारी करीब करीब 88-89 फीसदी के बीच में चले गए। जोत का जो आकार है 2 हेक्टेयर से कम जमीन के जो लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अभी एक तरीके से जो एक्सटेंशन है, जो उन तंत्र सूचना का है कि उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे उनको हम इसके लिए तैयार करें कि वो इस तरह की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लेकर के, और जो कृषि जो वो खेती करते हैं उसमें अपने उपज बेहतर कर सके, अपने जो आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके, अपनी ज्यादा फसल करके ज्यादा आय हासिल कर सके, क्योंकि स्कीम्स अवेलेबल है उस पर बड़े पैमाने पर। अभी भी जरूरत यह है कि जो लिंकेज हैं उनको कैसे हम जोड़ें, किस राज्य की क्या स्कीम है,
1: जी
0: कहाँ से उनको ये उपकरण लेने हैं, उसके खेत के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, तो ये उनको अभी और ज्यादा जागरूकता लाने की जरूरत
1: जी और हरवीर जी, यहाँ ये भी बताते चले कि केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये दर्शाता है कि सरकार जल सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को किस तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कृषि पद्धति में परिवर्तन के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ।
1: आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
2: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's national program of regional folk and light music, we bring you a Chakyar Kuta by Shri Margi Mathu and party.
1: Shri Margi Mathu Koodiyattam ke agrani kalakaron mein se ek hai. Koodiyattam Kerala ki prachin Sanskrit rangmanch parampara hai jise UNESCO ne manavata ki maukhik एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे हैं। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूरिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुनी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूडियाट्टम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूरिकुलम स्थित नेपथ्य कूडियाट्टम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
2: Shri Margi Mathu is one of the foremost exponents of Koodiyattam, the ancient Sanskrit theatre tradition of Kerala, recognized by UNESCO as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage. Born on 19 May 1966,

0: 96.1 MHz यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त हो चुका है शास्त्रीय संगीत का, तो आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित अभय नारायण मलिक से राग केदार में अलाप एवं धमार। सारंगी पर आपके साथ हैं आशिक अली।
1: की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए
0: और तानपुरी पर आपके साथ हैं पुरुषोत्तम दत्त शर्मा। तो आइए सुनते हैं पंडित अभय नारायण मलिक से राग केदार में अलाप एवं धमार।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम जारी रहेगा। आइए आपको एक सूचना हम दे दें। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी 10:45 पर हमारे मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य कैनिंगटन ओवल लंदन में खेले जा रहे T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। समय याद रखिएगा अब से कुछ ही देर यानी 10:45 पर। सूचना समाप्त हुई। तो श्रोताओं, आइए लेते हैं आनंद शास्त्रीय संगीत का।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अभय नारायण मलिक से राग केदार में अलाप एवं धमार। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारा ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार सुनेंगे। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होगा।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौता दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की है। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से

0: इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव में 21 लोगों की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हो गए। कीव में मुख्य रूप से रिहायशी इमारतों और बुनियादी सुविधाओं सहित 30 जगहों पर भारी नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला यूक्रेन द्वारा रूस के आम लोगों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India-Japan relations are truly very special and there are many shining examples of the success of the economic partnership. Addressing the India-Japan Joint Economic Forum in New Delhi this evening, Mr. Modi said, When Japan's expertise and investment combine with India's speed and scale, the entire world benefits. He said, both the sides today decided to make the partnership even more dynamic and profound. The Prime Minister said, India and Japan today reached agreements on several areas, such as economic security, AI, defense and health, that will make the partnership futuristic and limitless.
2: जो नए साथी इस फोरम के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें भारत जापान सक्सेस स्टोरी का भाग बनने पर हार्दिक बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
1: In her address, Prime Minister of Japan Sanae Takaichi said, among the many areas of cooperation, energy security is one of the most important areas. Ms. Takaichi said, through the Power Asia initiative, it is working to translate this vision into a concrete action. On the occasion, both Prime Ministers jointly inaugurated Maruti Suzuki's fourth vehicle manufacturing facility at Kharkhoda in Haryana. Earlier, India and Japan today exchanged agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals and AI. India and Japan today agreed to deepen cooperation on strategic crude oil stockpiling, petroleum reserve mechanisms and maritime energy transport value chains. It comes after annual summit-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. According to a joint statement issued by the Ministry of Petroleum and Natural Gas of India and Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry on Energy Resilience, both the sides expressed their shared intention to work as responsible powers and major energy-consuming countries in Asia to strengthen energy resilience amid current geopolitical uncertainties. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that India is rapidly expanding its refinery capacity. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Puri informed that in the next 6 to 12 months, the country's refining capacity will be brought to 300 million metric tons per annum. He said that the first greenfield refinery is being established after a gap of 10 years. Union Minister for Jal Shakti C.R. Patil today reiterated that the rejuvenation of River Ganga is a shared national responsibility, requiring sustained collaboration among central ministries, state governments, urban local bodies, scientific institutions and local